0: 听众朋友们，今天的普通话节目播送到这里，谢谢收听。
1: स्वतंत्रता को बढ़ावा मिल सके। उनके विचारों ने सिर्फ भारतीय समाज को जागरूक ही नहीं किया, बल्कि आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम चिंतन में राजा राम मोहन राय के विचार। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है और आइए अब सुनते हैं रामचरितमानस अयोध्या कांड भाग 28।

संतान के आसन्न विरह में तड़पते सिर धुनते राजा दशरथ ने पुत्र वधु को अनेक प्रकार से वनगमन से विमुख करने की चेष्टा की। संकोचवश सीता ने प्रतिवाद नहीं किया, किंतु उनका मन श्री राम के चरणों में अनुरक्त था, अतः उन्हें पति को छोड़कर घर में रहना श्रेयस्कर नहीं लगा और न ही वनगमन भयावह लगा। कैकेयी ने तमक कर मुनियों के वस्त्र माला मेखला आदि और कमंडलु राम के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। प्रेम के वश में दुर्बल हृदय वाले राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ सकते। उनके पुण्य यश और परलोक भले ही बिगड़ जाएं, वे तुम्हें वन जाने को भी नहीं कहेंगे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता कैकेयी की सीख श्री राम को भली लगी।

किंतु राजा दशरथ को ये वचन वाण की भांति लगे और वो मूर्छित हो गए। लोग व्याकुल हैं, किसी को सोच नहीं पड़ता कि वे क्या कहें। श्री राम मुनि का वेश धारण कर माता पिता के सम्मुख शीश नवाकर चल पड़े। राजमहल से निकलकर वे कुलगुरु वशिष्ठ के द्वार पर आ खड़े हुए। वहां ब्राह्मणों तथा याचकों की टोली को वर्षासन देकर उन्होंने दास दासियों को गुरु को सौंपा और हाथ जोड़कर कुलगुरु से प्रार्थना की कि वे माता पिता और पालक की भांति उनकी देखरेख करें। अयोध्या वासियों से उनकी प्रार्थना थी कि वे माता पिता को किसी भांति का कष्ट न होने दें।

0: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर रामचरितमानस के बाद आइए सुनते हैं समाचार। एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन ह्यः नवदिल्ल्यां सम्पन्नोपवेशनानन्तरं 13,000 कोटिरूप्यकाधिकाः पञ्चपरियोजनाः अनुमोदिताः। एतासु 4 रेलमार्गसम्बद्धाः एका च राजमार्गसम्बद्धा परियोजना अस्ति। सूचनाप्रसारणमन्त्री अश्विनी वैष्णवः उक्तवान् यत् केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलेन पश्चिमबंगाल ओडिशा तमिलनाडु आन्ध्रप्रदेश इत्येतेषु चतुर्षु राज्येषु रेलमार्गस्य 8 बहुमार्गीय परियोजनाः अनुमोदिताः। असौ उक्तवान् यत् आहत्य 50,4,900,000,000,000 रूप्यकाणां व्ययेन एताः परियोजनाः 30,2,000,000,000 तमवर्षात् 31,000,000,000 तमवर्षपर्यन्तं पूर्णाः करिष्यन्ते।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं। और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा एक तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रूपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णवः संसूचितवान् यत् मन्त्रिमण्डलेन बिहार राज्ये मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खण्डस्य राष्ट्रिय राजमार्ग 22 इत्यस्य चतुर्मार्गीय मानकानुसारं उन्नयनमपि अनुमोदितम्। अस्य व्ययः आहत्य 90,5,300,000,000,000 रूप्यकाधिकः अस्ति। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः अद्य नवदिल्ल्यां जापानस्य रक्षामन्त्रिणा शिन्ज़िरो कोइजुमी इत्यमुना सह द्विपाक्षिकोपवेशनं करिष्यति। अपेक्ष्यते यत् अस्मिन् उपवेशने हिन्द प्रशान्त

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन बनाने को भी स्वीकृति दी। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का 4th दौर आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश में आज नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा। ईरान की मदद करने वाले देशों को दी बुरे आर्थिक नतीजे भुगतने की धमकी। और FIH हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एक्सल्टफेन में इंग्लैंड से खेलेगी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे भारतीय रेल के वर्तमान नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
2: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है

0: कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का थर्ड एंड फोर्थ लाइन, और पांचवा प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा एक तक ये फोर लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को चार लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित परियोजना बिहार के बढ़ते राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जुड़ने के कारण रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
0: ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा फोर लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें होगा। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से दो वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंध और मजबूत होंगे, रणनीतिक भरोसा और सहयोग बढ़ेगा तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देश समुद्री सुरक्षा में गहरे सहयोग और मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क के तहत रक्षा उपकरणों और तकनीक के क्षेत्र में करीबी सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आर्मेनिया की अपनी दो दिन की यात्रा पूरी कर ली है। यात्रा के दौरान उन्होंने आर्मेनिया के उप रक्षा मंत्री करेन ब्रुटियान और जनरल स्टाफ प्रमुख एडवर्ड अस्ट्रियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बातचीत में रक्षा और सैन्य तकनीक सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का चौथा संस्करण आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। ये सम्मेलन नए और उभरते क्षेत्रों सहित सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। एक रिपोर्ट।
2: सम्मेलन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य, उद्योग, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी। इसके बाद दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई। इन बैठकों में उन्नत विनिर्माण, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा, कौशल विकास तथा स्थिरता पर हुई चर्चाओं से भारत सिंगापुर व्यापक रणनीतिक साझेदारी की रूपरेखा तैयार हुई। इसे पिछले वर्ष सितंबर में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की भारत यात्रा के दौरान लागू किया गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये सम्मेलन दोनों पक्षों के बीच जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी सहयोग को और मजबूत करने के अवसर प्रदान करेगा। इसके साथ ही भारत सिंगापुर व्यापारिक गोलमेज सम्मेलन का चौथा संस्करण भी आयोजित किया जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया है। भारत ने कहा है कि परिषद की संरचना और निर्णय लेने की प्रक्रिया वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए और इसमें विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। परिषद में कार्यप्रणाली पर चर्चा में संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिनिधि योजना पटेल ने कहा कि सुधारों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक आवश्यक है। उन्होंने स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की सदस्यता में विस्तार और विकासशील देशों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की भारत की मांग दोहराई।
3: सुरक्षा परिषद में सुधारों पर भारत का रुख स्पष्ट रूप से ज्ञात है। हम ग्लोबल साउथ के लिए अधिक प्रतिनिधित्व के साथ दोनों श्रेणियों में विस्तार चाहते हैं। इसे केवल स्पष्ट रूप से परिभाषित बिंदुओं और वार्ताओं के माध्यम से ही हासिल किया जा सकता है।
1: उन्होंने कहा कि वर्ष 1945 के बाद से संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। इंडिया डे फेस्टिवल आज मॉस्को में शुरू हो रहा है। चार दिवसीय इस फेस्टिवल में भारतीय और रूसी समुदायों को संस्कृति, परंपराओं और लोगों के बीच आपसी

0: संबंधों का जश्न देखने को मिलेगा। एक रिपोर्ट।
1: यह फेस्टिवल मॉस्को के गोस्टिनी द्वोर में आयोजित किया जाएगा। संस्कृतियों की एकता, लोगों की दोस्ती थीम पर आयोजित इस फेस्टिवल में कई जगह पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम होंगे। यहाँ बने लगभग 20 खास जोन में आने वाले लोगों को भारतीय संस्कृति के अलग अलग पहलुओं जैसे योग, शतरंज, भारतीय शादियाँ, नृत्य, भारतीय व्यंजन और आयुर्वेद को जानने समझने का मौका मिलेगा। इस फेस्टिवल में पूरे रूस से लगभग 75 योग स्कूल और दूसरे देशों के इंस्ट्रक्टर भी शामिल होंगे। भारतीय नृत्य की विविधता और कलात्मक परंपराओं को दिखाने वाले कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा भारतीय और रूसी डांसर भी हिस्सा लेंगे। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में मतदान होगा। सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए आर्थिक युद्ध की घोषणा की है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने के कई अवसर दिए गए लेकिन वो विफल रहा। एक रिपोर्ट।
2: ट्रंप ने ईरान की मदद करने वाले किसी भी देश को आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कोई भी देश जो अपने वित्तीय संस्थानों, व्यवसायों, हवाई अड्डों या सरकारी एजेंसियों को ईरान को समर्थन देने की अनुमति देता है उसे भी भारी आर्थिक परिणामों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही अपनी चेतावनी को दोहराया कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने कहा कि बातचीत भविष्य में फिर से शुरू हो सकती है लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि तेहरान को पहले समझौता करने के लिए तैयार होना होगा। इस बीच ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगीर गालिबफ ने कहा कि ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य को तब तक नहीं खोलेगा जब तक अमेरिका 14 सूत्री ज्ञापन के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं कर लेता। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: जी विशाल, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं हॉकी से। FIH विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम का सामना आज इंग्लैंड से होगा। ये मैच एम्स्टलवीन के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। दूसरी ओर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कल अपने अंतिम ग्रुप मैच में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अगले दौर के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हरमनप्रीत सिंह और हार्दिक सिंह ने 2-2 गोल किए जबकि अभिषेक ने 1 गोल दागा। और विशाल, अगर बात करें बैडमिंटन की तो BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला चीन की खिलाड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और इंडोनेशिया के अलवी फरहान आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला जापान की जोड़ी से होगा। अगर बात की जाए मिक्स्ड डबल्स में तो ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो चीन की जोड़ी से खेलेंगे। और अगले चलते हैं अपने श्रोताओं को क्रिकेट के मैदान की तरफ। तो श्रीलंका के गोल में भारत ने 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हराया है। भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। तो विशाल, ये थी अब तक की कुछ महत्वपूर्ण खेल खबरें।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तरी ओडिशा के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
4: उत्तरी ओडिशा के कई इलाकों में बाढ़ का पानी गंभीर समस्या बना हुआ है। पानी का स्तर अभी भी ऊंचा है और धीरे धीरे कम हो रहा है जिससे कई लोग फंसे हुए हैं। बालेश्वर जिले में बालियापाल सबसे बुरी तरह प्रभावित इलाकों में से एक है जहां खबर है कि 45,000 से ज्यादा लोग अभी भी फंसे हुए हैं। भद्रक जिले में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद है। सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। राजघाट पर आज सुबह 6 बजे नदी 11.80 मीटर के स्तर पर बह रही थी जबकि खतरे का 10.36 मीटर है। सुवर्ण रेखा की बाढ़ से लगभग 2,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। IMD ने इस शनिवार से फिर बारिश का अनुमान जताया है और मयूरभंज, केंदुझर और सुंदरगढ़ जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की है जिससे और ज्यादा बाढ़ आने की चिंता बढ़ गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में बारिश से गर्मी से राहत मिली है। मौसम सुहावना हो गया है। कई इलाकों में कल रात से बारिश हो रही है।

0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद विशाल। जम्मू कश्मीर भारत का महत्वपूर्ण अंग। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो कोर का ये बयान आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण के अनुसार जम्मू कश्मीर के अपने पहले दौरे में सर्जियो कोर ने कश्मीर को लेकर अमेरिकी रुख में बड़े बदलाव का दिया संकेत। कहा, जम्मू कश्मीर के लिए यात्रा परामर्श की करेंगे समीक्षा। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ छात्र आंदोलन के बीच झारखंड सरकार की बड़ी कार्रवाई दैनिक भास्कर में है। 22 भर्ती परीक्षा रद्द, सीआईडी को सौंपी गई जांच। यूपीएससी जैसा सिस्टम क्यों नहीं बनाते, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए से सुप्रीम कोर्ट का ये सवाल नवभारत टाइम्स में है। जेनजी को साधने की मोर्चाबंदी तेज, अमर उजाला लिखता है, भारतीय जनता पार्टी ने विश्वविद्यालयों में युवाओं से संवाद का जिम्मा केंद्रीय मंत्रियों को सौंपा। नए सिम कार्ड के लिए नए नियम सख्त, हिंदुस्तान लिखता है, साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट रोकने के लिए सरकार ने नए सीएम जारी करने की प्रक्रिया और कठोर की। और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के जरिए तय समय सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन रखने वाले ग्राहकों की जाएगी पहचान।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन बनाने को भी स्वीकृति दी। गृहमंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का चौथा दौर आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश में आज नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा। और एफआईएच हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एम्स्टरडेम में इंग्लैंड से खेलेगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Union Cabinet approves 4 multi-tracking railway projects covering 8 districts of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. Cabinet also clears 4 laning of Muzaffarpur, Sitamarhi, Sonbarsa section of NH-22 in Bihar. Union Home Minister Amit Shah to chair Southern Zonal Council meeting at Kovalam in Tamil Nadu this morning. Fourth round of India-Singapore Ministerial Roundtable to be held in Singapore today. Bangladesh to go to polls today to elect a new president. US President Donald Trump declares economic warfare against Iran, threatens economic punishment for any country helping Tehran. And Indian women's team to take on England in their final Pool D match of FIH Hockey World Cup in Amstelveen this evening. And now the news in detail. The Union Cabinet has approved 5 projects worth over 13,000 crore rupees, including 4 railway and 1 highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi yesterday, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the Union Cabinet has cleared 4 multi-tracking projects of railways covering 8 districts across 4 states of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. He said with total estimated cost of 9,450 crore rupees, the projects are scheduled for completion by 2030-31.
3: 5 major decisions have been taken. The first 4 projects are related to the railways, while the 5th is a highway project. The first 4 railway projects include the quadrupling of the Howrah-Chennai main railway route and the quadrupling of the Cuttack-Paradeep railway line. The 5th project is the construction of a 4-lane highway from Muzaffarpur via Sitamarhi to Sonbarsa. These projects, with a total cost of 13,041 crore rupees, were approved by the cabinet today.
4: Total 13,041 crore rupees ke projects cabinet ne approve kiye.
2: Mr. Vaishnaw informed that the cabinet has also approved the upgradation of the Muzaffarpur Sitamarhi Sonbarsa section of National Highway 22 in Bihar to a 4-lane standard at a total capital cost of over 3,590 crore rupees.
3: The project is becoming a major lifeline for the entire Bihar. It starts from Sonbarsa on the Nepal border and passes.

0: hospital in Gaza, states the Hindu. On Bangladesh Prime Minister's possible visit to India, Prime Minister Modi assures him of an honorable reception, is another headline in the Tribune. New US immigration rules may mean greater scrutiny for Indians, with expanded definition of public charge, reports the Asian Age. And finally, the Times of India refers to a study saying people with no high BP, diabetes or smoking habit lived nearly 13 years longer without dementia than those with all three risk factors. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Renu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Union Cabinet approves four multi-tracking railway projects covering eight districts of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. Cabinet also clears four-laning of Muzaffarpur Sitamarhi Sonbarsa section of NH-22 in Bihar. Union Home Minister Amit Shah to chair Southern Zonal Council meeting at Kovalam in Tamil Nadu this morning. Fourth round of India-Singapore Ministerial Roundtable to be held in Singapore today. Bangladesh to go to polls today to elect a new president. US President Donald Trump declares economic warfare against Iran threatens economic punishment for any country helping Tehran. And Indian women's team to take on England in their final Pool D match of AFIH Hockey World Cup in Amstel, Finn this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashwani se pesh hai khabarnama. आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास-खास खबरें। मरकजी काबीना ने मगरबी बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों का इहाता करने वाले 4 मल्टीट्रैकिंग प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। मरकजी काबीना ने बिहार में कौमी शाहराह नंबर 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा सेक्शन को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवालम में जनूबी जोनल काउंसिल मीटिंग की सदारत करेंगे। भारत सिंगापुर वजारती गोलमेज का चौथा दौर आज सिंगापुर में मुनक्किद होगा। बांग्लादेश में नए सदर के इंतखाब के लिए आज वोट डाले जाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ मुआशी जंग का ऐलान किया है। ट्रंप ने तेहरान की मदद करने वाले किसी भी मुल्क को मुआशी तौर पर सजा देने की भी धमकी दी है। और एफआईएच हॉकी आलमी कप में पूल डी के आखिरी मैच में आज शाम एम्स्टल फेन में खवातीन की भारतीय टीम का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने कल 13,000 करोड़ रुपए मालियत के 5 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी, जिनमें रेलवे के 4 और शाहराहों का 1 प्रोजेक्ट शामिल है। इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में काबीना मीटिंग के बाद मीडिया को प्रोजेक्टों से मुतालिक तफसीली मालूमात फराहम की। जनाब वैष्णव ने मुतला किया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जेर क्यादत काबीना ने रेलवे के मल्टी ट्रैकिंग के 4 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है, जिनमें 4 रियासतों मगरबी बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 अजला का इहाता किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन पर कुल 9,450 करोड़ रुपए की तखमीना लागत आएगी और ये प्रोजेक्ट साल 2030-31 तक मुकम्मल होंगे।
3: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट कैबिनेट ने अप्रूव किए।
2: जनाब वैष्णव ने मुत्तला किया कि मरकजी काबीना ने बिहार में कौमी शाहराह 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा हिस्से को 4 लेन वाला करने को भी मंजूरी दी है, जिस पर तकरीबन 3,590 करोड़ रुपए की कुल सरमाया लागत आएगी। जनूबी जोनल काउंसिल की 31वीं मीटिंग आज तमिलनाडु में चेन्नई के करीब कोवालम में होगी, जिसकी सदारत मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह करेंगे। जनूबी रियासतों के वज़राए आला और 3 मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके पुदुचेरी, अंडमान निकोबार जज़ायर और लक्षद्वीप भी इस मीटिंग में शिरकत कर रही हैं। तफसील हमारे नामा निगार से।
4: जनूबी जोनल काउंसिल मीटिंग में 6 वज़राए आला हिस्सा लेंगे, जिनमें तमिलनाडु के वज़ीर आला जोसेफ विजय

0: कर्नाटक के वजीराला डी के शिव कुमार, तेलंगाना के वजीराला रेवंत रेड्डी, आंध्र प्रदेश के वजीराला चंद्रबाबू नायडू और पुडुचेरी के वजीराला रंगासामी शामिल हैं। इसके अलावा अंडमान और निकोबार जजायर और लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर्स भी इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। इसके अलावा मुतालिका रियासतों के चीफ सेक्रेटरियों और दाखिला सेक्रेटरियों समेत आला सतही अफसरान भी इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। जुनूबी जोनल काउंसिल मीटिंग के दौरान बैन रियासती ताउन, माशी तरक्की, सनती सरमायाकारी, शराकतदारी को मुस्तहकम करने, बुनियादी ढांचे की तरक्की, आबी वसायल साझा करने, तालीम, सेहत देखभाल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कुदरती आफात से निमटने, जराइम की रोकथाम और सरहदी तनाज़ात समेत कई अहम मौजूदात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। चेन्नई से आर चिदम्बर नाथन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
1: भारत सिंगापुर वजारती गोलमेज ISMR का चौथा दौर आज सिंगापुर में मुनक़िद होगा। भारत की जानिब से इस गोलमेज में वजीर ख़जाना निर्मला सीतारमन, वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर, कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल और सनतों, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कॉमर्स के वजीर मुमलिकत जतिन प्रसाद शिरकत करेंगे। ISMR का मैकेनिज्म नए और उभरते हुए मैदानों में इश्तराक को फ़रोग देने का अहम प्लेटफॉर्म है। ISMR की इफ्तिताही मीटिंग सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी, जिसके बाद दूसरी मीटिंग अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी मीटिंग अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई थी। इन मीटिंगों के दौरान एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, कनेक्टिविटी, डिजिटाइजेशन, सेहत देखभाल और अद्वियात, हुनरमंदी के फ़रोग और पायदारी में भारत सिंगापुर जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी CSP रोड मैप वज़ा किया गया, जिसकी निकाब कुशाई गुज़श्ता साल सितंबर में सिंगापुर के वज़ीर आज़म लॉरेंस वोंग के भारत दौरे के दौरान की गई। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कल सिंगापुर पहुंचने के बाद अपने हम मनसब विवियन बालाकृष्णन से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने दोनों मुल्कों के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद वसअत देने पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इसके बाद डॉक्टर जयशंकर सिंगापुर में भारतीय हाई कमीशन के नए चांसरी कॉम्प्लेक्स का संगे बुनियाद रखे जाने की तकरीब में जनाब बालाकृष्णन के साथ शामिल हुए। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के वजीर दिफा शिनजिरो कोइजुमी के साथ दोतरफा मीटिंग करेंगे। तवक्को है कि इस मीटिंग से दोतरफा ताल्लुकात को मजीद तकवीत मिलेगी, स्ट्रेटेजिक एतमाद और बाहमी तआवुन में मजीद इजाफा होगा और भारत बहरुल काहिल खित्ते में इस्तेकाम और सिक्योरिटी को फरोग मिलेगा। दोनों वुजरा बहरी सलामती के सिलसिले में बाहमी तआवुन और मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क के तहत दिफाई साजो सामान और टेक्नोलॉजी से मुतालिक करीबी इश्तराक के बारे में तबादला ख्याल करेंगे। वजारत दिफा ने कहा है कि इस मीटिंग से दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी तआवुन को मजीद बढ़ाने का रोड मैप तैयार करने का मौका फराहम होगा। भारत में अमेरिका के सफीर सर्जियो गोर ने मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू और कश्मीर को भारत का अहम हिस्सा करार दिया है और कहा है कि मरकज और रियासत की हुकूमतों ने जम्मू और कश्मीर में सलामती की सूरत हाल को बेहतर करने से मुतालिक कई इकदाम किए हैं। अमरीकी सफीर कल श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुलाकात के दौरान भारत अमरीका ताल्लुकात पर तवज्जो मरकूज की गई और उन शोबों पर गौर व खौज किया गया जहां अमरीका जम्मू और कश्मीर के साथ मसरूफ़ अमल हो सकता है। जनाब अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि मुलाकात के दौरान मुस्बत मसरूफियात और मुस्तकबिल के इश्तराक पर जोर दिया गया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। बांग्लादेश में आज सदारती इंतखाबात मुनक़िद होंगे, जिसमें अरकान पार्लियामेंट हुक्मरान BNP के मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 पार्टियों के अपोजिशन इत्तेहाद के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद में से किसी एक को मुल्क के सदर के ओहदे के लिए मुंतखब करेंगे। बांग्लादेश में 35 साल बाद सदारती ओहदे के लिए पहली बार वोट डाले जाएंगे। वोटिंग मुल्क की पार्लियामेंट जातीय संसद में आज दिन में 2 बजे से 5 बजे तक होगी। BNP पार्लियामानी पार्टी मीटिंग में इजहार ख्याल करते हुए आलमगीर ने BNP के अरकान पार्लियामेंट से आज के सदारती इंतखाब में उन्हें वोट देने की अपील की। मुंतखब सदर को कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के सदर के ओहदे का हलफ दिलाया जाएगा। बांग्लादेश की माजूल वजीर आजम शेख हसीना के करीबी साथी मोहम्मद शिहाबुद्दीन ने अपनी 5 साल मुद्दत कार मुकम्मल होने से पहले ही सेहत से मुतालिक वजूहात की बिना

0: पर गुज़श्ता माह अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद आज सदर के ओहदे के लिए वोट डाले जाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नई मुआशी जंग शुरू करने का ऐलान किया है। ट्रूथ सोशल पर की गई पोस्ट में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने के कई मौके दिए गए, ताहम ईरान ऐसा करने में नाकाम रहा। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन अब तेहरान के खिलाफ मुआशी जंग और अलग थलग करने की ऐसी मुहिम का आगाज करेगा जिसकी माजी में कोई नज़ीर नहीं मिलती। ट्रंप ने तेहरान की मदद करने वाले किसी भी मुल्क को मुआशी तौर पर सजा देने की भी धमकी दी। उन्होंने खबरदार किया कि कोई भी मुल्क जो ईरान के माली इदारों, कारोबार, हवाई अड्डों और हुकूमती एजेंसियों की मदद करेगा, उसे संगीन इकतसादी नतायज का सामना करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि इन इकदाम का मकसद तेल के स्मगलिंग नेटवर्क, मुआशी लेन देन, मकानात के लेन देन, बहरी जहाज़ों की रजिस्ट्री और फ्रंट कंपनियों समेत ईरान की इकतसादी शहरक को निशाना बनाना है। सदर ट्रंप ने नए इकदाम को मुआशी डी डे करार देते हुए अमरीकी इत्तेहादियों से अपील की कि वो ईरान को अलग थलग करने में वाशिंगटन का साथ दें। ट्रंप ने मजीद कहा कि इस मुहिम का मकसद बैरून मुल्क फाइनेंस और मदद की ईरान की सलाहियत को कमज़ोर करना है। ये ऐलान ऐसे वक्त में किया गया है जब तेल की आलमी आमद व रफ्त की अहम तरीन आबी गुजरगाह आबनाए हुरमुज पर अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है। ट्रंप ने कहा कि आबनाए हुरमुज खुली रहेगी। ट्रंप ने दावा किया कि आबनाए हुरमुज की अमरीकी बहरी नाकाबंदी बेहद मुअसर रही। भारत ने अक़वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल UNSC में फौरी इस्लाहात का मुतालबा किया है और कहा है कि सलामती काउंसिल के ढांचे और फैसला साजी के अमल में मौजूदा दौर की आलमी हकीकतों की अक्कासी होनी चाहिए और तरक्की पजीर मुल्कों को ज़्यादा नुमाइंदगी दी जानी चाहिए। कामकाज के तरीक़ाकार से मुतालिक UNSC के खुले मुबाहिसे के दौरान इजहार ख्याल करते हुए अक़वामे मुत्तहिदा में भारत की शाज़े दाफ़ै योजना पटेल ने जोर देते हुए कहा कि इस्लाहात की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा वाज़े तौर पर महसूस की जा रही है। उन्होंने कहा कि साल 1945 से अक़वामे मुत्तहिदा के अराकीन की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है। मोहतरमा पटेल ने दलील दी कि सलामती काउंसिल को उस दौरे के हालात के मुताबिक तरतीब देनी नहीं दी जा सकता। दिल्ली में जारी वोटर फहरिस्तों की खसूसी तफसीली नज़रसानी SIR में दरख्वास्तें जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 24 अगस्त कर दी गई है। दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल अफसर के मुताबिक नज़रसानी शुदा शेड्यूल के तहत 31 अगस्त को इंतखाबी फहरिस्तों का मुसव्वदा शाये किया जाएगा। दावे और एतराज़ात दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर होगी। इन एतराज़ात से निमटने का अमल 31 अक्टूबर तक पूरा किया जाएगा, जिसके बाद 4 नवंबर को हतमी वोटर फहरिस्त शाये की जाएगी। भारत के महकमाए मौसमियात ने आज छत्तीसगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश और मगरबी उत्तर प्रदेश में बहुत तेज़ बारिश से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD ने हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, ज़ैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और शिमाल मशरकी भारत के हिस्सों में कल तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, केरलम, माहे और तमिलनाडु में दिन के दौरान गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज़ हवाएं चलने की भी पेशगोई की है। शिमाली ओडिशा में सैलाब की सूरत हाल लगातार संगीन बनी हुई है, जहां बारिश में कमी के बावजूद भद्रक, केंद्रपाड़ा, बालासोर, मयूरभंज और क्योंझर जिले पानी में डूबे हुए हैं। सुबर्णरेखा नदी से मुतालिक तशवीश जारी है, जो आज सुबह राजघाट पर 10.36 मीटर के खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। FIH हॉकी आलमी कप के पूल डी के आखिरी मैच में ख्वातीन की भारतीय टीम का मुकाबला आज इंग्लैंड से होगा। ये मैच एम्स्टलफेन के वैगनर स्टेडियम में भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। बैडमिंटन में नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में जारी BWF आलमी चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी आज प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया नीतिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात की 6 सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। रोजनामा इनकलाब ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में इदारा जाती असलाहत पर जोर देने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के इस बयान को अपनी शह सुर्खी बनाया है कि हमारा फर्ज है कि एक ऐसा मुतहरिक

0: दारा बने जिस पर मुल्क को फख्र हो। इसी अखबार की एक और अहम सुर्खी है कि झारखंड में 26 दिनों से जारी तलबा का एहतजाज खत्म। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन वुजरा के एक वफद के हमरा सिंगापुर रवाना। इस खबर को रोजनामा प्रताप ने अपनी शह सुर्खी बनाया है। मोहतरमा सीतारमन चौथे भारत सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल में शिरकत करने वहां पहुंची हैं। रोजनामा प्रताप की ही एक और अहम सुर्खी है कि दिल्ली में SIR की तारीख फिर बढ़ी।
1: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकजी काबीना ने मगरबी बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों का इहाता करने वाले 4 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। मरकजी काबीना ने बिहार में कौमी शाहराह नंबर 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा सेक्शन को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवालम में जनूबी जोनल काउंसिल मीटिंग की सदारत करेंगे। भारत सिंगापुर वजारती गोलमेज का चौथा दौर आज सिंगापुर में मुनक्किद होगा। बांग्लादेश में नए सदर के इंतखाब के लिए आज वोट डाले जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ मुआशी जंग का ऐलान किया है। ट्रंप ने तेहरान की मदद करने वाले किसी भी मुल्क को मुआशी तौर पर सजा देने की भी धमकी दी है। और FIH हॉकी ओलंपिक कप में पूल डी के आखिरी मैच में आज खवातीन की भारतीय टीम का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ। मीडियो वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। DRM 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं 8:45 हुए हैं, ये सुनते हैं शास्त्रीय संगीत स्वरगंगा के कार्यक्रम में सौरभ बानुधा का बांसुरी वादन, राग है नट भैरव। आपके साथ तबले पर संगत दे रहे हैं जितेंद्र स्वायन।

शास्त्रीय संगीत स्वर गंगा के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सौरभ बनौधा का बांसुरी वादन, राग था नट भैरव। आपके साथ तबले पर संगत दे रहे थे जितेंद्र स्वाइन। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर, DRM 810 किलो हर्ट्स पर।

0: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर अभी 9:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम उद्योग पत्रिका।
1: उद्योग पत्रिका।
2: नमस्कार, उद्योग पत्रिका में आप सबका स्वागत है।
3: हम सब जानते हैं कि भारत सरकार का स्टार्टअप इंडिया एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है और देश के आर्थिक विकास में रोजगार की उपलब्धता में इस स्कीम का बहुत फायदा भी दिख रहा है। इसके लिए विज्ञान मंत्रालय के विभिन्न विभाग कार्य कर रहे हैं, चाहे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हो या CSIR हो। इन लोगों ने रिसर्च एंड इनोवेशन के द्वारा स्टार्टअप के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, सुविधाएं दी है। अटल इनोवेशन मिशन एक बहुत बड़ी योजना है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की काफी चर्चा हो रही है, बहुत जगह यूज हो रहा है, तो नवाचार और विज्ञान संचार के लिए किस तरह से स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया जा सकता है और उसके लिए जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये किस तरह से कारगर हो सकता है, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित है अनुराग पांडे। अनुराग पांडे जी DST के ITBI अटल इनोवेशन मिशन आदि से जुड़े हुए रहे हैं। अनुराग पांडे जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है।
4: थैंक यू सर।
3: अनुराग जी, सबसे पहले हमें बताइए कि जो विज्ञान है, तकनीक है, तो स्टार्टअप और उद्यमिता की यात्रा में जो आपने शुरुआत की है वो कैसे शुरू की, किस तरह के अनुभव लिए, किस तरह से आप इस क्षेत्र से जुड़े हैं?
4: मैंने अपनी जर्नी शुरू करी 15 साल पहले, जब मैं IIT दिल्ली यूजर एक्सपीरियंस कोर्स कर रहा था, तब मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि इस इकोसिस्टम में बहुत चीजें ऐसी हैं जो स्टूडेंट्स तक ही नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है। और स्टूडेंट आजकल सिर्फ लिमिटेड नहीं है अपनी प्लेसमेंट्स को लेके या किसी एक करियर पाथ को लेके, वो मल्टीपल डाइवर्स चीजों पे देख रहा है, इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजों का जन्म भी हुआ। तो मैं जब वहां पे था और मैं अपने फ्रेंड के साथ कुछ बिजनेस आइडियाज पे जब मैं काम कर रहा था, तो मुझे रियलाइज हुआ कि IIT के अंदर रहते हुए भी काफी ऐसी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं या फिर काफी ऐसी पॉलिसीज हैं, कॉम्पिटिशन्स हैं, जो हमें पता नहीं लग पा रही है या हमें बताया नहीं जा पा रहा है, कोई नेटवर्क या चैनल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मैंने तब से ही मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि क्यों नहीं कि मैं खुद ही डीप डाउन जाके इसको समझूं और इसे जानूं। उसके बाद मैंने काफी स्टार्टअप्स में अपना लक आजमाया है। मैं डीप टेक में स्टार्टअप कर चुका हूं, एजुकेशन टेक्नोलॉजी में, ट्रेवल टेक्नोलॉजी में, और कुछ सेलिब्रिटीज के साथ भी मैंने काम किया है उनके स्टार्टअप को डेवलप करने में इन्हीं फील्ड्स में। साथ ही साथ मैंने पैरेलली अपने वेंचर्स भी बिल्ड किए हैं और वो अभी भी रनिंग कंडीशन में ही है, उनको फंडिंग भी मिला, अच्छा स्केल भी करे, बट कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट से अलाइनमेंट टूटता ही रहा, कभी भी गवर्नमेंट से स्कीम अलाइनमेंट नहीं हो पाया मेरे इनिशिएटिव्स पे। तो मुझे लगा कि एक बार ट्राई करते हैं। तब मैंने सबसे पहले एक बार अप्लाई किया था स्टार्टअप एक्सेलरेटर चैंबर ऑफ कॉमर्स, ये हरियाणा गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, और उसमें मैं एज अ इकोसिस्टम मैनेजर सेलेक्ट हुआ। मेरे को फरीदाबाद रीजन दिया गया, वहां पे 4 कॉलेजेस दिए गए और पूरा इकोसिस्टम दिया गया फरीदाबाद का। तब मैं पहली बार गवर्नमेंट की पॉलिसी से रूबरू हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के साथ

0: उनकी पॉलिसीज देखता था, उनको रिपोर्ट करता था, और सेंट्रल बॉडीज जो हमारी चंडीगढ़ में बैठती थी उनको देखता था। तो उससे मेरे को पहली बार इंट्रोडक्शन हुआ, लेकिन वो बहुत ही लोकल स्टेट लेवल स्कीम थी। फिर मुझे लगा कि एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम को भी देखना चाहिए, परखना चाहिए। और साथ ही साथ तब मैं नीति आयोग में सेलेक्ट हो गया था एज अ रीजनल मेंटर ऑफ चेंज, तो मैं काफी स्कूल नेटवर्क्स के साथ काम करता था। मेरे को फीचर भी किया गया नीति आयोग के मैगजीन में अच्छे वर्क के लिए। तब फिर मुझे मोटिवेशन आया, मैंने डीएसटी का एक ओपन रोल था, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ, उसमें मैंने अप्लाई किया और फिर मैं सेलेक्ट हुआ। और फिर मैंने पॉलिसी मेकिंग से लेके फंडिंग से लेके सारे टर्मिनोलॉजी सब मैंने खुद डिफाइन करी, बनाई और उस पर काम करवाया। तब जाके फिर मैंने आउटपुट भी देखा उसका 1.5 साल तक। तब मुझे रियलाइज हुआ कि इकोसिस्टम बहुत बड़ा है, जितना शायद मैं कभी सीख नहीं सकता था उतना मैंने उस जॉब में, उस पोजिशन में सीखा। तब से मैं इस इकोसिस्टम का बहुत क्लोज पार्ट हूँ।
1: आपने बताया कि आप डीएसटी के आईटीबीआई के सीईओ के रूप में भी आपने काम किया है, तो ये जो डीएसटी आईटीबीआई क्या है और इसका उद्देश्य क्या है?
0: डीएसटी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर एक विभाग है, उसके अंदर आता है इंक्लूसिव टेक्निकल बिजनेस इंक्यूबेटर, एक स्कीम है, निधि स्कीम के अंदर आता है। निधि के अंदर और भी बकायदा स्कीम्स है, तो इस स्कीम्स के अंदर मुझे एज ए सीईओ अपॉइंट किया गया। जैसे कि हर एक स्कीम अपना एक बजट दायरे में रहती है, हमारे पास भी कुछ करोड़ का बजट था जिसको हमें स्टार्टअप में डिस्ट्रीब्यूट करना था, और साथ ही साथ मुझे बाकी स्कीम्स जो गवर्नमेंट की थी, एमएसएमई की स्कीम हो गए, निधि की और भी स्कीम्स, फिर साथ ही साथ स्टार्टअप इंडिया स्कीम, इन स्कीम्स में भी काम करने का मौका मिला। बट अगर मैं डीएसटी की स्पेसिफिक बात करूं, डीएसटी टीबीआई की बात करूं, तो ये एक आइडिएशन स्टेज का एक ग्रांट है, जो कि आपको एज एन इनोवेटर, अगर आप कोई इनोवेशन पे काम करते हैं, ठीक है, अगर आप कोई आविष्कार करते हैं, तो गवर्नमेंट स्कीम आपको इंडिविजुअल कैपेसिटी पे फंड कर सकती है 5 से 10 लाख रुपए, और अगर आप स्टार्टअप बनाते हैं तो भी आपको फंड मिल सकता है इससे बड़े अमाउंट का, ताकि आप अपने स्टार्टअप को एक रिसर्च लेवल तक ले जा सके या उसको एक मार्केट रेडी प्रोटोटाइप तक बना सके। मतलब आपके सोच आइडिया को ही गवर्नमेंट फंड करती है इस प्रोजेक्ट के थ्रू। तो अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है जिसका आपने प्रोटोटाइप बनाया हुआ है, तो आप स्कीम में ऑल ओवर इंडिया जितने भी इंक्यूबेटर्स हैं उनमें आप अप्लाई करके स्कीम का फायदा उठा सकते हैं।
1: दो बातें आती है, एक तो होता है कि जैसे आपने विचार की बात की आइडिया की, तो आइडिया को एक मूर्त रूप देने में स्टार्टअप बदलने की प्रक्रिया क्या होती है? दूसरा, कई बार स्टार्टअप असफल हो जाते हैं, तो उसके कारण क्या होते हैं?
0: एक आइडिया आपका थॉट है जो आपके मन में विचार आए, विचार तो हमारे दिमाग में बहुत तरीके से घूमते हैं, उनमें से कोई ऐसा विचार जो आपको लगता है जिससे आप मनी को सर्कुलेट कर सकते हो, पैसा को सर्कुलेट कर सकते हो और लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हो अलग स्टेजेस में, ताकि एक्सपैंड हो सकती हो पूरी, इंजन बोल सकते हो आप इसको, तो एक इंजन बना सकते हैं, तो वो एक स्टार्टअप बन जाता है। अगर वो आइडिया ही रहेगा तो वो सिर्फ एक ईंधन बन के रह जाएगा, ये एक फ्यूल बन के रह सकता है, लेकिन अगर आपने उसके आसपास बॉडी लगा दी, चक्के लगा दिए, तो वो एक व्हीकल बन गया, वो एक स्टार्टअप बन गया। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल आइडियाज एंड गुड टीम मेंबर एंड वंडरफुल इकोसिस्टम विल मेक अ वेरी गुड आइडिया टू अ स्टार्टअप स्टेट। मैंने गाड़ी का एग्जांपल दिया है तो उसी से समझाता हूँ। जिस प्रकार से उस गाड़ी में बहुत चीजों का रोल होता है, एक तो ड्राइवर होता है, एक फ्यूल ठीक से डालना होता है उसमें, सारे पार्ट्स का सही मेंटेनेंस होना चाहिए, और ऊपर से गाड़ी अगर तेज भाग रही है तो उसमें अलग मेंटेनेंस चीजें लगेंगी। तो उसी तरीके के हर स्टेज पे स्टार्टअप को सही मात्रा में सपोर्ट मिलना चाहिए।
1: सही मात्रा मतलब क्या हुआ, किस किस तरह की सपोर्ट चाहिए?
0: जैसे
1: गवर्नमेंट तो ने अपने विभागों के द्वारा इंक्यूबेशन पीरियड एक रखा है, लेकिन इसके अलावा एक व्यक्ति के टीम में किस तरह की योग्यता होनी चाहिए, और फाइनेंशियल सपोर्ट सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या उपाय रखने चाहिए?
0: जैसे आपने बिल्कुल ठीक बोला कि अलग अलग स्टेजेस पे गवर्नमेंट का सपोर्ट सिस्टम है। सबसे पहले तो आइडिया स्टेज पे हम बात करते हैं। अगर आपके पास बस आइडिया है, आप चाहते हैं इसको एक स्टार्टअप में चेंज करना, तो सबसे पहले आपको एक टीम रखनी होगी जो बहुत स्ट्रांग अलग अलग एरियाज में काम कर रही होगी। ऐसा नहीं हो कि एक ही एरिया पे 3 लोग काम कर रहे हैं। बहुत स्पेसिफिक टीम बनाइए, इक्विटी डिविजन करिए, बीच में हिस्सेदारी रखिए, और उसी के साथ साथ फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस नीश में पोजीशन कर रहे हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे पूरे इकोसिस्टम में, नीश एंड पोजीशनिंग। स्टार्टअप बोलते हैं कि हम आएंगे और हम कोई भी एक चीज को बेच देंगे, एडवर्टाइज कर देंगे और ये सक्सेसफुल हो जाएगा, तो ये स्टार्टअप नहीं है, क्योंकि इसमें कोई इनोवेशन की आपने बात ही नहीं करी है। यही चीज को आप इनोवेटिव तरीके से बताते तो एक स्टार्टअप कहलाता। तो उसी तरीके से आपको हर एक तरीके से इसको इनोवेशन को समझना होगा और उसको टीम में डिवाइड करना होगा। और जहां तक बात आती है फंड की, देखिए वो भी बहुत स्ट्रेटेजिक तरीका है जिसमें अब मैं काम कर रहा हूं, एक नॉन डायल्यूटिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब कि आपके शेयर्स डायल्यूट ना हो और आपको पैसा मिल जाए। ऐसे गवर्नमेंट स्कीम स्कीम्स या CSR स्कीम्स या कॉम्पिटिशन्स होते हैं मार्केट में, आप पहले वो एक्सप्लोर करिए ताकि आपके शेयर ज्यादा लूज ना हो और आप एक स्टेज तक पहुंच जाए, फिर आप उसमें फंडिंग लीजिए। बहुत इन्वेस्टर्स हैं, ग्लोबल भी हैं, इंडियन भी हैं, जो आपको पैसा देके उसको आगे बढ़ाने का काम करती हैं, क्योंकि उनको

0: जो युवा इनोवेटर्स किस तरह से फंडिंग अपॉर्चुनिटीज का लाभ उठा सकते हैं?
1: सबसे पहले जरूरी है कि आप समझिए कि आपकी जरूरत किस चीज में है, राइट? अगर आप सबसे पहले आपका कोई ऐसा बिजनेस है जो कि इंडियन कस्टमर्स को टारगेट कर रहा है, तो इंडियन कस्टमर्स के अकॉर्डिंग आप उस मार्केट को देखिए जहां पे वो सारा का सारा टारगेट ऑडियंस आपको मिल जाए. अगर वो मार्केट जो है या टारगेट ऑडियंस है वो किसी गवर्नमेंट पॉलिसी के थ्रू बाउंड है, बहुत टाइम ऐसा होता है इंडिया में या कोई भी नेशन में बहुत सारे ऑडियंस एक गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर फॉल करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी इसी तरीके से डिवाइड किया है. ऑब्वियस सी बात है, खाली तो वो पब्लिक में तो फंड्स देती नहीं है या पब्लिक में तो सर्विसेज देती नहीं है. कोई स्पेसिफिक अर्बन एरिया है तो वहां पे उन्होंने हॉस्पिटल्स बनाए हैं, वहां पे रोड बनाई है, उसके हिसाब से सर्विसेज चीजें दी हैं. तो आप पहले ये आइडेंटिफाई करिए कि आपके लिए बेस्ट गवर्नमेंट कॉम्प्लायंस क्या है, जिसको क्रैक करने के बाद आप उन ऑडियंस को अपने कस्टमर तक पहुंच सकते हैं. वो पता लगाने के बाद आप उस गवर्नमेंट बॉडीज को जाके अप्रोच करिए, उनको अपने प्रोपोजिशन को समझाइए, वो खुद ही आपको अलाइन कर देंगे कि ये सही एरियाज है जहां पे आप आके गवर्नमेंट की स्कीम, सब्सिडीज, चैलेंजेस, एमएसएमई स्कीम या सीएसआर फंड का आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. इतना अच्छा सक्सेस रेट है गवर्नमेंट पॉलिसीज का कि अगर आप सही जगह पे करते हैं तो वो खुद एक्सेप्ट करते हैं आपको और खुद आपको मेंटर करके इन कर लेते हैं ग्रांट में. इंक्यूबेटर्स का देखिए काम क्या था, इंक्यूबेटर्स फंड डिस्पर्स करने के लिए बनाए गए थे. इनको बोला गया था कि आप स्टार्टअप को सिखाइए, समझाइए, फिर उस ग्रांट को दीजिए, तो वो पूरे तैयार है उसके लिए. बट आप सही तरीके से सही जगह पहुंचना जरूरी है हमें, नहीं तो आप गलत दरवाजे पे अगर आप नॉक करेंगे
0: निश्चित रूप से गलत जगह पहुंच लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे. आपने बात की जो एक तो अटल इनोवेशन मिशन था, सेंटर था, और आपने नीति आयोग में भी कहा मेंटर फॉर चेंज की बात होती है. तो आपको क्या लगता है कि जो हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं उनके जो विद्यार्थी हैं, शिक्षक हैं, इनोवेशन में उनकी रुचि किस तरह बढ़ी है?
1: मैं बस यही कहना चाहूंगा एकेडमिशियंस और जितने भी टीचर्स या रिसर्चर्स हैं कि आप जब भी कोई पेटेंट बनाए या कोई भी चीजों के बारे में आप इनोवेशन करना चाहें तो सबसे पहले किसी इंडस्ट्री बॉडी से आप कंसल्ट जरूर करिए ताकि आपको पता चले इसका कमर्शियल एंगल क्या है. मैंने शारदा यूनिवर्सिटी में काम किया है, मैंने जब उनकी पेटेंट लिस्ट देखी, ऑल्दो दे आर मेजर फाइलर ऑफ अ पेटेंट, बहुत सारे पेटेंट फाइल करते हैं वो यूनिवर्सिटी के तौर पे, बट कोई भी पेटेंट मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ जो कमर्शियलाइजेशन के एंगल पे जा सकता है. फिर भी मैंने 10 पेटेंट ऐसे सेलेक्ट किए जिनको मैं थोड़ा गाइड करके भेज सकूं, बट वो यूनिवर्सिटी की पॉलिसी इतनी स्ट्रांग है कि बस प्रोफेसर पेटेंट बनाना तो जानते हैं बट उसको जब कमर्शियलाइजेशन की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं. उनको लगता है कमर्शियल करेंगे तो शायद खामियां निकल आएंगी और वहां के भी नहीं रह जाएंगे. मेरी अब संस्था है, इनका यही काम है बेसिकली कि आपको सही ग्रांट्स के प्रति अवेयर कराया जाए, सही नॉन डायल्यूटिव कैपिटल फंड्स के बारे में अवेयर किया जाए, चाहे वो कॉम्पिटिशन्स है, चाहे वो एक एमएसएमई का स्कीम है, चाहे वो गवर्नमेंट ग्रांट का फंड है, वो सब चीजों के बारे में सही तरीके से एआई की मदद से अलाइन किया जाए ताकि आप समझ जाए कि ये चार एरिया है जहां पे आपको फिट हो रहा है, वो सही डोर आपको मिल जाए, फिर आप जाके उधर नॉक करिए और आपको जरूर एंट्री मिले वहां पे. तो यही मेरा मकसद है और यही हम एआई के थ्रू कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म.
0: मतलब आप लोग जो लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं उनको आप रास्ता दिखा रहे हैं, सही रास्ता दिखा रहे हैं,
1: सही रास्ता. और मैं कहना चाहूंगा कि एआई के तहत एक बिल्कुल निष्पक्ष, मतलब कोई भी कंटेमिनेशन नहीं, बिल्कुल जो एक्चुअल है वही रास्ता दिख रहा है, कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है उसमें. ह्यूमन इंटरवेंशन बाद में आएगी, अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो हमारे पास बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं जो आपको हैंड होल्ड भी करके वहां तक पहुंचाएंगे, लेकिन पहला रास्ता एआई के थ्रू आप देखेंगे, साफ सीधा रास्ता जिस पे आप चल सकते हैं.
0: चलिए बहुत अच्छा. आपने एक बात की कि लोगों को जानकारी नहीं होती है, सही सही, ऐसी स्थिति में जरूरी होता है वैज्ञानिक जागरूकता की.
1: बिल्कुल.
0: और लोगों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास की बात होती है. आपने खुद भी विज्ञान संचार के क्षेत्र में काम किया है, साइंस राइटिंग की है, तो सुनने वालों को बताइए कि आपकी नजर में जो वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं आम जनता तक पहुंचाना सरल भाषा में क्यों जरूरी है?
1: बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं जिस तरीके के इनोवेशंस को या फिर वैज्ञानिक रिसर्च को देखता हूं, ठीक है, आप मानेंगे नहीं, कंपनीज इन चीजों के लिए बहुत पैसा खर्च करती है इन्हीं रिसर्च को सही तरीके से समझने में और इसको खुद के तरीके से करने में. एक R&D का बजट ही होता है हमारा जो 20-30% हमारी कंपनी का जाता है उसमें. अब आप सोचिए एक कंपनी 20-30% मिनिमम अगर R&D में खर्च कर रही है तो आप समझिए कितना इंपॉर्टेंट एरिया होगा वो. एक इंसान के लिए भी रिसर्च को जानना अपने लिए ही नहीं, सिर्फ अपने समाज के लिए, अपने विकास के लिए बहुत जरूरी है. और इसके लिए उसको समय समय पर ऐसे जो चैनल्स हैं, ऑल इंडिया रेडियो माध्यम है और ये लोगों को जानकारी मिलती रहेगी, आप ऐसे लोगों को बुलाते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. और AI की मदद से जरूर इसके प्रति जानना चाहिए कि आपके लिए क्या सही रास्ता है. और ऐसे प्रोग्राम जहां पे अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग विभागों से आके कुछ बता रहे हैं अपने विभाग के बारे में, उसको जरूर सुन के प्रचारक भी बनना चाहिए उसका. साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक साथ

0: हम यूज करते हैं, क्योंकि जब तक आप टेक्नोलॉजी को साइंस के माध्यम से लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे और आप भी एक प्रचारक की तरह काम नहीं करेंगे, वो वहीं नीचे ही दबा रहेगा वो चीज़।
1: निश्चित रूप से। और यही जो एक विज्ञान संचारक और प्रसारक की जो है उत्तरदायित्व होता है, और आकाशवाणी इसमें अपने शुरुआत से ही काफी योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहा है, और इसी के कारण हमारे यहाँ डेडिकेटेड साइंस सेल्स हैं हर स्टेशन पे हर जगह, जो विज्ञान की समझ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास और साथ ही साथ लोगों तक सरल भाषा में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि आदि की बातों को पहुंचाने का काम करता रहा है, जिसके तहत हम लोग अभी ये कार्यक्रम कर रहे हैं। अनुराग पांडे जी, इन सब जानकारियों के लिए और आकाशवाणी आने के लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सर।
2: इसी के साथ उद्योग पत्रिका का ये अंक संपन्न होता है। प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।

रूठ जाए सब दुनिया चाहे छूट जाए घर बारी, रूठ जाए सब दुनिया चाहे छूट जाए घर

एक हम समात फरमाए, मतलब करता हूँ कि बिखरी हुई है हर तरफ रोशनी हुसन ज़ात की, बिखरी हुई है हर तरफ रोशनी हुसन ज़ात की, मेरी नज़र की राह में गर्द है मुमकिनात की। बिखरी हुई है हर तरफ रोशनी हुसन ज़ात की, मेरी नज़र की राह में गर्द है मुमकिनात की। शिरर्द है कि आखिर कार जज्ब दिल अरश बरी तक आ गया, आखिर कार जज्ब दिल अरश बरी तक आ गया, जैसे थी आखिरी हदें क़ुरब तजल्लियात की। आखिर कार जज्ब दिल अरश बरी तक आ गया, जैसे थी आखिरी हदें क़ुरब तजल्लियात की। शिरर्द करता हूँ कि अक्लो दिलो निगाह सब उसके हुजूर बाअदब, अकलो दिलो निगाह सब उसके हुजूर बाअदब, हरफो सदा भी गुम तमाम फिर भी किसी ने बात की। अकलो दिलो निगाह सब उसके हुजूर बाअदब, हरफो सदा भी गुम तमाम फिर भी किसी ने बात की। शेर समात करें कि धरती पे फूल आसमां तारों से जगमगा उठा, धरती पे फूल आसमां तारों से जगमगा उठा, ये तो अदाएं हैं मेरे खुसरव कायनात की। फिर समात कीजिए शेर के, धरती पे फूल आसमां तारों से जगमगा उठा, ये तो अदाएं हैं मेरे खुसरव कायनात की। अर्ज करता हूँ कि तुमसे तमाम नगमगी तुमसे तमाम दिलकशी, तुमसे तमाम नगमगी तुमसे तमाम दिलकशी, तुमसे तमाम धड़कने सीनाए कायनात की। फिर समात कीजिए शेर के, तुमसे तमाम नगमगी तुमसे तमाम दिलकशी, तुमसे तमाम धड़कने सीनाए कायनात की। शेर अर्ज किया है कि हुस्न बिखर बिखर गया राह समर समर गई, हुस्न बिखर बिखर गया राह समर समर गई, जब भी तेरी नज़र उठी बज़्म सजी हयात की। फिर शेर अर्ज करता हूँ कि हुस्न बिखर बिखर गया राह समर समर गई, जब भी तेरी नज़र उठी बज़्म सजी हयात की। आखिरी शेर हमद पाक का है कि चाहे नज़र न आ सके चाहे खबर न हो सके, चाहे नज़र न आ सके चाहे खबर न हो सके, और भी वजह

है कोई गर्दिश कायनात की। चाहे नजर ना आ सके, चाहे खबर ना हो सके, और भी है वजह कोई गर्दिश कायनात की। बिखरी हुई है हर तरफ रोशनी उसने जात की, मेरी नज़र की राह में गर्द है मुमकिनात की। सामईन इकराम, नात पाक से पहले मैं चाहता हूँ कि एक बार आप दरूद पाक पढ़ लें। मतलब अर्ज करता हूँ कि जलवा फरमा नूर हक जो तेरी पेशानी में है, जलवा फरमा नूर हक जो तेरी पेशानी में है, उससे बढ़कर कौन सी शे ताजे सुल्तानी में है। फिर समाप्त कीजिए कि जलवा फरमा नूर हक जो तेरी पेशानी में है, उससे बढ़कर कौन सी शे ताजे सुल्तानी में है। हुसने मतलब समाप्त करें कि कैसरी में है नामुमकिन शान कैवानी में है, कैसरी में है नामुमकिन शान कैवानी में है, दो जहां की कामयाबी तेरी दरबानी में है। कैसरी में है नामुमकिन शान कैवानी में है, दो जहां की कामयाबी तेरी दरबानी में है। एक मतलब और समाप्त करें हजरात कि अल्लाह अल्लाह कैसी अजमत हरफ़ कुरानी में है, अल्लाह अल्लाह कैसी अजमत हरफ़ कुरानी में है, सरनगूं थी कल भी दुनिया अब भी हैरानी में है। फिर समाप्त करें कि अल्लाह अल्लाह कैसी अजमत हरफ़ कुरानी में है, सरनगूं थी कल भी दुनिया अब भी हैरानी में है। और लात उज़्ज़ा के सनम खाने उजड़ कर रह गए, शेर देखें हजरात कि लात उज़्ज़ा के सनम खाने उजड़ कर रह गए, तेरी तकबीर मुसलसल बज़्म इमकानी में है। लात उज़्ज़ा के सनम खाने उजड़ कर रह गए, तेरी तकबीर मुसलसल बज़्म इमकानी में है। और खुश नसीबी में तेरे अहबाब का सानी नहीं, शेर समात फरमाएं कि खुश नसीबी में तेरे अहबाब का सानी नहीं, जिनकी आँखों के लिए जलवा फरावानी में है। खुश नसीबी में तेरे अहबाब का सानी नहीं, जिनकी आँखों के लिए जलवा फरावानी में है। और आदमियत पर तेरी हिकमत से ये रोशन हुआ, शेर समात करें कि आदमियत पर तेरी हिकमत से ये रोशन हुआ, अजमत आदम खिरत की पाक दामानी में है। आदमियत पर तेरी हिकमत से ये रोशन हुआ, अजमत आदम खिरत की पाक दामानी में है। और जिसने शाहों को गदाओं से किया शीरो शकर, शेर समात फरमाए हजरात कि जिसने शाहों को गदाओं से किया शीरो शकर, वो अदाए फ़ख्रा का तेरी सुल्तानी में है। जिसने शाहों को गदाओं से किया शीरो शकर, वो अदाए फ़ख्रा का तेरी सुल्तानी में है। और शेर देखें कि असरे हाजिर से तेरा नक्शे कदम क्या छूट गया, असरे हाजिर से तेरा नक्शे कदम क्या छूट गया, मंजिलें गुम कारवाने फिक्र हैरानी में है। असरे हाजिर से तेरा नक्शे कदम क्या छूट गया, मंजिलें गुम कारवाने फिक्र हैरानी में है। और मेरे आका तेरी चश्मे लुत्फ का तालिब हूँ मैं, मेरे आका तेरी चश्मे लुत्फ का तालिब हूँ मैं, दिल अगरचे मुबतला जज्बों की नादानी में है। मेरे आका तेरी चश्मे लुत्फ का तालिब हूँ मैं, दिल अगरचे मुबतला जज्बों की नादानी में है। जलवा फरमा नूर हक जो तेरी पेशानी में है, उससे बढ़कर कौन सी शे ताजे सुल्तानी में है। मक्ता समात फरमाए हजरात के याद करके जो उसे आँखों से बहता है जमील, याद करके जो उसे आँखों से बहता है जमील, कैसी तासीर शिफा उस आँख के पानी में है। याद करके जो उसे आँखों से बहता है जमील, कैसी तासीर शिफा उस आँख के पानी में है। जलवा फरमान नूर हक जो तेरी पेशानी में है, उससे बढ़कर कौन सी शे ताजे सुल्तानी में है। हजरात एक नात पाक और समात फरमाए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतला अर्ज करता हूँ कि अपनी दुनिया का हर एक रंग तेरे नाम से है, अपनी दुनिया का हर एक रंग तेरे नाम से है, तेरी सुन्नत से है, कुरान से है, इस्लाम से है। अपनी दुनिया का हर एक रंग तेरे नाम से है, तेरी सुन्नत से है, कुरान से है, इस्लाम से है।
और एक मतलब और समाप्त करें कि

0: रात का खौफ ना अंदेशा कोई शाम से है, रात का खौफ ना अंदेशा कोई शाम से है, आज सीनों में उजाला तेरे पैगाम से है। फिर समाप्त करें हजरात के, रात का खौफ ना अंदेशा कोई शाम से है, आज सीनों में उजाला तेरे पैगाम से है। और इस खराबे में भटकने नहीं देती मुझको, समाज फरमाए के इस खराबे में भटकने नहीं देती मुझको नूर अफशानी मुसलसल जो दरोबाम से है। इस खराबे में भटकने नहीं देती मुझको नूर अफशानी मुसलसल जो दरोबाम से है। शेर समाज करें कि तेरा सदका है ये दुनिया ये मताए हसी, तेरा सदका है ये दुनिया ये मताए हसी, और ये तस्खीर फलक भी तेरे इकराम से है। तेरा सदका है ये दुनिया ये मताए हसी, और ये तस्खीर फलक भी तेरे इकराम से है। शे देखें कि उसको दौलत की तलब है न शहनशाही की, उसको दौलत की तलब है न शहनशाही की, जो तेरे कदमों से वाबस्ता है आराम से है। उसको दौलत की तलब है ना शहनशाही की, जो तेरे कदमों से वाबस्ता है आराम से है। राह दुश्वार है लेकिन तेरी सुन्नत के तुफैल, इस्तकामत की तवक्को दिले नाकाम से है।
1: शनंदगान गिरामी, इन बुद आज برنامه روحانی نات بادی را با صدای شمیم جیپوری بشنوید.

किस बात का है जब सामने दोनों, तो किस बात का है

बातों से छुआ हो तो कसम है, सागर कभी हाथों से छुआ हो तो कसम है। इसी यहाँ का शमीम अपने ये आलम।

0: की बैठक इस समय नई दिल्ली में चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजोरे कोइजुमी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में दोनों देशों के रक्षा संबंधों को और मजबूत करने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। दोनों मंत्री समुद्री सुरक्षा और रक्षा उपकरणों तथा तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी विचार करेंगे। दोनों मंत्री समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने और मेक इन इंडिया के तहत रक्षा उपकरणों तथा तकनीक के क्षेत्र में साझेदारी मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आज सुबह जापान के रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। जापान के रक्षा मंत्री ने कल मुंबई में पश्चिमी नौसेना कमान का दौरा किया। श्री कोइजुमी ने नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन और पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन के साथ बातचीत की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज सिंगापुर में वहां के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। बैठक में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी उपस्थित थे। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रोडमैप के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की और आर्थिक सहयोग, डिजिटलीकरण, संपर्क, कौशल विकास और स्थिरता सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ब्रिक्स अध्यक्षता को जन केंद्रित बनाने और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री यादव ने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित अपने लेख को सोशल मीडिया पोस्ट में साझा किया। उन्होंने कहा कि भारत मिशन लाइफ के सिद्धांतों पर आधारित सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने के साथ साथ वनीकरण, जंगलों में आग की रोकथाम, आपदा से निपटने की क्षमता और पारंपरिक ज्ञान पर आधारित जन केंद्रित जलवायु अनुकूलन पर बल दे रहा है। गृहमंत्री अमित शाह चेन्नई के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में अंतर्राज्यीय सहयोग, आर्थिक विकास, औद्योगिक निवेश, साझेदारी को मजबूत करना, अवसंरचना विकास, जल संसाधन बंटवारा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सूचना प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन, अपराध रोकथाम और सीमा विवाद जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत ने काबुल के एक सरकारी अस्पताल को दवाइयां और चिकित्सा सामग्री भेजी हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह सहायता अफगानिस्तान के लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका उद्देश्य अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 68 लाख रुपए से अधिक की बेहिसाब नकदी बरामद की है। सीआईएसएफ ने बताया कि संदेह होने पर दो यात्रियों की विस्तृत जांच की गई। दोनों यात्री गुवाहाटी और फिर आगे अगरतला जा रहे थे। उनके सामान की विस्तृत जांच के दौरान उनसे कुल 68,53,000 रुपए बरामद हुए। सीआईएसएफ ने बताया कि यात्रियों नकदी और संबंधित यात्रा दस्तावेजों को कार्रवाई के लिए आयकर अधिकारियों को सौंप दिया गया है। रूस ने कल रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों से हमला किया। इसमें 6 लोग मारे गए और 33 घायल हुए। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब रूस कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को तेज कर रहा है, जिससे यूक्रेन की सीमित हवाई रक्षा क्षमताओं पर और दबाव बढ़ रहा है। इस बीच यूक्रेन ने रूस के भीतर स्थित सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर लंबी दूरी के हमलों को तेज कर दिया है। एफआईएच हॉकी विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड से खेलेगी। ये मैच अम्सटरडैम के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। एंटिका सिंगापुर इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन में मोहित जागलान और लक्षिता जागलान की जोड़ी वॉकओवर मिलने के बाद मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। अब उनका मुकाबला सिंगापुर की जोड़ी से होगा। इससे पहले भाई बहन की इस भारतीय जोड़ी को पहले दौर में बाई मिली थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The India-Japan Defense Ministers meeting is

0: घर आंगन।
1: कार्यक्रम घर आंगन सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा यानी प्रतिभा का और
2: रश्मि कुकरेती का प्यार भरा
1: नमस्कार। और श्रोताओं, आप सभी हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल यानी 100.1 MHz पर, और हमारे इंद्रप्रस्थ चैनल के लिसनर्स हमें सुन रहे हैं मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 KHz पर। रश्मि जी, देखिए, ये कार्यक्रम आवाज का है, जहां आवाज के जरिए हमारी मुलाकात होती है हमारे श्रोताओं से और संवाद होते हैं, है ना, जहां होती हैं ढेर सारी बातें, होती हैं ढेर सारी जानकारियां और गीत संगीत भी।
2: जी प्रतिभा, घर आंगन तो वो कड़ी है जो हमें और आपको एक दूसरे से जोड़ती है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपसे पूछते हैं एक प्रश्न, लेकिन उस प्रश्न से पहले प्रतिभा, हम अपने सभी श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं रेडियो श्रोता दिवस की।
1: जी
2: जगह जगह मनाया जा रहा है आज के दिन 20 अगस्त, और जो रेडियो के श्रोता क्लब जो बनाते हैं वो आज का दिन बड़ी बड़ी उल्लास के साथ, बड़ी जिसे कहते हैं तैयारियों के साथ मना रहे हैं।
1: बिल्कुल, और देखिए मनाना भी चाहिए, क्योंकि ये जो रिश्ता है ना श्रोताओं का आकाशवाणी के साथ, हमारे साथ, ये बहुत पुराना है और ये सालों दर साल ऐसे ही चलता आ रहा है। और वाकई आज बधाई का दिन है
2: जी,
1: है ना?
2: और इसी से जुड़ा है आज का प्रश्न। भाई, हम सभी सुनने वालों से जानना चाहेंगे कि आज आपकी रेडियो से जुड़ी जो यादें हैं, आपके पसंदीदा कार्यक्रम हैं, या एक अच्छे श्रोता के अंदर रेडियो क्या खास बात होनी चाहिए, या आपका कोई संदेश हो तो वो आज हमसे साझा कीजिए हमारी ईमेल आईडी पर, जो है fmgoldga@gmail.com।

0: हाथी मेरे साथी। अभी आपने इस फिल्म से ये गीत सुना, आवाज़ थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। और रश्मि जी देखिए, आज देश मना रहा है पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती। ये दिन सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है।
1: जी, और सद्भावना दिवस का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, शांति और सौहार्द को बढ़ावा देना है, जो कि उनके जीवन के कार्यों का मूल मंत्र था। तो आज का दिन है उनके योगदान को याद करने का और देशवासियों को एकजुट होकर शांति और सौहार्द के लिए जो उन्होंने प्रेरणा दी, तो इस पर आज उनको हम याद कर रहे हैं और उनको नमन करते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, आज एक और दिन खास है, वो है आज पारसी समुदाय का जो पर्व है वो खोरदाद साल, वो आज मनाया जा रहा है। और यह दिन जो है ना, वो जोरोस्ट्रियन धर्म के संस्थापक पैगंबर जरथुस्त्र के जन्म की खुशी में मनाया जाता है।
1: जी,
0: और इस दिन होता क्या है कि विशेष प्रार्थना और जश्न का आयोजन किया जाता है, और लोग जो हैं पारसी समुदाय के जो लोग हैं वो अग्नि मंदिरों में जाकर प्रार्थना करते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। और साथ ही साथ आज के दिन लोग दान पुण्य भी करते हैं, क्योंकि पारसी धर्म में अच्छे कर्मों और दान को बहुत महत्व दिया जाता है। तो आज के दिन की आप सभी को शुभकामनाएं।
1: तो देखिए, आज बड़ा विशेष दिन है और हम इससे पहले बता चुके हैं कि रेडियो श्रोता दिवस है आज, और रेडियो

0: होता है वो केवल मनोरंजन ही नहीं देता, बल्कि हम तो कहेंगे प्रतिभा वो परिवार के सदस्य जैसा है, जो बिना कुछ कहे बिना कुछ मांगे भी आपका साथ देता रहता है, आवाज आती रहती है, ऐसा लगता है जैसे कोई अपना साथ बैठे हुए
1: जी
0: है
1: जी
0: ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बचपन में हम लोग भी तो देखिए जब बारिश होती थी रात में तो रेडियो को मैं लेकर बैठ जाया करती थी और उसको एंटीना को इधर उधर घुमाती रहती थी कि कहाँ ये सिग्नल पड़ेगा। तो बचपन की बहुत सारी यादें हैं मेरी भी रेडियो के साथ।
0: जी

0: पर आप हमें मेल कर सकते हैं, और कुछ जवाब भी आने शुरू हो गए हैं प्रतिभा।
1: और देखिए, सबसे पहले हमारे पास जवाब आया नवीन भाटिया जी का। वो कह रहे हैं कि मेरी जो याद है बचपन की, वो ये है कि जब वो शायद, वो कहते हैं कि 9th क्लास में थे, तो संडे को सुबह वो संगम प्रोग्राम जरूर सुना करते थे।
0: क्या
1: देखिए,
0: बात है, वाह,
1: मतलब इतने सालों बाद भी उनको याद है कि वो कौन सा प्रोग्राम सुनते थे और वो उसका उनका जो फेवरेट प्रोग्राम था, है
0: जी
1: ना।
0: बिल्कुल। और डॉक्टर राजेश्वर राव हमारे साथ जुड़ गए हैं शकरपुर में इन विकास मार्ग से। वो कह रहे हैं, जब मैं बच्चा था तो मैं छोटा सा पॉकेट रेडियो मेरे पास था, उससे मैं क्रिकेट मैच की कमेंट्री सुना करता था, सॉन्ग सुना करता था, और उन दिनों सुन के बड़ा ही मजा आता था ये कार्यक्रम सुनकर।
1: बिल्कुल। और देखिए, ये अफरोज शेख जी हैं सुपौल बिहार से, वो कह रहे हैं कि 38 साल की उम्र में मैं 10 साल से रेडियो से जुड़ा हुआ हूँ, और रेडियो सुने बगैर वो नहीं रह सकते,
0: क्या
1: और तब
0: बात है,
1: तक काम करता रहता हूँ। और उनको फरमाइश, फोन इन प्रोग्राम वो कहते हैं कि होना चाहिए कि लिसनर्स की आवाज़ भी हम सुन सकते हैं, और वो हमें बधाई दे रहे हैं जी। आपको भी ढेरों ढेरों बधाई, क्योंकि आप जैसे श्रोता हैं, देखिए रश्मि जी, तभी तो हम हैं, है ना।
0: बिल्कुल। और बिहार से हम जाते हैं अमृतसर की ओर, वहां से खजाना गेट से जुड़ चुके हैं प्रेम सागर शुभलता हमारे साथ। वो कह रहे हैं कि हम 100 साल का इंतजार करें आकाशवाणी का, और हमें FM गोल्ड बहुत पसंद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, FM आकाशवाणी के FM गोल्ड से हमेशा जुड़े रहिए। और भी बहुत सारी मेल्स हमारे पास आ गई हैं। गौरी शंकर जी की मेल आ गई है नागलोई से। वो कह रहे हैं कि दोनों बेटियों को राम राम जी, राम राम जी। और कह रहे हैं कि 1964 से रेडियो घर पर आया, तब मैं करीब 6 साल का था, और पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई कि उनके घर रेडियो आया है। हम पंजाब में रहते थे, आज भी मुझे वही शौक है रेडियो सुनने का। एक भी दिन अगर ना सुनो तो बेचैनी हो जाती है। इसमें ये फायदा है कि आदमी काम भी करता रहता है, सुनता भी रहता है, और कार्यक्रम हमें बहुत अच्छे लगते हैं जी। शुक्रिया गौरी शंकर जी। अगर आपका मेल नहीं आता तो हमें भी लगता है आज क्या बात है भाई, आपका मेल नहीं आया।
1: बिल्कुल। और रश्मि जी, मतलब ये जो मेल हैं, ये जो संदेश है, इनका सिलसिला तो चलता रहेगा, और हम उम्मीद करते हैं कि मेल आते रहेंगे। तो लेकिन अभी हम कार्यक्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं,
0: जी
1: है
0: बिल्कुल,
1: ना। तो आज हम बात करेंगे देश की उस ऊर्जा की जो हमारे वर्तमान को गति देती है और भविष्य को एक नई दिशा। जी हाँ, बात हमारी युवा पीढ़ी की। देश की युवा शक्ति आज कला, खेल, विज्ञान, तकनीक, शिक्षा और उद्यमिता जैसे अनेक क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही है। नई सोच, नए विचार और नई तकनीक के साथ युवा लगातार आगे बढ़ रहे हैं।
0: जी बदलती जीवन शैली ने युवाओं के सामने नए अवसर भी खोले हैं। आज घर बैठकर दुनिया भर की जानकारी हासिल की जा सकती है, ऑनलाइन पढ़ाई की जा सकती है, नई नई चीजें सीखी जा सकती हैं, और अपनी प्रतिभा को दुनिया तक पहुंचाया जा सकता है। आज हम प्रतिभा वर्ष शब्द को ज्यादा बोल रहे हैं जी, और लेकिन हम ये कहेंगे कि संतुलन होना भी बहुत जरूरी
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल, जरूर संतुलन होना चाहिए। आज मोबाइल फोन और सोशल मीडिया हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं, ये हम सभी जानते हैं ना। और इनका जो सही इस्तेमाल हमें सीखने, जुड़ने और अपनी रचनात्मकता को सामने लाने का अवसर देता है। लेकिन साथ ही ये भी तो जरूरी है कि हम ऑनलाइन दुनिया के साथ अपनी वास्तविक जिंदगी को भी उतना ही समय दें। क्यों
0: जी खेल कूद हो, प्रकृति के बीच समय बिताना, किताबें पढ़ना, ये सब सकारात्मकता और खुशी ला सकती हैं, और अपने स्वास्थ्य और फिटनेस को लेकर जागरूक होना बहुत जरूरी है, जो हो ही रहे हैं बच्चे आजकल के।
1: जी
0: जिम हो, योग हो, खेल, डांस, साइकिलिंग या घर पर किया जाने वाला व्यायाम, ये बहुत सारे विकल्प हैं हमारे साथ।
1: बिल्कुल। और देखिए, आपने एक्सरसाइज की बात की, साथ ही साथ संतुलित भोजन और पर्याप्त नींद भी बहुत जरूरी है हमारी ऊर्जा और एकाग्रता के लिए। और व्यस्त जिंदगी में अपने खान पान का ध्यान रखें। और देखिए, मानसिक स्वास्थ्य को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति की देखिए अपनी गति, कार्य क्षमता और अपनी मंजिल होती है, तो आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर बिल्कुल ना
0: तो
1: करें।
0: हम ये कहेंगे प्रतिभा की बदलती जीवन शैली को एक सकारात्मक दिशा दे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, और जो युवा ऊर्जा जो हमारे देश को प्रगति के पथ पर लेकर जाएगी, उसको सही दिशा में जरूर इस्तेमाल करें।
1: बिल्कुल,
0: तभी तो हम कहेंगे ना कि आजकल पांव जमी पर नहीं पड़ते
1: पड़ते
0: मेरे।
1: मेरे।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आप ये गीत सुन रहे थे, फिल्म थी घर। और रश्मि जी, आगे हम बढ़े से पहले एक मेल और पढ़ लें, है
1: जी
0: ना। ये मेल आया है योगराज सहगल जी का। वो कहते हैं कि पहले महिला जगत कार्यक्रम आता था और तब भी वो इस कार्यक्रम को सुनते थे। फिर उन्होंने लिखा है कि आधा आकाश हमारा कार्यक्रम के नाम से ये कार्यक्रम आने लगा, तो उसके भी ये रेगुलर श्रोता रहे और आजकल घर आंगन कहते हैं कि मैं सुनता हूँ। और वो ये कह रहे हैं कि वो दृष्टि बाधित हैं और दिल्ली से लिख रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं रेगुलर लिसनर हूँ
1: वाह,
0: आपके
1: बिल्कुल
0: प्रोग्राम्स का।
1: हम समझ गए, क्योंकि आपने पूरा इतिहास जो महिला

0: कार्यक्रम का था, हमें याद दिला दिया, हमें सभी सुनने वालों को याद दिला दिया। वाकई बिल्कुल सही कहा आपने, महिला जगत के नाम से फिर आधा आकाश हमारा और फिर घर आंगन, और उसके साथ घर आंगन के साथ एक और बात कि वो FM चैनल पर भी जुड़ा। देखिए कितने हमारे पुराने श्रोता हैं जो कि पूरी लॉयल्टी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारा पूरा कर्तव्य बन जाता है इनके प्रति कि हम उनके लिए सही जानकारियां और सही मनोरंजन लेकर आएं और उनका लगातार ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद योगराज जी आपका जुड़े रहने के साथ, ऐसे ही जुड़े रहिए और ईमेल लिखते रहिए हमें। एक और ईमेल आ गई है हमारे पास, आप हैं राजू अग्रवाल, चरणदास, रेखा चौधरी हिसार से, वो कह रहे हैं श्रोता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी जानते हैं रेडियो ने मुझे जीवन दिया है, श्रोता तथा प्रस्तुतकर्ता के साथ रिश्तेदारों से ज्यादा प्यार है। भाई वाह, एक श्रोता का कर्तव्य है कि प्रोग्राम सुनकर उचित प्रतिक्रिया दे और प्रोग्राम की गुणवत्ता बढ़ाए, झूठी तारीफ ना करे। बिल्कुल सही बात, सिर्फ नाम शामिल करने के लिए। वाह, देखिए हमारे श्रोता जो है हमें सिखाते हैं, हम बहुत कुछ सीखते हैं अपने श्रोताओं से। बहुत बहुत धन्यवाद राजू ये आपका।
1: और
0: एक और मेल आ गई है।
1: हाँ जी
0: जी, उग्रसेन यादव जी की मेल है, राम राम कह रहे हैं जी, और कह रहे हैं वैसे रेडियो मैं 1985 से सुन रहा हूँ और समाचार ज्यादा मैं सुनता था, पर फिर गानों का भी शौक मुझे लग गया और उर्दू फरमाइश जो है 10 से 11 बजे रात में और आज शहनाज जी पेश करती थी, और आज भी मुझे याद है सुबह सयानी साहब की आवाज में भी वो सुना करते थे। उग्रसेन यादव जी नई दिल्ली से कह रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि जो हमारी उर्दू सर्विस है आकाशवाणी की उसकी शायद आप याद कर रहे हैं, और शहनाज अख्तरी की अगर आप बात कर रहे हैं तो विविध भारती से शहनाज अख्तरी जुड़ी रही हैं अपने श्रोताओं के साथ थी, और सारे कार्यक्रम याद कर रहे हैं श्रोता आज के दिन।
1: मतलब जो हमारे जो एंकर रहे हैं उनकी आवाज आज भी हमारे श्रोताओं के दिलों में ताजा बनी हुई है। क्यों
0: जी, बिल्कुल।
1: और अब आगे हम रुख करते हैं कार्यक्रम में
0: जी,
1: है ना। रश्मि जी देखिए, दिल्ली लक्ष्मी योजना की आज हम बात करेंगे, जो कि दिल्ली सरकार की एक आर्थिक कल्याणकारी योजना है और जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की पात्र महिलाओं को प्रति माह 2500 की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
0: और इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। जो इसकी पहली किश्त है वो 28 अगस्त 2026 को जारी किए जाने की तैयारी है। पात्रता की बात कर लेते हैं तो आवेदक महिला की आयु 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और जिसकी वार्षिक आय जो है 2.5 लाख रुपए से कम हो।
1: बिल्कुल, और साथ ही साथ जो भी महिला है, पात्र महिला है, वो कम से कम पिछले 10 वर्षों से दिल्ली की निवासी होनी चाहिए और उनके पास स्थानीय मतदाता के रूप में वो पंजीकृत होनी चाहिए
0: जी। आयकरदाता, GST रिटर्न भरने वाले, सरकारी या संविदा कर्मचारी, चार पहिया वाहन मालिक इस योजना के पात्र नहीं है, और परिवार में सबसे बड़ी एक महिला को इस योजना का लाभ मिलेगा और ये पैसे डिजिटली ट्रांसफर किए जाएंगे। इस पैसे को खर्च करने के भी कुछ नियम तय किए गए हैं प्रतिभा,
1: और वो ये है कि जो पहला नियम है वो ये है कि आप 1000 रुपए आपके कार्ड में आएंगे और 1500 रुपए आपके रेकरिंग अकाउंट में डिपॉजिट किए जाएंगे जो आपको इकट्ठे 3 साल बाद मिलेंगे ब्याज सहित, और दूसरा ये कि आप 2500 रुपए फिक्स डिपॉजिट में ले सकते हैं जिसे आपको 3 साल बाद ब्याज के साथ दिया जाएगा।
0: तो इस सभी जो जरूरी दस्तावेज हैं और आधार कार्ड जो है, दिल्ली के मतदाता पहचान पत्र और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और हस्ताक्षर, क्षेत्र के सांसद या विधायक का समर्थन, संस्तुति पत्र और बिजली या गैस कनेक्शन का बिल, ये सारे दस्तावेज चाहिए। और इसके अलावा प्रतिभा,
1: इसके अलावा ये है कि अब आपको जो आधिकारिक वेबसाइट है जो कि है दिल्ली लक्ष्मी योजना ऑफिशियल पोर्टल, उस पर आप जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकती है और बहुत सारे आवेदन हो भी चुके हैं, तो आज ही खुद को रजिस्टर करें और इस योजना का लाभ उठाएं।

0: मंगेशकर की आवाज़ में। अभी आपने एक गीत सुना फिल्म की दो रास्ते।
1: जी। और आगे बढ़ते हैं प्रतिभा।
0: बिल्कुल
1: देखिए, जब 40 के पार
0: जी,
1: उम्र हो जाती है तो हमें थोड़ा सोचना पड़ता
0: बिल्कुल
1: है ना।
0: हाँ
1: हम सभी जानते हैं हमारा शरीर जो है वो कोशिकाओं, ऊतकों और अस्थि से मिलकर बना हुआ है। शरीर के पास भी जो कहते हैं ना, थोड़ा

0: टूट फूट होती रहती है हमारी शरीर की कोशिकाएं, बनती बिगड़ती रहती हैं।
1: बिल्कुल। और देखिए होता क्या है कि एक समय के बाद शरीर थोड़ा सा शिथिल पड़ जाता है और शरीर की जो कार्य प्रणाली है वो धीमी पड़ जाती है। ऐसे में शरीर में प्राकृतिक रूप से मांसपेशियों और हड्डियों की डेंसिटी यानी घनत्व कम होना शुरू हो जाता है। इसलिए बढ़ती उम्र के साथ सक्रिय रहना और स्वस्थ रहना बेहद ज़रूरी है।
0: तो फिर ऐसे में क्या किया जाए भाई? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जाए, मांसपेशियों को क्षय होने से ये रोकती है, और मांसपेशियों को मजबूत बनाने वाली जो कसरत है यानी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, आप घर पर रहकर भी कर सकते हैं बिना किसी जिम के जाए और बिना किसी उपकरण के।
1: बिल्कुल
0: कुर्सी की मदद से आप स्क्वैट कर सकते हैं, स्क्वैट माने घुटनों के जो बल हम बैठते हैं, और
1: हाँ
0: दीवार के सहारे आप पुशअप कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। और देखिए काफ रेज भी कर सकते हैं, मजबूत दीवार को पकड़कर पंजों के बल ऊपर उठना और धीरे धीरे नीचे आए। इससे आपकी जो काफ मसल्स होंगी वो काफी मजबूत होंगी। और एक चीज और किया जा सकता है रश्मि जी, वो
0: जी
1: ये कि घर में पानी की 1 लीटर की बोतल या 2 लीटर की बोतल पानी से भर कर भी आप बाइसेप्स कर्ल, शोल्डर प्रेस या फ्रंट रेज जैसी छोटी छोटी एक्सरसाइज कर सकते हैं जो मसल्स को ताकत देंगी।
0: जी शुरुआत जो करनी चाहिए वो हल्के वजन से करें, और हर गतिविधि को धीरे और नियंत्रित तरीके से उठाएं। अगर आपको दर्द हो या असहजता महसूस हो तो फिर व्यायाम ना करें ऐसा वाला। और उसके बाद जो पानी की बोतल को उठाएं, तो याद रखें पानी पीने के काम ही नहीं आता, बल्कि आपके घर के आसान वर्कआउट का हिस्सा भी बन सकता
1: बिल्कुल।
0: है।
1: और देखिए होता क्या है कि अगर आप वजन उठाने वाले व्यायाम करते हैं तो हड्डियां तो मजबूत होती ही होती हैं, साथ ही जो फ्रैक्चर का खतरा है ना वो कम हो जाता है। मेटाबॉलिज्म तेज होता है जिससे बढ़ा हुआ वजन नियंत्रित होता है।
0: जी ये बिल्कुल जोड़ों को भी सहारा देते हैं, और दैनिक कार्य में आसानी होती है, गिरने और चोट लगने का जोखिम भी कम होता है। तो हम तो ये कहेंगे कि अगर आपके भी 40 पार कर चुके हैं या 40 के लेट 40s में हैं, तो आज ही अपनी दैनिक दिनचर्या में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को अवश्य शामिल करें, जो कि बढ़ती हुई जो उम्र है उसके दबाव और तनाव को कम करें।

0: मालूम नहीं है
1: हमसे सुनो।
2: मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी शागिर्द। और रश्मि जी एक मेल और पढ़ देते हैं हम लोग, है ना, सुदर्शन मुखी और अनीता मुखी, सिमरन मुखी, ये लोग लिख रहे हैं शांतिनगर सोनीपत से। और उन्होंने देखिए रेडियो को कितने अच्छे से डिफाइन किया है कि सूचना, शिक्षा और स्वस्थ मनोरंजन, है ना। और वो कहते हैं कि अपनी पसंद का गीत सुनने के लिए विविध भारती दिल्ली के कार्यक्रम संगम हम सफर में वो पोस्ट कार्ड भेजते थे, और आज भी मुंबई केंद्र पर कार्यक्रम मन चाहे गीत में वो अपने फरमाइशें जो है वो भेजते हैं, और वो हमें आज के दिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो हमारी तरफ से भी आप सभी को आज के दिन की शुभकामनाएं
3: जी। और एक और मेल आ गई है हमारे पास, सुरभि हमारे साथ जुड़ गई है मयूर विहार से। वो कह रही है कि रेडियो जो है वो हमारे परिवार का सदस्य है, और मोबाइल और रेडियो में फ़र्क ये है कि भाई मोबाइल को तो चार्ज करना पड़ता है, पर रेडियो को तो बस हम लगा देते हैं, ऑन कर देते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि रेडियो में जब हम कल्पना करते हैं तो कल्पना में जो हीरो होता है वो हमेशा जो है हैंडसम होता है, ऐसा वो लिख रही हैं। और इसके अलावा राघव जुड़ गए हैं दिलशाद गार्डन से। वो कह रहे हैं रेडियो की जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये है कि घर में जब काम ज़्यादा होता है और काम करने का मन नहीं होता है, कोई कहता है काम करो तो मैं कह देता हूँ भाई मैं रेडियो में अपना बहुत इंपॉर्टेंट कार्यक्रम सुन रहा हूँ। भाई वाह क्या बात है, कहते गाने इतने अच्छे बजते हैं कि काम करने का मन नहीं करता। भाई ये तो बात सही नहीं, गाने आप सुनते रहिए और साथ में जो घर के ज़रूरी काम है वो करते रहिए।
2: बिल्कुल, है ना। और देखिए रश्मि जी अब आगे बढ़ते हैं, बात महिलाओं की, महिलाएं आज सशक्त हैं और देखिए उन्होंने हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है और आज महिलाएं नए आयाम गढ़ रही हैं। तो कभी कभी कार्यस्थल पर सुरक्षा को लेकर उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए सरकार द्वारा शी बॉक्स पोर्टल की शुरुआत की गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ये एक ऑनलाइन पोर्टल है, और जो ये जो पोर्टल है ये कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतों को दर्ज करने और उनकी निगरानी के लिए एक सुरक्षित डिजिटल मंच है।
3: अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो सरकारी, निजी, संगठित, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली सभी महिलाएं इस पर शिकायत कर सकती हैं। और पोर्टल पर शिकायत एक पीड़ित महिला या शिकायतकर्ता की ओर से या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दर्ज की जा सकती है, और यदि वो पीड़ित महिला स्वयं है तो वो अपना मूल विवरण जैसे उसकी कार्यस्थिति, नाम, फोन नंबर और ईमेल दर्ज करके पोर्टल पर उसे लॉगिन करना होता है।
2: और देखिए शिकायत करने वाला जैसा कि बताया कि कोई और व्यक्ति भी कर सकता है उस महिला के बिहाफ पर, तो उसे भी अपना नाम, शिकायतकर्ता के साथ उनका संबंध और शिकायतकर्ता की ओर से अंडरटेकिंग के साथ साथ पीड़ित महिला और शिकायतकर्ता की कार्यस्थिति, नाम, फोन नंबर और ईमेल दर्ज करके पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
3: तो अगर आप शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो इस पोर्टल पर जाइए और शिकायत दर्ज कीजिए, तो फिर इसकी ऑनलाइन ट्रैकिंग भी होगी और ये जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रखी जाती है।
2: और देखिए शिकायत जो है वो संबंधित आंतरिक समिति और स्थानीय समिति को जांच के लिए सीधे भेज दी जाती है, और महिलाओं को शिकायत दर्ज करने, उनकी स्थिति पर निगरानी रखने और सुनिश्चित करने में ये मदद करता है कि उनकी शिकायतों का समय पर निपटारा होगा।
3: तो इस अधिनियम

के तहत जांच के लिए जो दिन है वो 90 दिन का समय निर्धारित किया जा गया है। तो हम तो ये कहेंगे अपने अधिकारों को जाने, अपने कर्तव्यों को जाने, समझें और किसी भी परिस्थिति में सहायता लेने से ना हिचकें।

0: रश्मि जी, एक मेल और है इदरीस सैफी जी का, जो कह रहे हैं कि वो बचपन से रेडियो सुन रहे हैं
1: जी
0: और कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो गया है, और हम श्रोताओं को बता दें कि वो ये गाना सुन रहे हैं फिल्म खुशबू से, आवाज़ है आशा भोसले की। तो इस वादे के साथ फिर से मुलाकात होगी किसी और दिन बहुत सारी जानकारियों के साथ। तो मुझे यानी प्रतिभा को और
1: रश्मि कुकरेती को दीजिए अनुमति।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक इस समय नई दिल्ली में चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में दोनों देशों के रक्षा संबंधों को और मजबूत करने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। श्री सिंह ने जापान के कुमामोटो में आए भीषण भूकंप पर संवेदना व्यक्त की और हर जरूरी सहायता देने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि भारत जापान संबंध साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आपसी सम्मान और पुराने सभ्यतागत संबंधों पर आधारित हैं। जापान के रक्षा मंत्री ने

ट्रंप पर भारत की संवेदना के लिए आभार जताया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज सिंगापुर में वहां के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रोडमैप के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की और आर्थिक सहयोग, डिजिटलीकरण, संपर्क, कौशल विकास और स्थिरता सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक चेन्नई के कोवलम में शुरू हुई। बैठक में दक्षिणी राज्यों के नेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों ने अंतर्राज्यीय विवादों, सुरक्षा और विकास प्राथमिकताओं पर चर्चा की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ब्रिक्स अध्यक्षता को जन केंद्रित बनाने और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री यादव ने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित अपने लेख को सोशल मीडिया पोस्ट में साझा किया। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सम्मेलन का आयोजन 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में होगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि बैठक के दौरान सभी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और समय पर तैयारियां पूरी करने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि भारत की अतिथि देवो भव की परंपरा के अनुसार दिल्ली सभी विदेशी प्रतिनिधियों के सुव्यवस्थित, सुरक्षित और गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बने 2,35,000 घरों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी। उन्होंने नए लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। श्री चौहान आज पटना के बामेटी में आयोजित कृषि जनकल्याण संवाद में भी शामिल होंगे। भारत ने काबुल के एक सरकारी अस्पताल को दवाइयां और चिकित्सा सामग्री भेजी हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये सहायता अफगानिस्तान के लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत के निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका उद्देश्य अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 68 लाख रुपए से अधिक की बेहिसाब नकदी बरामद की है। सीआईएसएफ ने बताया कि संदेह होने पर दो यात्रियों की विस्तृत जांच की गई। दोनों यात्री गुवाहाटी और फिर आगे अगरतला जा रहे थे। जम्मू जिले के खेरी गांव में जमीन धंसने से करीब 12 मकानों को नुकसान पहुंचा है। इनमें दो मकानों को काफी नुकसान हुआ है। कृषि भूमि और एक सड़क भी प्रभावित हुई है। राजस्व और पुलिस की टीमों ने मौके का जायजा लिया है और राहत तथा बचाव कार्य जारी है। घरेलू शेयर बाजार सूचकांकों में आज तेजी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 557 अंक बढ़कर 77,466 जबकि निफ्टी 141 अंक के वृद्धि के साथ 24,219 पर कारोबार कर रहा था। एफआईएच हॉकी विश्वकप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड से खेलेगी। ये मैच एम्स्टर्डम के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। नई दिल्ली में बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में ट्रिसा जौली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने जापान की 7वीं वरीयता प्राप्त रिन इवानागा और की नाका निशी को हराया। पीवी सिंधु समेत भारत के कई प्रमुख खिलाड़ी आज अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, अगर हम इस फिल्म की कहानी की बात करें तो राजेश खन्ना, जो कि अशोक मेहरा के किरदार में हैं, वे एक धनी उद्योगपति होते हैं जिनका व्यवसाय सौंदर्य प्रसाधनों का होता है। उनका वैवाहिक जीवन पूर्णिमा से सुखमय रहता है। बेटी मिनी के जन्म के बाद पूर्णिमा को कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हो जाती हैं और डॉक्टर उन्हें बचाने में असमर्थ होते हैं। अशोक इस घटना से बेहद दुखी हो जाता है। कई साल बीत जाते हैं। अशोक मिनी की माँ के प्यार के लिए इतने तड़प उठते हैं कि वह अपनी बेटी की तरफ उतना ध्यान नहीं दे पाते। मिनी का व्यवहार इतना बिगड़ जाता है कि कोई स्कूल उसे पढ़ाने को तैयार नहीं होता और ना ही कोई गवर्नेंस उसकी देखभाल करने को। अशोक का व्यवसाय विदेशी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हो जाता है।

अशोक एक विज्ञापन अभियान के लिए फोटोग्राफर राज बेदी, जो कि राज बब्बर होते हैं, उनको काम पर रखते हैं। समुद्र तट पर मॉडल की तलाश करते समय बेदी की मुलाकात राधा से होती है और वह उसे अपने लिए पोज देने के लिए मना लेता है। दोनों में प्रेम हो जाता है और वे शादी कर लेते हैं। अब बेदी राधा की तस्वीरें अशोक को देने को तैयार नहीं होता और वह अनुबंध तोड़ने की कीमत चुकाने के लिए अपनी निजी संपत्ति बेच देता है। बेदी की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है और उसका करियर धराशायी हो जाता है। जब वह अपने परिवार के लिए एक साधारण जीवन का पुनर् निर्माण कर रहा होता है, तभी बेदी एक गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाता है।

श्रोताओं, जब राधा के पति बेदी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, तब राधा घर चलाने और अपने पति के इलाज के लिए पैसा बचाने के लिए नौकरी करने का फैसला करती है। लेकिन कोई भी विवाहित महिला को नौकरी देने को तैयार नहीं होता। वे अपनी वैवाहिक स्थिति के बारे में झूठ बोलने का फैसला करती है। नौकरी की तलाश में वे अशोक मेहरा के दफ्तर पहुंचती है, जहां उनके सहयोगी मिनी के लिए एक गवर्नेंस की तलाश कर रहे होते हैं। उसे तुरंत ही ये पद दे दिया जाता है, क्योंकि वह दिवंगत पूर्णिमा मेहरा से काफ़ी मिलती जुलती है। हालांकि ये बात उससे छुपाई भी जाती है। मिनी थोड़ा शुरू में सख्त लगती है, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार नरम हो जाता है। राधा के विवाहित होने से अनजान अशोक को उससे प्यार हो जाता है।

0: श्रोताओं, बेदी को अपनी पत्नी राधा की वैवाहिक निष्ठा पर संदेह होने लगता है। राधा के करीब आने की अशोक की कोशिशें और बेदी के दखलंदाज दोस्त असरानी, जो कि चंदू के किरदार में थे, उनके व्यवहार से उसका संदेह और बढ़ जाता है। अशोक और बेदी दोनों के साथ तीखी बहस के बाद राधा मिनी की देखभाल करने से मना कर देती है। मिनी के नखरों को सहन न कर पाने के कारण अशोक उसे एक छात्रावास में भेज देता है। राधा को स्वार्थी समझने और अपनी बेटी को माँ के प्यार से वंचित करने के लिए अशोक को अपराध बोध होता है। जब राधा द्वारा खरीदी गई लॉटरी का टिकट जैकपॉट जीत जाता है तो अशोक अपने सहयोगी को पुरस्कार राशि राधा को देने के लिए भेजता है, जो बेदी के इलाज के लिए अमेरिका में व्यवस्था करती है। हवाई अड्डे पर अशोक ने के उनसे मिलने पर तीनों के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो जाती है। उड़ान में देरी का फायदा उठाते हुए अशोक मिनी को राधा और बेदी द्वारा गोद लेने की व्यवस्था करता है। फिल्म की आखिरी पंक्ति अशोक मेहरा द्वारा रेखा के दोनों किरदारों को संबोधित करते हुए दर्द भरे लहजे में बोली जाती है, मैंने तुम्हें एक बार प्यार किया लेकिन दो बार खो दिया।
1: आज तो पार्टी चाहिए,
2: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
4: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
4: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: तो श्रोताओं, ये थी इस फिल्म की कहानी और हमारे पास भर भर के संदेश आ रहे हैं, तो आइए उन संदेश को हम पढ़ते हैं। पहला संदेश जो है वो है सुदर्शन शाह का, और इनके साथ है पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह, ये पद्मा टॉकीज़ नेपा नगर मध्य प्रदेश से लेकर भेज रहे हैं। नितेश देवांगन का अगला संदेश आया है, इनके साथ हैं दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम देवांगन, कृष्ण देवांगन, ये हमें लिखकर भेज रहे हैं। पलारी छत्तीसगढ़ से संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल सहानी पिंगावाला चौक कुराया जलंधर से, सुनील पाठक जी का संदेश आया है और इनके साथ है कमल पाठक और गाफिया मल्होत्रा, और यह हमें लिख कर भेज रहे हैं नारकली बाजार जगराव पंजाब से। अगला जो संदेश है वो है धर्मेंद्र छीपा का, इनके साथ है कपिल छीपा, पूजा परिहार, उन्होंने हमें लिख कर भेज रहे हैं कि फिल्म अगर तुम ना होते के बारे में बेहतरीन बातें बता रहे हैं और रोचक किस्से, कहानी और नगमे भी सुनवा रहे हैं, हम भी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जो अगला संदेश है वो है स्वर्ण सिंह, इनके साथ हैं दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से। अगला जो संदेश आर कुमार का है, वंडिंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, राधे श्याम देवांगन हमें लिखकर भेज रहे हैं, के साथ हैं चंपा देवांगन, इंदिरा नगर भवरपुर से। अनिल मोहन मोहन का अगला संदेश, इनके साथ है उषा मोहन, टिल्लू नायक, पहाड़गंज, मुल्तानी, ढांडा से। सुधाकर जाधव हमें लिखकर भेज रहे हैं, इनके साथ है डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव और इनके अन्य सदस्य। सुदर्शन मुखी हमें संदेश भेज रहे हैं, इनके साथ है अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर, सोनीपत से। तो श्रोताओं, चलिए सुनते हैं इस फिल्म का अगला गीत और अगले संदेशों को भी हम शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये गीत शैलेंद्र सिंह और साथियों की आवाज़ों में।

0: क्या कर रहे हो? छोड़ो ना। नहीं श्रोताओं, अगला संदेश आया है सुर संगम रेडियो श्रोता संघ से, और इन्होंने इनके साथ है अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, भावेश कुमार भावसार और इनके अन्य परिवार के सदस्य विरमगाम से यह मिलकर भेज रहे हैं। जो अगला संदेश है वो है बिट्टू गजनेजा का जलालाबाद वेस्ट से, और इनके साथ है पूनम दिशानी निमित। अगला संदेश है हीरामणि वर्मा का, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं भाटा पारा से। उषा मोहन का अगला संदेश आया है, और साथ ही जो अगला संदेश है वो है गुरमीत सिंह का, इनके साथ है मीता साउथ एक्सटेंशन से हमें लिखकर भेज रहे हैं। साथ में शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल हैं।
1: अरे कल तो संडे की छुट्टी है, फिर किस बात का रोना है।
0: श्रोताओं, आज हम कार्यक्रम सुन रहे हैं एक ही फिल्म से, और इस फिल्म आज की जो हमारी फिल्म थी वो है अगर तुम ना होते। ये फिल्म, इस फिल्म के लिए जो इसका जो टाइटल सॉन्ग है अगर तुम ना होते, उसके लिए किशोर कुमार को सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार मिला था, और साथ ही राज बब्बर को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का, और गीतकार गुलशन बाबरा को मिला था सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार। सन 1983 में राजेश खन्ना ने कोलंबस इंटरनेशनल फिल्म एंड वीडियो फेस्टिवल में इस फिल्म के लिए अभिनय के लिए विशेष पुरस्कार जीता था।
1: सच है ये कोई इल्जाम नहीं है, अरे सच है।

स्वर्ण सिंह हमें लिखकर भेज रहे हैं, ठाकुरा वाला सिंह के साथ है दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह। और जो अगला संदेश है वो फारूक अली खान का है और प्रकाश वर्मा जी हमें लिखकर भेज रहे हैं, के साथ है प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं छत्तीसगढ़ पलारी से।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम एक ही फिल्म से यहीं पर समाप्त होता है। तब तक के लिए मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत। कल फिर मुलाकात होगी इस कार्यक्रम को लेकर ठीक दिन के 1:10 पर।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। दिन के 1:40 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं चंचल शर्मा। पहला बुलेटिन दियां खास खबरां। भारत जापान रक्षा मंत्रियों की मीटिंग नवी दिल्ली चल रही है। मीटिंग विच दोवां मुल्कां दरमियान रक्षा संबंधां नूं होर मजबूत करन ते सहयोग के नवे खेतरां की पछाण करन ते चर्चा होण की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अज सिंगापुर विच प्रधानमंत्री लॉरेंस वांग नाल मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, भारत अपनी ब्रिक्स प्रधानगी नूं लोक केंद्रित बनाउण ते मनुखता पहलां दी भावना नाल अगे वधाउण लई वचनबद्ध है। बंगलादेश विच अज नवे राष्ट्रपति की चोण लई वोटिंग बाद दुपहर 2 बजे शुरू होगी। बैडमिंटन विच भारत की ट्रिसा जॉली ते गायत्री गोपीचंद की महिला डबल्स जोड़ी BWF विश्व चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल विच पहुंची। FIH हॉकी विश्व कप के मैच विच अज भारतीय औरतों की टीम का मुकाबला इंग्लैंड नाल शामी 6:30 बजे होगा। भारत जापान रक्षा मंत्रियों की मीटिंग इस समय नवी दिल्ली में चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ते जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी मीटिंग की सह प्रधानगी कर रहे हैं। मीटिंग में दोवां मुल्कां दरमियान रक्षा संबंधां नूं होर मजबूत करन, रणनीतिक भरोसे ते सहयोग वधाउण, हिंद प्रशांत खेतर च शांति ते सुरक्षा नूं उत्साहित करन ते सहयोग के नवे खेतरां की पछाण करन ते चर्चा होण की उम्मीद है।

0: स्पष्ट रूप से परिभाषित बिंदुओं और वार्ताओं के माध्यम से ही हासिल किया जा सकता है।
1: विद क्लियरली डिफाइंड माइलस्टोन्स एंड टाइमलाइंस।
2: उपराष्ट्रपति सी पी राधा कृष्णन ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज साबका प्रधानमंत्री राजीव गांधी नूं उन्हां दी जयंती ते श्रद्धांजलि भेंट कीती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच उन्हां ने राजीव गांधी नूं राष्ट्रपति सेवा ते जनतक जीवन च उन्हां दे योगदान लई याद कीता। देहाती विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अज पटना च प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण तहत बनाए गए 2,35,000 मकानां दीआं चाबियां इसे लाभपात्रियों को सौंपिया। बापू सभागार च प्रोग्राम दौरान श्री चौहान ने नवे चुने गए लाभपात्रियों को मंजूरी पत्र भी वंडे। इस मौके मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ते बिजेंद्र प्रसाद यादव समेत होर मंत्री भी मौजूद रहे। केंद्रीय खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्री शिवराज सिंह चौहान पटना के बामेटी विखे कृषि जन कल्याण संवाद विच भी शामिल होंगे। बंगलादेश विच 35 सालां दे लंबे वक्फे तों बाद राष्ट्रपति चोण लई अज संसद विच वोटिंग होवेगी। वोटां दोपहर बाद 2 बजे तों शामी 5 बजे तक पैणगियां। इह वोटिंग सत्ताधारी पार्टी दे संसद मैंबर अते बीएनपी दे नेता मिर्जा कफरूल इस्लाम आलमगीर ते 11 पार्टियां दे विरोधी गठजोड़ दे उम्मीदवार कर्नल उली अहमद दरम्यान होवेगी। नवे चुने गए राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन दे दरबार हाल च बंगलादेश दे नवे राष्ट्रपति वजों सहुं चुकणगे। केंद्रीय उद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने नवी दिल्ली के इंदिरा गांधी कौमांतरी हवाई अड्डे से 68 लाख रुपए तो वध की बेहिसाब नकदी बरामद की है। CISF ने दस्सिया कि शक होने के 2 मुसाफरां की बारीकी नाल जांच की गई। दोवें मुसाफर गुवाहाटी ते फिरोद हो गए अगरतला जा रहे सन। उन्होंने समान की जांच दौरान दोवां मुसाफरां तो कुल 68,53,000 रुपए बरामद हुए ने। CISF ने दस्सिया कि मुसाफर नकदी ते यात्रा नाल संबंध दस्तावेजा नूं अगलेरी कारवाई लई आमदन कर अधिकारियां नूं सौंप दिता गया। बैडमिंटन विच भारत दी ट्रिसा जौली ते गायत्री गोपीचंद दी महिला डबल्स जोड़ी नवी दिल्ली च BWF एशियन चैंपियनशिप दे क्वार्टर फाइनल विच पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन करदिया जापान दी रिन इवानागा ते अकी नाकानिशी दी जोड़ी नूं 21-16, 21-12 नाल हराया है। FIH च विश्व कप हॉकी दे पूल डी दे आखिरी मैच विच अज भारतीय औरतां दी टीम दा मुकाबला इंग्लैंड नाल शामी 6:30 बजे होवेगा। ते आखर च खास खबरां एक बार फिर तो भारत जापान रक्षा मंत्रियां दी मीटिंग नवी दिल्ली च चल रही है। मीटिंग विच दोवां देशां दरम्यान रक्षा संबंधां नूं होर मजबूत करन ते सहयोग दे नवे खेतरां दी पछाण करन ते चर्चा होण दी उम्मीद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अज सिंगापुर विच प्रधानमंत्री लॉरेंस वांग नाल मुलाकात कीती। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा भारत अपनी ब्रिक्स प्रधानगी नूं लोक केंद्रित बनाउण अते मनुखता पहलां दी भावना नाल अगे वधाउण लई वचनबद्ध है। बंगलादेश विच अज नवे राष्ट्रपति दी चोण लई वोटिंग बाद दोपहर 2 बजे शुरू होवेगी। बैडमिंटन विच भारत दी ट्रिसा जौली ते गायत्री गोपीचंद दी महिला डबल्स जोड़ी BWF विश्व चैंपियनशिप दे क्वार्टर फाइनल च पहुंची। इस दे नाल ही राष्ट्रीय खबरां दा इह बुलेटिन खत्म हुंदा है। प्रदेशक खबरां दा अगला बुलेटिन तुसी सुनोगे शाम 6:20 बजे। नमस्कार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भारत बहरुल काहिल खित्ते में दोतरफा दिफाई ताल्लुकात और सिक्योरिटी को मुस्तहकम करने की खातिर जापान के अपने हम मनसब शिंजीरो कोइजोमी के साथ बाहमी मीटिंग की है।
1: ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई है।
0: जनाब कोइजोमी ने मेडिकल इमरजेंसी के दौरान भारतीय बहरिया की जानिब से फराहम की गई इमदाद को सराहा। जनाब कोइजोमी ने कहा कि इससे इश्तराक पर मबनी ताल्लुकात का इजहार होता है, जिसमें दोनों ममालिक मुश्किल हालात में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनके दिल में भारत के लिए एक खास मकाम है। मलापुरम के नजदीक कोवालम में मरकजी वजीर दाखला अमित शाह की जेर सदारत 31वीं जनूबी जोनल काउंसिल मीटिंग का आगाज हुआ, जिसमें जनूबी रियासतों के रहनुमा और सीनियर अहदेदारान पैन रियासती तनाज़ात, सिक्योरिटी और तरक्याती तरजीहात पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। कौमी अहमियत के हामिल वसीतर मामलात पर तबादला ख्याल जारी है, जिसमें तेज तर तहकीकात के लिए फास्ट ट्रैक खसूसी अदालतों के कयाम और खवातीन और बच्चों के खिलाफ इस्मत दरी के मामलात के जल्द निपटारे समेत तालीम से मुतालिक मामलात भी शामिल हैं। भारत सिंगापुर वजारती गोलमेज आईएसएमआर का चौथा दौर आज सिंगापुर में हुआ।

0: भारत की जानिब से इस गोलमेज में वजीर खजाना निर्मला सीतारमन, वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर, कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल और सनतों, इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कॉमर्स के वजीर मामलिकत जितिन प्रसाद ने शिरकत की। ISMR का मैकेनिज्म नए और उभरते हुए शोबों में इश्तराक को फरोग देने का अहम प्लेटफॉर्म है। ISMR की इफ्तिताही मीटिंग सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी, जिसके बाद दूसरी मीटिंग अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी मीटिंग अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई थी। इन मीटिंगों के दौरान एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, कनेक्टिविटी, डिजिटाइजेशन, सेहत देखभाल और अद्वियात, हुनरमंदी के फरोग और पायदारी में भारत सिंगापुर जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी CSP रोड मैप वजा किया गया, जिसकी नकाब कुशाई गुज़श्ता साल सितंबर में सिंगापुर के वज़ीर आज़म लॉरेंस वॉन्ग के भारत दौरे के दौरान की गई। इस दौरान डॉ जयशंकर ने कल सिंगापुर पहुंचने के बाद अपने हम मनसब विवियन बालकृष्णन से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने दोनों मुल्कों के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद वसअत देने पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इसके बाद डॉ जयशंकर सिंगापुर में भारतीय हाई कमीशन के नए चांसलरी कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रखे जाने की तकरीब में जनाब बालकृष्ण के साथ शामिल हुए। देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत तामीर करदा 2,35,000 मकानात की चाबियां मुस्तफिदीन के सुपुर्द की। बापू सभानगर में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में जनाब चौहान ने नौ मुंतखब मुस्तफिदीन को इजाजतनामे भी तकसीम किए।
1: बिहार के हमारे कच्चे मकान में रहने वाले भाई और बहनों को आज 11 लाख से ज्यादा मकानों की स्वीकृति की सौगात मिल रही है। उनके पास पक्की छत होगी, अपना घर होगा, उनके सपने पूरे होंगे। लेकिन इसके साथ साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बिहार ने सम्मिलित होने का फैसला लिया है। फसलों को अगर नुकसान होगा तो फसल बीमा योजना के अंतर्गत उसकी भरपाई किसान को हो पाएगी।
0: जनाब चौहान पटना के BAMETI में कृषि जन कल्याण संवाद में भी शिरकत करेंगे। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर ममलिकत हर्ष मल्होत्रा ने आज दिल्ली के काबीना वजीर मनजिंदर सिंह सिरसा के हमराह नई दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत पौधे लगाने के एक प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए जनाब मल्होत्रा ने कहा कि जब से दिल्ली में बीजेपी हुकूमत इख्तदार में आई है, तब से सभी शोबों में मुसलसल तरक्याती काम हो रहे हैं, जिसमें माहौलियात का तहफ्फुज़ भी शामिल है।
2: हमारे पर्यावरण मंत्री सिरसा जी ने और रेखा जी ने मिलके दिल्ली के अंदर 70 लाख पेड़ लगाने की मुहिम छेड़ी और बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है। पोर्टल के माध्यम से दिल्ली में कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवा करके उसके बाद दिल्ली सरकार उनको अप्रोच करेगी, उनको पेड़ देगी या उनको ऐसे स्थान पर बुलाएगी जहां पर ग्रीन कवर बढ़ाने की बात है।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बांग्लादेश में आज सदारती इंतखाब होगा, जिसमें अरकान पार्लियामेंट हुक्मरान BNP के मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 पार्टियों के अपोजिशन इतिहाद के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद में से किसी एक को मुल्क के सदर के ओहदे के लिए मुंतखब करेंगे। बांग्लादेश में 35 साल बाद सदारती ओहदे के लिए पहली बार वोट डाले जाएंगे। वोटिंग मुल्क की पार्लियामेंट यानी जातीय संसद में आज दिन में 2 बजे से 5 बजे तक होगी। बांग्लादेश की माजूल वजीर आजम शेख हसीना के करीबी साथी मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपनी 5 साल मुद्दत कार मुकम्मल करने से पहले ही सेहत से मुतालिक वजूहात की बिना पर गुज़श्ता माह अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था, जिसके सबब सदारती इंतखाबात कराना जरूरी हो गया था। माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने आज कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जेर क्यादत भारत ब्रिक्स की अपनी सदारत को लोगों पर मरकूज और इंसानियत पहले के जज्बे से तहरीक याफ्ता बनाने की खातिर पुरअज़्म है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर अंग्रेजी के एक रोजनामे में अपना मजमून शेयर करते हुए जनाब यादव ने कहा कि ब्रिक्स की भारत की सदारत एक ऐसे मुस्तकबिल की तश्कील के लिए काम कर रही है जहां कुरे अर्ज़ को जामे और पायदार तरक्की में मरकजी हैसियत हासिल है। नायब सदर जमहूरिया CP राधा कृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साबिक वजीर आजम राजीव गांधी को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। राजीव गांधी अक्टूबर 1984 से दिसंबर 1989 तक मुल्क के वजीर आजम थे। केरलम के सभी साहिली जिलों में आज शाम तक के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने की वार्निंग जारी की गई है। साहिली इलाकों में पानी इकट्ठा होने से मुतालिक भी अलर्ट जारी किया गया है। बैडमिंटन में नई दिल्ली में तीसरा जोली और

गायत्री गोपीचंद की भारतीय खवातीन की जोड़ी बीडब्ल्यूएफ आलमी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने जापान की सातवें दर्जे की जोड़ी को शिकस्त दी। मर्दों के सिंगल्स में आयुष शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के अलवी फरहान से होगा। मर्दों के डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी जुनेद आरिफ और रॉय किंग का प्री क्वार्टर में सामना करेंगे। एफआईएच हॉकी आलमी कप के पूल डी के आखिरी मैच में खवातीन की भारतीय टीम का मुकाबला आज इंग्लैंड से होगा। ये मैच एम्स्टलफिन के वेगनियर स्टेडियम में भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। मंगल के रोज जनूबी अफ्रीका को 6-1 से हराने के बाद भारतीय खवातीन टीम के हौसले बेहद बुलंद हैं। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भारत बहरुल काहिल खत्ते में दोतरफा दिफाई ताल्लुकात और सिक्योरिटी को मुस्तहकम करने के खातिर जापान के अपने हम मनसब शिंजीरू कोइजोमी के साथ बाहमी मीटिंग की है। वजीर दाखिला अमित शाह ने अहम बैन रियासती तनाज़ात सिक्योरिटी और तरक्याती मामला पर तबादला ख्याल के लिए तमिलनाडु में 31वीं जनूबी जोनल काउंसिल मीटिंग की सदारत की। आज सिंगापुर में भारत सिंगापुर वजारती गोलमेज का चौथा दौर हुआ। बांग्लादेश में 35 साल के वक्फे के बाद आज पहली मरतबा सदर के इंतखाब के लिए वोट डाले जा रहे हैं। और आज शाम एफआईएच हॉकी आलमी कप में भारतीय खवातीन टीम का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: भारत और जापान के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में तमिलनाडु के कोवलम में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय विवादों, सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर चर्चा। भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक में सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श। बांग्लादेश में 35 वर्ष के अंतराल के बाद राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान जारी। और त्रिशा जौली तथा गायत्री गोपीचंद BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमे ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने, मेक इन इंडिया के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और रणनीतिक विश्वास बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्री कोइजुमे और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत किया। उन्होंने जापान के कुमामोतो क्षेत्र में आए भीषण भूकंप के बाद भारत की ओर से संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
1: हम यह दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस, रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नरस्टोन बन गई है।
0: श्री सिंह ने कहा कि एशिया के दो प्रमुख लोकतंत्र होने के नाते भारत और जापान पर शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने की बड़ी जिम्मेदारी है।
1: हमारी मैरीटाइम लाइफलाइंस बढ़ती हुई वल्नरेबिलिटीज का सामना कर रही हैं। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ओवरफ्लाइट और अनहिंडर्ड लॉफुल कॉमर्स को सुनिश्चित करना सिर्फ इकोनॉमिक नेसेसिटी नहीं है बल्कि यह एक स्ट्रेटेजिक इम्परेटिव भी है। इंडियन ओशन और पब्लिक ओशन की सुरक्षा आपस में गहरे रूप से जुड़ी हुई है, इसलिए इंडिया के महासागर विजन यानी म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन और जापान के फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव के बीच क्लोज अलाइनमेंट आज पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी है।
0: श्री कोइजुमे ने कुमामोतो में भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति भारत की संवेदना पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के एक जहाज में चिकित्सा आपात स्थिति के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा दी गई सहायता की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि ये दोनों देशों के बीच सहयोग का प्रतीक है, जहां मुश्किल समय में दोनों देश एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। दोनों नेताओं ने समुद्री संचार मार्गों की सुरक्षा के लिए दोनों देशों के बीच समन्वय मजबूत करने पर सहमति जताई। इससे पहले आज सुबह जापान के रक्षा मंत्री ने राष्ट्र समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक तमिलनाडु के कोवलम में शुरू हो गई है। बैठक में दक्षिणी राज्यों के नेता और वरिष्ठ अधिकारी अंतर्राज्यीय विवादों, सुरक्षा और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। बैठक में महिलाओं और बच्चों के साथ दुष्कर्म के मामलों की जल्द जांच और सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें बनाने तथा शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय सहयोग, आंतरिक सुरक्षा, आर्थिक विकास, औद्योगिक निवेश और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ब्रिक्स अध्यक्षता को जन केंद्रित बनाने और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री यादव ने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित अपने लेख को सोशल मीडिया पोस्ट में साझा किया। उन्होंने कहा कि भारत मिशन लाइफ के सिद्धांतों पर आधारित सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने के साथ साथ वनीकरण, जंगलों में आग की रोकथाम, आपदा से निपटने की क्षमता और पारंपरिक ज्ञान पर आधारित जन केंद्रित जलवायु अनुकूलन पर बल दे रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सम्मेलन का आयोजन 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में होगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि भारत

0: की अतिथि देव भव की परंपरा के अनुरूप दिल्ली सभी विदेशी प्रतिनिधियों के सुव्यवस्थित, सुरक्षित और गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। चौथी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक आज सिंगापुर में हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य, उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बैठक में हिस्सा लिया। एक रिपोर्ट।
1: बैठक में डिजिटल तकनीक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संचालन और साइबर सुरक्षा जैसे रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में उन्नत विनिर्माण, फिनटेक, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य और सतत विकास के क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर बल दिया गया। डिजिटल कौशल विकास में सहयोग को नई गति देने पर भी चर्चा हुई। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक दोनों देशों के बीच नए और उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण मंच है। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी, दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: भारत ने काबुल के एक सरकारी अस्पताल को दवाइयां और चिकित्सा सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह सहायता अफगानिस्तान के लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका उद्देश्य अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। भारत और नेपाल के बीच सीमा प्रबंधन पर चौथी संयुक्त कार्य समूह की बैठक आज उत्तराखंड के देहरादून में शुरू हुई। दो दिन की इस उच्च स्तरीय बैठक में सीमा सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तथा आपसी हित के अन्य मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति के पूरा वंदे मातरम गाने के बजाय इसके केवल दो छंद गाने के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह संसद से पारित कानून का खुला उल्लंघन है और राष्ट्रविरोधी है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री शाह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एक बार फिर वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टिकरण का रास्ता अपना रही है।
2: मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के दो टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चलेगी। आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी।
0: वंदे मातरम पर कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाए जाने के बाद कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वर्ष 1937 से वंदे मातरम का गायन करती आ रही है। नई दिल्ली में श्री वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के लिए भावना का मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति का मुद्दा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बने 2,35,000 घरों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी। उन्होंने नए लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। श्री चौहान आज पटना के बामेटी में आयोजित कृषि जन कल्याण संवाद में भी शामिल होंगे। वाणिज्य विभाग में अपर सचिव यशवीर सिंह ने कहा है कि भारत के निर्यात में प्रगति, मुक्त व्यापार समझौतों के प्रभावी इस्तेमाल, विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं, आपूर्ति श्रृंखला को देश में ही विकसित करने और नए बाजारों तक पहुंच बनाने पर निर्भर करती है। उन्होंने बात भारतीय उद्योग विनिर्माण संघ के तीसरे सम्मेलन में कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आज नई दिल्ली में दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से पर्यावरण संरक्षण सहित सभी क्षेत्रों में विकास कार्य में निरंतर प्रगति हो रही है।
3: हमारे पर्यावरण मंत्री सिरसा जी ने और रेखा जी ने मिलके दिल्ली के अंदर 70 लाख पेड़ लगाने की मुहिम छेड़ी और बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है। पोर्टल के माध्यम से दिल्ली में कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवा

0: आकर के उसके बाद दिल्ली सरकार उनको अप्रोच करेगी, उनको पेड़ देगी या उनको ऐसे स्थान पर बुलाएगी जहां पर ग्रीन कवर बढ़ाने की बात है।
1: कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ माँ के नाम अभियान को दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा अभियान बताया।
2: एक पेड़ माँ के नाम 2.0 जो देश के प्रधानमंत्री जी ने सेकंड मुहिम शुरू की है, इसमें अब तक 50 लाख पेड़ और पौधे लग चुके हैं। ये दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा अभियान है। पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर करके अब तक 3.5 लाख पेड़ लगाए जा चुके हैं, जिसमें लगभग 1,58,000 पब्लिक के लोगों ने आकर साथ दिया। ऐसे अनेकों हमारे मुहिम चल रही है, हम दिल्ली के अंदर एक बड़ा प्रचार प्रसार इस पर्यावरण को बचाने के लिए कर रहे हैं।
1: जम्मू जिले के खेरी गांव में जमीन धंसने से करीब 12 मकानों को नुकसान पहुंचा है। इनमें 2 मकानों को काफी नुकसान हुआ है। कृषि भूमि और 1 सड़क भी प्रभावित हुई है। राजस्व तथा पुलिस की टीमों ने मौके का जायजा लिया है और राहत और बचाव कार्य जारी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए जातीय संसद में मतदान हो रहा है। मतदान 5 बजे तक चलेगा। सत्ता

0: पीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने जापान की सातवीं वरीयता प्राप्त रिन इवानागा और की नाकानिशी को हराया। खेल के बाद मीडिया से बातचीत में गायत्री और त्रिशा ने कहा कि वे मैच के शुरुआती 2-3 अंकों में ही विपक्षी खिलाड़ियों की रणनीति समझ गई थी। उन्होंने बताया कि पहले गेम के दूसरे हिस्से में उन्होंने आक्रामक खेल अपनाया और यही रणनीति दूसरे गेम में भी जारी रखी, जिसका उन्हें फायदा मिला। पीवी सिंधु समेत भारत के कई प्रमुख खिलाड़ी आज अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। सिंधु का सामना चीन की वांग झी यी से होगा। युवा खिलाड़ी आयुष शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया के जुनैदी आरिफ और रॉय किंग याप से होगा। वहीं मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी चीन के गुओ शिनवा और चेन फांग हुई से खेलेगी। और हॉकी में FIH विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड के साथ मुकाबला खेलेगी। ये मैच अम्स्टलफेन के वैगनर स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा।
1: घरेलू शेयर बाजार सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में तेजी बनी रही। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 668 अंक बढ़कर 77,577 जबकि निफ्टी 169 अंक की बढ़त के साथ 24,248 पर कारोबार कर रहा था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन तक तेज वर्षा हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और जापान के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। तमिलनाडु के कोवलम में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में अंतर्राज्यीय विवाद, सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर चर्चा। भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक में सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श। बांग्लादेश में 35 वर्ष के अंतराल के बाद पहली बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी। और त्रिशा जॉली तथा गायत्री गोपीचंद BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। वीडियो में 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, स्टूडियो घड़ी में 2:30 हुए हैं और ये वक्त है आपके पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार का, तो आइए सुनते हैं। कार्यक्रम एक ही कलाकार सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, मोहब्बत की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि बिना शोर मचाए दिल की गहराइयों में ये उतर जाती है। जब जिंदगी के किसी मोड़ पर कोई अचानक सामने आता है तो तन्हाई भी हसीन लगने लगती है। रणदीप हुड्डा के किरदार हमेशा से खामोश समंदर की तरह रहे हैं, बाहर से शांत लेकिन अंदर जज्बातों का उफान। जब पहली बार किसी का चेहरा आंखों में ठहरता है तो दिल का हर कोना बस उसी की याद से सराबोर हो जाता है।

श्रोताओं, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है, किसी को सोचना सिर्फ ख्वाहिश नहीं, एक आदत बन जाता है। फिर दिल चाहता है कि लम्हा यहीं ठहर जाए और वो इंसान कभी भी नज़रों से ओझल ना हो। उस एहसास में एक अलग ही तड़प और ताजगी होती है जब आप उस नज़दीकी को ताउम्र महसूस करना चाहते हैं।

हमारे श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज के हमारे कलाकार हैं फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा। श्रोताओं, जब दो रूहें आपस में जुड़ती हैं तो अल्फाज छोटे पड़ जाते हैं। रणदीप साहब की आंखों में वो संजीदा गहराई है जो बिना बोले सब बयां कर देती है। उनकी मुस्कान, उनकी झुकी हुई नजरें, वो सब कह जाती हैं जो शायद हजार पन्ने भी ना लिख सकें। लेकिन मोहब्बत सिर्फ खुशियों का नाम नहीं, एक लंबा सफर है जहां कभी कभी रास्ते मुश्किल हो जाते हैं। जब जिंदगी इंसान को तन्हा रास्ते पर ला खड़ा करती है, तब सच्चा प्यार एक मरहम बनकर बिखेरने से हमें रोकता है। उस बियाबान सफर में भी एक अनजान अपनापन महसूस होने लगता है।

दोस्तों, कठिन कठिन राहों से गुजरने के बाद जब दिल को एहसास होता है कि कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिन्हें वक्त और दूरी भी नहीं मिटा सकते, तो खामोशी भी एक नगमा बन जाती है। कुछ अनकहे सवाल और अनकहे जवाब हवाओं में तैरने लगते हैं।

दोस्तों, जब कठिन राहों से गुजरने के बाद जब दिल को एहसास होता है कि कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिन्हें वक्त और दूरी भी नहीं मिटा सकते, तो खामोशी भी एक

मुगमा बन जाती है। कुछ ऐसे अनकहे सवाल, अनकहे जवाब हवाओं में तैरने लगते हैं, जैसा अभी हमने कुछ देर पहले जिक्र किया। सच्ची मोहब्बत की सबसे बड़ी पहचान यही है कि ये पाने से ज़्यादा देने में और दुआओं में यकीन रखता है। जब आप खुद को भूलकर सिर्फ अपने चाहने वाले की लंबी उम्र और सलामती की कामना करते हैं, तो ये प्यार अमर हो जाता है।

श्रोताओं, ये थी रणदीप हुड्डा के सदाबहार नगमों के जरिए बुनी गई दिल को छू लेने वाली एक खूबसूरत दास्तान। इस सुहाने सफर को हम कल भी जारी रखेंगे। सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम एक ही कलाकार। इसी के साथ ही अपने दोस्त को दीजिए अनुमति और सुनिए, सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम एक ही कलाकार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्स पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मैटनी मेलेडी। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मैटनी मेलेडी। श्रोताओं, आज की दोपहर थोड़ी खास है। खिड़की से छनकर आती धूप, चाय की भीनी सी खुशबू और जहन में उमड़ते घुमड़ते कुछ पुराने ख्याल। जिंदगी भी इन्हीं छोटे छोटे लम्हों का नाम है, वही है ना। तो चलिए, आज संगीत की गाड़ी में सवार होकर दिल की एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जहाँ 6 खूबसूरत नगमे हमारी राह में फूल बिछाएंगे। हमारी इस यात्रा की शुरुआत होती है उस सच से जिसे हम हर रोज भूल जाते हैं। जी हाँ, वक्त फिसल रहा है, पर क्या हम ठहर कर इस पल को जी रहे हैं? इसी ख्याल को सुरों में पिरोया है गुलजार साहब ने। हमारा पहला गाना है आने वाला पल जाने वाला है। फिल्म है गोलमाल। आर डी बर्मन जी का यानी कि पंचमदा के हल्के गिटार स्ट्रिंग के साथ जब किशोर कुमार की मखमली आवाज गूंजती है तो दिल का हर तार झूमने उठ। इस गाने का सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि इसका साज, इसका खूबसूरत दर्शन हो सके तो इसमें जिंदगी

विदा दो, पल जो ये जाने वाला है। कोई भारी भरकम शब्द नहीं, बस किशोरदा की सादगी भरी गायकी और एक बहती हुई धुन जो सीधे आपके दिल में उतर कर कहती है, मुस्कुराइए क्योंकि ये पल दोबारा नहीं आएगा।

हमारे श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम मैडनी मेलेडी। और श्रोताओं, जैसे आप सभी जानते हैं कि जब हम पल को जीना सीख जाते हैं तो अचानक जिंदगी में किसी की आमद होती है, जैसे बारिश की पहली बूंद की तरह शरारती और ताजा। एक लड़की भीगी भागी सी, फिल्म चलती का नाम गाड़ी, एस डी बर्मन साहब का संगीत और किशोर कुमार का अलबेला अंदाज। इस गाने की खूबसूरती उसके साउंड डिजाइन में है। गैरेज का माहौल

की चाबियों के खनक, पानी की बूंदें, उस पर किशोरदा का मजाकिया अंदाज और गले से निकलती बारीक ताने। ये गाना सिर्फ सुनाई नहीं जाता बल्कि आंखों के सामने एक ब्लैक एंड वाइट नटखट सी लव स्टोरी का कैनवस बना देता है। मधुबाला की खामोश अदाएं, किशोरदा की चुलबुलाहट इसे ताउम्र के लिए अमर बना देती है। लेकिन मोहब्बत हमेशा सिर्फ हंसी ठहाके में नहीं होती, बल्कि कभी कभी रास्ते ऐसे मोड़ पर ले जाते हैं जहां दिल सवाल पूछने लगता है कि आखिर ये कौन सा सफर है।

अभी आपने सुना ये गीत, फिल्म थी वो कौन थी, संगीतकार मदन मोहन साहब, राजा मेहंदी अली खां के लिखे अल्फाज और लता मंगेशकर की रूहानी गायकी। इस गाने की सबसे खूबसूरत बात ये थी कि मदन मोहन जी का पियानो और वायलिन का ऑर्केस्ट्रेशन जो लता जी की हर हरकत को किसी जेवर की तरह सजाता है, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। इस एक लाइन में मोहब्बत का इंतहा, तड़प और समर्पण सब कुछ सिमट आता है। श्रोताओं, इसे सुनते ही एक मीठा सा दर्द भी दिल में उठता है। पर जिंदगी सिर्फ मोहब्बत के लम्हे ही नहीं देती, बल्कि कभी कभी हमें थकाती भी है, कुछ छीनती भी है। तब इंसान जिंदगी से शिकायत तो करता है, पर उससे रिश्ता तोड़ नहीं पाता। इस खामोश गुफ्तगू को बयां करता है हमारा अगला गाना, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं मैं। फिल्म है मासूम, पंचमदा की बांसुरी की वो दर्द भरी तान और गुलजार साहब के शाहकार जिंदगी के नफरत नहीं करता, बल्कि एक दोस्त की तरह उससे शिकायत करता है, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूं मैं। जब लता जी या अनूप घोसला इस गीत को गाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई हमारे दिल के जख्मों पर हौले से सहला रहा हो। ये गाना दुख में भी एक अजीब सा सुकून और हिम्मत देता है।

श्रोताओं, भी आपने फिल्म अंदाज का एक खूबसूरत गीत सुना, शंकर जयकिशन का संगीत, हसरत जयपुरी के बोल और किशोर कुमार की ये ऐतिहासिक योडलिंग। श्रोताओं, इस गाने का सबसे खूबसूरत पहलू है उनकी वो ऊर्जा और किशोरदा का वो बेफिक्र अंदाज। कल क्या हो किसने जाना, गाते हुए जब किशोरदा अपनी आवाज को बयां करते हैं तो सुनने वालों का दिल झूम उठता है। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत फिल्म आबरू से।

श्रोताओं, भी आपने ये गीत सुना और ये था आज के मैटनी मेलोडी का संगीत में सफ़र। तो अंत में एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़िए और अपनों का हाथ थामे रखिए और सुनते रहिए मैटनी मेलोडी। अब अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे सुरों के नए कारवां के साथ। अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम मैटनी मेलोडीज। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

बदसूरत मर्दों और औरतों को देखना गवारा नहीं करते थे, भले ही वो उनका करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। इसी तरह खूबसूरत लोगों को देखकर वो उनसे शदीद मोहब्बत का इजहार भी करते थे। बचपन में फिराक को खेलकूद से कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि जब उनके घर के बच्चे खेलने में मशगूल हो जाते तो फिराक खेत और बाग की सैर को निकल जाते, क्योंकि फितरत से उनको शदीद लगाव था। फिराक एक हिंदू घराने से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन उनके घर के लोग आज़ाद तबीयत के मालिक थे, इसीलिए गोशखोरी और शराब नूशी की उनके घर में ममानअत नहीं थी। फिराक को भी बचपन से इन दोनों चीज़ों से ख़ास रगबत हो गई थी। इससे ये मुराद नहीं है कि उन्होंने अपने मज़हब को तर्क कर दिया था, बल्कि वो रात को रामायण सुनने के भी आदी थे। बोलचाल में फिराक उर्दू हिंदी के अलावा अक्सर भोजपुरी जबान का भी इस्तेमाल करते थे। फिराक ने इब्तदाई तालीम घर पर ही हासिल की। 9 बरस के हुए तो गोरखपुर के ही एक स्कूल में उनका दाखिला करा दिया गया। इसके बाद मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए उनको इलाहाबाद भेज दिया गया। तालीम मुकम्मल होने पर फिराक लखनऊ, कानपुर और इलाहाबाद में दरस व तदरीस का काम करते रहे। रिटायर होने के बाद 1985 में UGC ने उनको नेशनल रिसर्च प्रोफेसर मुकर्रर कर दिया। इसके अलावा उन्हें पद्म भूषण और ज्ञानपीठ जैसे बड़े इनामात से नवाजा गया। 15 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते फिराक उर्दू शायरी से आशना हो चुके थे, क्योंकि उनके वालिद गोरख प्रसाद खुद एक बड़े शायर थे और उनके घर पर अक्सर शेरी नशिस्तें हुआ करती थीं। इस शायराना माहौल ने फिराक को मुतासिर किया और आहिस्ता आहिस्ता वो भी एक शायर की शक्ल में उभरे। फिराक ने जब शायरी शुरू की तो अमीर मीनाई और दाग का बोलबाला था, लिहाजा वो भी उनसे मुतासिर हुए, क्योंकि कोई भी शायर या अदीब अपने माहौल से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिराक ने अपनी एक अलग पहचान बना ली। फिराक ने नज़में और रुबाइयाँ भी कहीं, नसर में भी कई किताबें लिखीं, लेकिन उनको शोहरत गज़लों की वजह से मिली। फिराक ने उर्दू में बेशतर गज़लें ही कही हैं। फिराक उर्दू गज़ल में अपने लहजे की इनफरादियत की वजह से पहचाने जाते हैं। ये सही बात है कि फिराक की शायरी पर मुख्तलिफ शोरा का असर दिखाई देता है, लेकिन इसके बाद वो अपनी मंजिल को पाने में भी कामयाब हो गए। फिराक ने अपनी गज़लों में इन्हीं मौजूआत को मरकज बनाया है जो कि गज़लों के मौजूआत हैं, लेकिन इन मौजूआत को उन्होंने अपने मखसूस नुक्ता नज़र से देखा और हुस्न व इश्क की कैफियत को अपने ज़ाती तजुर्बे की बुनियाद पर पेश किया। फिराक की शायरी में ज़िंदगी का कोई मुनज़्ज़म फ़लसफ़ा भले ही देखने को ना मिलता हो, लेकिन ज़िंदगी से लगाव और उसमें उलझे रहने के बाइस फिराक ने ज़िंदगी का एक ख़ास रवैया पेश किया है, जो कि मस्बत रवैया है। हर शायर अपने जज्बात को शेर के ज़रिए ज़ाहिर करता है, जैसे रोने की कैफियत। फिराक का कमाल ये है कि वो अपने जज्बे को इतने बेबाकाना तौर पर लोगों के सामने नहीं रखते। उन्होंने शायरी में दहाड़े मार कर रोने की मजम्मत की है और उसे ऐब करार दिया है। फिराक अपने एहसास को पूरे तौर पर बेनकाब नहीं होने देते, बल्कि अंदर ही अंदर इस एहसास को पकने देते हैं और इस तरह एक अच्छा शेर निकल कर हमारे सामने आता है। मसलन, फिजा तबस्सुमे सुबह बहार थी लेकिन पहुँच के मंजिले जाना पे आँख भर आई। फिराक जब हुस्न इश्क का बयान करते हैं तो इसमें मोहब्बत की बदहवासी, जुनून या मुबालगा नहीं मिलता, बल्कि जज्बात को दबा देने की वजह से शेर में जान पड़ जाती है। वो शायराना बेनियाजी से काम लेते हुए कहते हैं, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई न हमें और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। फिराक ने अब ऐसी बहुत सी गज़लें कही हैं जिन्हें पढ़कर हमारे सामने ख्यालात की एक पूरी दुनिया आबाद हो जाती है। इन अशार को पढ़कर ऐसा महसूस होता है कि एक बात कही गई थी जो कि ख़त्म हो गई, लेकिन वो बात ख़त्म नहीं होती है। मिसाल के तौर पर, किसी का यूं तो हुआ कौन उम्र भर फिर भी, किसी का यूं तो हुआ कौन उम्र भर फिर भी, यह हुस्न इश्क तो धोखा है एक मगर फिर भी। फिराक पहले शायर हैं जिनके यहाँ हमें सुकूत की आवाज़ सुनाई देती है। ये उसी वक्त मुमकिन है जब किसी शायर के अंदर हर चीज़ से परे देखने की सलाहियत पैदा हो जाए। सितारों की बेदारी या

0: तारों का थका थका होना, रात की गहरी घनी खामोशी और उदासी, जमीन का जागना या जमीन के जर्रात का गहरी सांस लेना, रात के पिछले पहर चिरागों का नींद में डूब जाना, शाम के साए का दूर दूर फैल जाना वगैरह, वो कैफियाती चीजें हैं जिनको बुनियाद बनाकर फिराक ने बेशुमार अशार कहे हैं। मिसाल के तौर पर, जमीने रह गुजर के जर्रे जर्रे गहरी सांस लेते हैं, जमीने रह गुजर के जर्रे जर्रे गहरी सांस लेते हैं, सुकून आसार कितनी है अदाए कम रवि तेरी, दिल दुखे रोए हैं शायद इस जगह ऐ कुवे दोस्त, दिल दुखे रोए हैं शायद इस जगह ऐ कुवे दोस्त, खाक का इतना चमक जाना जरा दुश्वार था। फिराक ने रवायत और ख्याल से बगावत करते हुए रूप की रुबाइयों में औरत के हुस्न व जमाल की तस्वीर कशी नहायत ही खूबसूरत अंदाज में पेश की है। इन रुबाइयों में कहीं कहीं महबूब के जाहिरी हुस्न के तस्करे के अलावा शहवानियत भी दिखाई देती है, लेकिन उन सब के बावजूद फिराक की रुबाइयों का एक अहम वस्फ ये है कि उनकी रुबाइयों में जिस औरत को मौजू सुखन बनाया है वो खालिस हिंदुस्तानी तहजीब की नुमाइंदगी करती है। फिराक ने हिंदी और संस्कृत के अल्फाज को कसरत से इस्तेमाल किया है, लेकिन हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि सारी रुबाइयाँ हिंदी जबान में कही गई हैं, क्योंकि फारसी के मुतरन्नम और शगुफ्ता अल्फाज का भी उन्होंने बखूबी इस्तेमाल किया है। हिंदी, संस्कृत और फारसी के अल्फाज की आमेजिश इतनी चाबुक दस्ती से की है कि वो दो तहजीबें गले मिलती हुई नजर आती हैं। एक तरफ लोच सज धज नीर सरगम रूप देवी अमृत कंचन कोपल झुरमुट जीवन मुखड़ा सुहाग संगीत जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया है, दूसरी तरफ आईना नीलगुं गुलनार शफक रूदे चमन शाम हस्ती जिंदाने हयात दोषी जय सहर जैसी हसीन तरकीबें भी उनके यहाँ हमें देखने को मिलती हैं। मिसाल के तौर पर उनकी बहुत ही मशहूर रुबाई है, हर जलवे से एक दर से नमू लेता हूँ, छलकते हुए सत जामो सुबू लेता हूँ, ऐ जाने बहार तुझ पर पड़ती है जब आंख, संगीत की सरहदों को छू लेता हूँ। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि फिराक ने जिस जिस सिंफ सुखन में तबा आजमाई की है उसमें कहीं कहीं ना कहीं अपनी इनफरादियत ज़रूर कायम कर दी है, जिसके ज़रिए वो हमेशा हमारे बीच में याद किए जाते रहेंगे।
1: अभी आप समाप्त कर रहे थे नईमा बानो से ये तकरीर, मौजू था फिराक की इनफरादियत। सामीन, आपने सुना कि किस तरह से डॉक्टर साहिबा ने फिराक की ज़िंदगी के बारे में, उनकी शायरी के बारे में, उनके एहसासात और जज्बात के बारे में बताया। हमें यकीन है कि इस तकरीर से आप ज़रूर महसूस हुए होंगे और इस तकरीर ने आपकी मालूमात में इजाफा भी किया होगा। आइए अब आपको सुनवाते हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में नज़ीर बनारसी का ये कलाम।

0: अभी आप नसीर बनारसी का कलाम जगजीत सिंह की आवाज में समाअत कर रहे थे। लीजिए अब समाअत कीजिए नवाए शायर के तहत सहबा वहीद से उनका ये कलाम।
1: एक गजल पेश कर रहा हूं। हमारा सिलसिले दुश्मनी दराज न था, हमारा सिलसिले दुश्मनी दराज न था, लहू मिला जो लहू से तो इम्तियाज न था, लहू मिला जो लहू से तो इम्तियाज न था, चराग लेके किसे ढूंढता रहा शब भर, चराग लेके किसे ढूंढता रहा शब भर, बुरून दर कोई मंजर भी दिल गुदाज न था, बुरून दर कोई मंजर भी दिल गुदाज न था, न मुड़ के देखते उसको न ढलते पत्थर में, न मुड़ के देखते उसको न ढलते पत्थर में, हमारे हाल से वो शख्स बेनियाज न था, हमारे हाल से वो शख्स बेनियाज न था, जहां जहां से वो गुजरा चराग जल उठे, जहां जहां से वो गुजरा चराग जल उठे, मेरा नसीब कि मेरा वो कारसाज न था। गौरतलब है सहर हुई तो नजर आई जू की तू दीवार, खुला कि जोश जुनू भी करिश्मा साज न था, खुला कि जोश जुनू भी करिश्मा साज न था। और मकता है मैं उसके ख्वाब न देखूं तो क्या करूं सहबा, मैं उसके ख्वाब न देखूं तो क्या करूं सहबा, कि मेरे पास बका का कोई जवाज न था। एक और गजल है। अब न देखेंगे कोई ख्वाब कसम खाली है, अब न देखेंगे कोई ख्वाब कसम खाली है, आसमानों के खुदा हमने सजा पाली है, ले गया कौन मेरे ख्वाब की हसरत मुझसे, ले गया कौन मेरे ख्वाब की हसरत मुझसे, आंख मोहताज के हाथों की तरह खाली है, आंख मोहताज के हाथों की तरह खाली है, और मुड़ के देखा ही था मैंने कि ढला पत्थर में, मुड़ के देखा ही था मैंने कि ढला पत्थर में, कौन है किसने ये जादू की नजर डाली है, कब मिला करते हैं राहों में बिछड़ने वाले, कब मिला करते हैं राहों में बिछड़ने वाले, वो मिला है तो मेरा जज्बे खुश है माली है, मैं उसे खत ही लिखूं कोई शिकायत ही करूं, मैं उसे खत ही लिखूं कोई शिकायत ही करूं, आज का दिन भी मेरा कल की तरह खाली है, वो समझता है मेरी बात बखूबी यारो, ये जबान उर्दू के बारे में है, वो समझता है मेरी बात बखूबी यारो, ये जबां अब न तो दखनी है न टकसाली है, वो समझता है मेरी बात बखूबी यारो, ये जबां अब न तो दखनी है न टकसाली है, और मुंतजर मकता है और मुंतजर किसके हो पाकर भी उसे ऐ सहबा, मुंतजर किसके हो पाकर भी उसे ऐ सहबा, किस लिए किसके लिए शाम से बेहाली है, किस लिए किसके लिए शाम से बेहाली है। और एक और पेश कर रहा हूं। न कुछ भी कह सके उससे मकाम ऐसा था, न कुछ भी कह सके उससे मकाम ऐसा था, जहां मिला था वहां इज़्दहाम ऐसा था, जहां मिला था वहां इज़्दहाम ऐसा था, और सबा खराम सितारा नजर सदफ अंदाम, सबा खराम सितारा नजर सदफ अंदाम, उसी के हो गए जो ला कलाम ऐसा था, उसी के हो गए जो ला कलाम ऐसा था, जवाब दे न सके उसको देखते ही रहे, जवाब दे न सके उसको देखते ही रहे, किया था उसने जो हमको सलाम ऐसा था, मुगायरत से नुमाया मुफाहमत भी थी, मुगायरत से नुमाया

0: ख्वाबों का नगर भी, पर्वत ही के उस पार है ख्वाबों का नगर भी, मिल जाएगी ताबीर अगर जाए, अगर जाए, मिल जाएगी ताबीर अगर जाए, अगर जाए। और मियाद से पहले ही करें ख़त्म दवा को, गौर तलब है, मियाद से पहले ही करें ख़त्म दवा को, ऐसा न हो तासीर उतर जाए, उतर जाए, ऐसा न हो तासीर उतर जाए, उतर जाए। मकसूद है सच्चाई का इजहार हमें भी, मकसूद है सच्चाई का इजहार हमें भी, सुनने को वो तकरीर ठहर जाए, ठहर जाए, सुनने को वो तकरीर ठहर जाए, ठहर जाए। आ जाएंगे उसके भी कभी होश ठिकाने, आ जाएंगे उसके भी कभी होश ठिकाने, फिर शोरिश जंजीर बिखर जाए, बिखर जाए, फिर शोरिश जंजीर बिखर जाए, बिखर जाए। और मकता है, एक तुम ही मुसल्लत नहीं कौनैन पे सहबा, एक तुम ही मुसल्लत नहीं कौनैन पे सहबा, वो भी है हमागीर नजर जाए, नजर जाए।
1: अभी आप सहबा वहीद से उनका कलाम सुन रहे थे और गजल से महजूज हो रहे थे। इसके साथ ही आज का हमारा ये प्रोग्राम यहीं ख़त्म होता है। इस प्रोग्राम को तर्तीब दिया था इंतज़ार सैफ़ी ने। तो सामीन, इसी उम्मीद के साथ कि आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और प्रोग्रामों के साथ, कुछ और मेहमानों के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान शाहनवाज़ हाशमी को प्रोग्राम अक्से अदब ख़त्म करने की दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।

于，特别是在北方邦的西北部和拉吉斯坦邦的东部，也在德里、哈里亚纳邦和中央邦的人使用这种普拉吉。

印度特里广播电台，听众朋友们，请收听扎吉辛格和基村啊辛格唱的歌曲。

0: 度德里广播天台听众朋友们，请收听加克吉情歌唱的歌曲。
1: आदमी बुलबुला है पानी का और पानी की बहती सतह पर टूटता भी है डूबता भी है फिर उभरता है फिर से बहता है ना समंदर निगल सका इसको ना तवारीख तोड़ पाई है वक्त की मौज पर सदा बहता

印度的里广播电台听众朋友们，现在我们播送印度著名的女士歌手苏尼迪·乔汉唱的歌曲，请各位欣赏。

印度代理广播电台听众朋友们，请收听获得36项印度电影界最佳女配音歌手阿卡亚格尼唱的歌曲，请各位欣赏。

0: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना।
1: हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। मैं हूं कविता, हाजिर हूं लेकर एक बार फिर से खेल जगत से जुड़ी तमाम खेल गतिविधियां। और आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ इस खेल सफर पर चलने के लिए तैयार है मेरी सहयोगी
2: अमीषा पटेल। नमस्कार
1: अमीषा, और मैं आज आपको उन खेल गतिविधियों से रूबरू कराएंगे जो इस वक्त चल रही हैं, होने वाली हैं और जो हो चुकी हैं। तो हम सब जानते हैं कि इस वक्त दो बड़े इवेंट जो हैं वो खेले जा रहे हैं। एक है हॉकी विश्व कप और दूसरा है BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो कि दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में अभी फिलहाल चल रही है। और सबसे बड़ी खबर के साथ पहले हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो मैचेस हैं बैडमिंटन के वो चल रहे हैं, लेकिन उससे पहले हॉकी में एक बहुत जो रोमांचक मुकाबला हमेशा से हम देखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेला जाता है, वो मुकाबला कल खेला गया, जिसमें भारतीय पुरुष टीम ने पाकिस्तान को हराते हुए अपनी जो जगह है वो अगले दौर के लिए सिक्योर कर ली और एक जो पूल ई है उसके अंदर भी एंट्री कर ली। चलिए जानते हैं विस्तृत जानकारी। भारत पाकिस्तान की हॉकी भिड़ंत, रोमांच, रफ्तार और गोलों से भरपूर मुकाबला और आखिरकार बाजी भारत के नाम। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 में एक बार फिर दोनों पड़ोसी मुल्क आमने सामने थे। मैदान पर मुकाबला था सिर्फ 3 अंकों का, लेकिन दोनों टीमों के लिए ये मैच बेहद अहम था। भारत के लिए अगले दौर में पहुंचने का रास्ता साफ करना था, जबकि पाकिस्तान के सामने विश्व कप में बने रहने की चुनौती थी। और जब मुकाबला खत्म हुआ तो स्कोर बोर्ड पर चमक रहा था भारत 5 पाकिस्तान 3। नीदरलैंड के एम्स्टल वीन में बुधवार को वैगनर हॉकी स्टेडियम में खेले गए एक रोमांचक और हाई स्कोरिंग मैच में भारत ने अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5-3 से हराकर FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे राउंड में जगह बना ली। भारत ने शुरुआत से ही पाकिस्तान पर दबाव बनाए रखा। 5वें मिनट में हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर पर अपने अंदाज में जोरदार ड्रैग फ्लिक लगाकर भारत का खाता खोला। इसके कुछ ही मिनट बाद अभिषेक ने अपनी बेहतरीन ड्रिबलिंग और 3D स्किल्स का शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत की बढ़त 2-0 कर दी। हरमनप्रीत सिंह ने 21वें मिनट में एक और गोल करके भारत को 3-0 से मजबूत बढ़त दिलाई। हालांकि इसके तुरंत बाद पाकिस्तान के खिलाड़ी ने शानदार व्यक्तिगत प्रयास से गोल करके वापसी की उम्मीद जगाई। इसके बाद दोनों टीमों ने एक एक गोल और किया और हाफ टाइम तक भारत 4-2 से आगे हो गया। दूसरे हाफ में भारत ने दबाव बनाए रखा और हार्दिक सिंह ने पेनल्टी स्ट्रोक को गोल में बदलकर स्कोर 5-2 कर दिया। हालांकि पाकिस्तान ने आखिरी क्वार्टर में एक और गोल करके अंतर कम किया और मुकाबले को रोमांचक बना दिया, लेकिन भारतीय डिफेंस ने आखिरी मिनटों में धैर्य बनाए रखा और 5-3 की शानदार जीत के साथ भारत ने राउंड 2 में कदम रख दिया। ये मुकाबला 2010 के बाद हॉकी विश्व कप में भारत बनाम पाकिस्तान के बीच पहला मैच था। 2010 में नई दिल्ली में हुए मैच में भारत 4-1 से जीता था। इस प्रतिद्वंदिता के इतिहास में वैगनर हॉकी स्टेडियम का भी खास महत्व है। इसी मैदान पर 53 साल पहले 1973 हॉकी वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 1-0 से हराया था। बुधवार को आए नतीजों के साथ ही भारत दूसरे राउंड के पूल ई में पहुंच गया। इस पूल में इंग्लैंड और पूल ए की टॉप टीमें शामिल होंगी। पूल ए में नीदरलैंड, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड और जापान है। भारत और पाकिस्तान दोनों पूल डी में थे। पूल ई की टॉप 2 टीमें हॉकी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। आइए सुनते हैं इस जीत के बाद क्या कहना था भारतीय कप्तान हरमनप्रीत।

0: सिंका।
1: गुड लर्निंग फॉर अस फॉर द नेक्स्ट मैच एंड पाकिस्तान अच्छी टीम है, वो भी काउंटर की वेट करती है हमारी तरह, जैसे हम काउंटर में अच्छे हैं और आई थिंक उन्होंने अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की और स्कोर किए। बट आई थिंक ओवरऑल हमने बहुत अच्छा किया है, हमने बॉल पोजेशन अगर हमारा देखें, हमारी अपॉर्चुनिटीज देखें, सर्कल एंट्रीज देखें एंड आई थिंक द बेसिक, स्पेशली द बेसिक और जितने हमने एक्यूरेट पास खेले हैं सबने, सो आई थिंक ओवरऑल मैं हैप्पी हूँ कि हमने अच्छा मैच खेला है।
0: भारत की जीत के साथ पाकिस्तान का विश्व कप का सफर जरूर थम गया, लेकिन टीम इंडिया के लिए असली चुनौती अब शुरू होती है। राउंड टू में हर मुकाबला और भी बड़ा, हर गोल और भी कीमती और हर जीत विश्व कप की ट्रॉफी की ओर कदम और करीब ले जाएगी। चलिए अब बात करते हैं महिला टीम की, जिसमें आज भारतीय महिला टीम का सामना होगा इंग्लैंड से। भारतीय महिला टीम FIH हॉकी विश्व कप 2026 के पहले चरण में अंतिम मैच में इंग्लैंड से भिड़ते हुए पूल डी में शीर्ष स्थान हासिल करने की कोशिश करेगी। सेमीफाइनल में पहुंचने की दौड़ में बने रहने के लिए मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है। चारों पूलों में से केवल शीर्ष दो टीमें ही सेमीफाइनल की दौड़ में बनी रहेंगी। ऐसे में अंतिम दौर के मैचों का हर पल बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं दक्षिण अफ्रीका पर 4-0 की शानदार जीत के बाद इंग्लैंड 3 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है और टूर्नामेंट में अपनी दावेदारी बनाए हुए है। अंतिम दौर में भारत का सामना इंग्लैंड से और चीन का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। इन दोनों मैचों के परिणाम ही पूल में शीर्ष दो स्थानों का निर्धारण करेंगे। भारत के युवा खिलाड़ियों का उभरना भी उनके अभियान की एक खास बात रही है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ स्कोर करने वालों में साक्षी राणा और सुनीलिता टोपो शामिल थी, जो इस बात का संकेत है कि टीम की अगली पीढ़ी बड़े मंच पर अपनी जगह बनाना शुरू कर रही है। हालांकि इंग्लैंड एक बिल्कुल अलग चुनौती पेश करेगी। वो अच्छी तरह जानते हैं कि दाव कहां पर लगाना है और शीर्ष दो में जगह पक्की करने के लिए उन्हें जीत कितनी जरूरी है, इसीलिए भारत को आराम से बैठने का मौका वो नहीं देने वाले। दक्षिण अफ्रीका पर उनके 4-0 की जीत ने विरोधियों पर दबदबा बनाने की उनकी क्षमता को प्रदर्शित किया है, इसीलिए भारत को कौशल और धैर्य दोनों की परीक्षा देनी होगी। पूल रैंकिंग में टीमों के बीच कड़ी टक्कर को देखते हुए टीम को अपने शुरुआती दो मैचों में दिखाई गई ऊर्जा, रक्षात्मक अनुशासन और आक्रमण में विविधता को दोहराना होगा। इंग्लैंड के खिलाफ एक मजबूत परिणाम न केवल भारत को अगले चरण में पहुंचा सकता है, बल्कि उस टीम की प्रगति को भी उजागर कर सकता है जिससे भारत ने अपने विश्व कप अभियान की एक शानदार शुरुआत की थी। चलिए अब आपको बताते हैं हॉकी वर्ल्ड कप में 19 अगस्त को खेले गए मैचेस के बारे में। हॉकी विश्व कप में 19 अगस्त का दिन रोमांचक मुकाबलों और शानदार गोलों से भरा रहा। महिला और पुरुष वर्ग में कई अहम मुकाबले खेले गए। सबसे पहले बात करते हैं महिला वर्ग की। महिला वर्ग में पूल ए में चिली और ऑस्ट्रेलिया के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। दोनों टीमों ने शानदार खेल दिखाया और मुकाबला 4-4 की बराबरी पर समाप्त हुआ। पूल बी में स्कॉटलैंड का सामना अर्जेंटीना से हुआ। अर्जेंटीना ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2-0 से जीत दर्ज की। वहीं पूल सी में स्पेन और बेल्जियम आमने सामने थे। दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर रही और मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। इसी पूल में अमेरिका और जर्मनी के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें जर्मनी ने जीत हासिल की। इसके बाद पूल ए में नीदरलैंड्स और जापान की भिड़ंत हुई। नीदरलैंड्स ने पूरे मुकाबले में अपना दबदबा बनाया और जापान को बड़े अंतर 9-0 से हरा दिया। चलिए जानते हैं 19 अगस्त को खेले गए पुरुषों के मैचेस के बारे में, जहां दिन का सबसे बड़ा मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच ही खेला गया, जिसे भारत ने जीत लिया। पुरुष वर्ग के पूल बी में मुकाबले फ्रांस और जर्मनी के बीच हुए। दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर हुई और मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। बेल्जियम और मलेशिया के बीच खेले गए मैच में बेल्जियम ने मलेशिया को 5-3 से हराया। वहीं दिन के आखिरी मुकाबले में पूल डी के मैच में इंग्लैंड ने वेल्स के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए 8-2 से बड़ी जीत हासिल की। तो अब नजरें हैं भारतीय महिला टीम के मुकाबले में। देखना होगा कि भारतीय महिला टीम किस तरह अपने आगे के सफर को जारी रखती है। तो हॉकी की ही खबर को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं अभी तक हुए मुकाबलों के बारे में। फिलहाल जो मेंस मुकाबले हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का जो मैच है वो खेला गया, जो कि 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ साथ महिलाओं में चाइना और साउथ अफ्रीका के बीच पूल डी का ही मुकाबला हुआ, क्योंकि अब तक टीम इंडिया इस ग्रुप में लीड कर रही थी, लेकिन इस मुकाबले के बाद अब टीम इंडिया जो है वो दूसरे पायदान पर पहुंच गई है। अब पूल में ग्रुप में अभी वो टॉप करेंगे या नहीं करेंगे, ये जो आज शाम को मुकाबला होगा इस पर बहुत कुछ निर्भर होगा। फिलहाल चाइना जो है 5-1 से इस मुकाबले को जीत गई। इसके साथ साथ आज एक और पुरुषों का मुकाबला खेला गया, जो कि बेल्जियम और मलेशिया के बीच रहा, जिसे बेल्जियम ने जीत लिया। तो अब मैं

को बताती हूँ कि अब तक जो पॉइंट टेबल है महिलाओं की पूल डी की, उसमें चाइना टॉप कर रही है। अभी यहां पर उनके पॉइंट्स हैं 7, इंडिया के हैं 4 अंक, लेकिन उन्होंने मैच खेले हैं 2। इसके साथ इंग्लैंड ने भी 2 मुकाबले खेले हैं, उनके पास है 3 पॉइंट। इसके साथ साथ साउथ अफ्रीका जो है, उन्होंने 3 मैचेस खेले हैं, लेकिन अभी कोई पॉइंट जो है उनके हक में नहीं है। तो अगर इंडिया को ये जो पूल है यहां पर टॉप करना है, तो कम से कम जो अंतर है गोलों का, वो 2 से ज्यादा गोल का अंतर जो है वो टीम को यहां रखना पड़ सकता है। इसके बाद ही टीम इंडिया इस ग्रुप को टॉप करेगी। और अगर इंग्लैंड के साथ यहाँ पे मुकाबला ड्रॉ रहा, तो पोजीशन में कोई बदलाव जो है इंडिया का नहीं होगा। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें, महिलाओं के साथ साथ पुरुषों का जो पॉइंट टेबल है उसके बारे में भी, तो फिलहाल यहाँ पर इंडिया जो है अपने ग्रुप में अभी तक यहाँ पर खेल करके, अब उन्होंने ग्रुप ई में जो कि सेमीफाइनल के लिए जो टीमें हैं उसी में से डिसाइड होंगी, वहां पर उन्होंने अपनी जगह जो है वो बना ली है। इसी के साथ साथ अब हॉकी का जो रोमांच है वो भी अपने चरम पर पहुंच चुका है। ताजा जानकारी लगातार आपको हम इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। तो अब बात करते हैं यहाँ पर हम एक और बड़े इवेंट की, जो कि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेला जा रहा है। वो है BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप, जिसमें क्या कुछ रहा कल से आज तक के बीच में, चलिए सुनते हैं।

0: दिल्ली में शटल की रफ्तार बढ़ चुकी है, मुकाबले अब निर्णायक दौर में पहुंच चुके हैं और हर एक रैली के साथ वर्ल्ड चैंपियन बनने की जंग और कड़ी होती जा रही है। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में भारतीय खिलाड़ियों ने कोर्ट पर अपना दम दिखाया। 19 अगस्त को जहां आयुष शेट्टी और पीवी सिंधु ने शानदार जीत के साथ अगले दौर में जगह बनाई, वहीं लक्ष्य सेन और उन्नति हुड्डा का सफर थम गया। अब बारी है राउंड ऑफ 16 की, जहां भारत की उम्मीदें एक बार फिर देश के स्टार शटलर्स पर टिकी हैं। आयुष शेट्टी की युवा ऊर्जा, पीवी सिंधु का अनुभव और सात्विक चिराग की धमाकेदार जोड़ी आज कोर्ट पर उतरकर क्वार्टर फाइनल की ओर कदम बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो तैयार हो जाइए बैडमिंटन के उस महामुकाबले के लिए, जहां एक स्मैश बदल सकता है मैच का रुख, एक रैली तय कर सकती है जीत और एक जीत खोल सकती है वर्ल्ड चैंपियन बनने का रास्ता। टूर्नामेंट में 19 अगस्त को भारतीय खिलाड़ियों ने जीत भी दर्ज की और कुछ बड़े उलटफेर का सामना भी किया। मेन सिंगल में भारत के आयुष शेट्टी ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए श्रीलंका के दुमिंद्रु अबेविक्रम को सीधे गेमों में 21-8, 21-10 से हराया और राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली। इससे पहले आयुष ने टूर्नामेंट के पहले दौर में वर्ल्ड नंबर एक और डिफेंडिंग चैंपियन शी यू ची को हराकर बड़ा उलटफेर किया था।
1: I think I was preparing for a tough match. I think all my matches I come prepared as if, you know, it's going to be a really great match because I think everyone's playing good, playing great badminton, I think in men's singles. So yeah, I think I was prepared for a tough match, but happy with the, you know, comfortable. Definitely, I think it'll be a great match again tomorrow against LV. I played him a couple of times. It's always a great match and super tough opponent. As of now, you know, recover. And I think later, you know, we prepare for the match, analyze the match and I think we'll be preparing really well.
0: लेकिन लक्ष्य सेन के लिए दिन निराशाजनक रहा। जहां आयुष के लिए दिन रहा शानदार, वहीं लक्ष्य अपने लक्ष्य को पाने से चूक गए। लक्ष्य सेन के लिए दिन निराशाजनक रहा, उन्हें अमेरिका के गेरेट टेन ने 3 गेम के कड़े मुकाबले में 19-21, 21-19, 21-17 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। 73 मिनट तक चले इस मुकाबले में लक्ष्य ने पहला गेम अपने नाम किया, लेकिन गेरेट टेन ने शानदार वापसी करते हुए अगले दोनों गेम जीत लिए।
1: इट वाज अ गुड मैच। आई वुड गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू माय ओपोनेंट। ही प्लेड अ वेरी सॉलिड गेम एंड अगेन टुवर्ड्स द थर्ड सेट बोथ ऑफ अस वर लाइक कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। सो या आई थिंक आई गेव इट माय ऑल इन द एंड, बट या इट वाज just not enough to win this match and we are a little bit disappointed.
0: इसके बाद पीवी सिंधु ने एक बार फिर अपने अनुभव और शानदार खेल का परिचय दिया। सिंधु ने कनाडा की झांग वेन यू को सीधे गेमों में 21-16, 21-17 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया।
2: मुश्किल ही होगा ऑब्वियसली, इजी मैचेस नहीं रहेगा। अभी जब हम टॉप एथलीट्स के साथ खेल रहे तो इजी मैचेस या इजी पॉइंट्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर लॉन्ग मैचेस।

0: and I'm ready for it. And मैं वांगजी के साथ बहुत a lot of times I've played against her and we know each other's game. But I need to give my best and play my game. Yeah, I think recovery plays a very major role. And you know, back then when you're at your 20s, you're like, okay, you know, you can play, you can come back, you can play, and then you can keep going on and on. But I think after a certain time, you know, you also need to understand you're not 20 or 19 anymore. You need to understand your body and accordingly, smartly make those changes.
1: वही भारतीय युवा खिलाड़ी उन्नति हुड्डा को कनाडा की मिशेल ली के खिलाफ कड़ा मुकाबला खेलना पड़ा। उन्नति ने पहला गेम 21-11 से जीता, लेकिन मिशेल ली ने वापसी करते हुए मुकाबला 11-21-11-23 से अपने नाम कर लिया।
2: बहुत अच्छा मैच था, आई प्लेड रियली गुड, मैंने अपना पूरा दिया, बट लास्ट में मैं अपने साइड मैच को कन्वर्ट नहीं कर पाई। दो बारी एडवांटेजेस भी आए, मैच पॉइंट भी आया।

being a record smith. Producing biz, yeah.

0: दान करे से धन की शोभा, भजन करे से मन की। बहुत ही बढ़िया उपदेशक रागनी हमने सुनवाई अपने सभी श्रोताओं को, सभी भाई बहनों को लोकेंद्र की आवाज में।
1: बिल्कुल।
0: और जो हमारी अगली कलाकारा हैं वो हैं नीलम चौधरी, और उनके लिए भी हमारे पास SMS आ चुके हैं।
1: और ये SMS हमारे पास में आया है जनकपुरी शारपुर से, भेजने वाले हैं जॉन डिकेस्ट और उनका पूरा परिवार। ये SMS आया गाँव ललौड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश से, भेजने वाले हैं जगमोहन सिंह प्रजापत और उनका पूरा परिवार। ये SMS हमारे पास में आया है करावल नगर दिल्ली से, भेजने वाले हैं रामनाथ प्रजापति और इनका पूरा परिवार। ये SMS आया है गांव खोकरावली से, भेजने वाले हैं विनोद बारशा और इनका पूरा परिवार। खुर्जा उत्तर प्रदेश से हमारे पास में फरमाइश आई है, भेजने वाले हैं तिलक राज अरोड़ा और इनका पूरा परिवार। बड़िंगखेड़ा पंजाब से भी हमारे पास में SMS आया है, भेजने वाले हैं मिंटू टॉम्स पिंकी और इनका पूरा परिवार। GTB मार्केट अहमदगढ़ मंडी पंजाब से फरमाइश भेज रहे हैं मोहम्मद अनवर अंसारी और इनका पूरा परिवार। गांव चौधरीवास से फरमाइश भेज रहे हैं राजू अग्रवाल और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में आई है गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा से, भेजने वाले हैं राजेंद्र कुमार और इनका पूरा परिवार।
0: मेरठ कैंट से फरमाइश भेजी है दिग्दर्शन और कविता गौड़, और ये फरमाइश हमारे पास आई है दतरंगी से, भेजने वाले भाई हैं भगवत वर्मा, शांति देवी और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये फरमाइश हमें भेजी है कुगदा कुम्हारी छत्तीसगढ़ से, भेजने वाले भाई हैं बलराम बया, दामिनी बया और इनके परिवार के सभी सदस्य। जिटवाड़ा गाजियाबाद से भी हमें फरमाइश भेजी है शीशपाल अकेला ने। ये फरमाइश हमें भेजी है जमानिया गाजीपुर से, भेजने वाले हैं सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल और परिवार के सभी सदस्य। गांव फरांसी जिला हिसार से फरमाइश भेजी है राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और परिवार के सभी सदस्यों ने। भोपालगढ़ राजस्थान से भी हमें फरमाइश भेजी है धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। आदर्श नगर मलौट पंजाब से फरमाइश भेजने वाले भाई हैं राज शर्मा, मीना शर्मा और परिवार के सभी सदस्य। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से फरमाइश भेजी है राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबी और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने।
1: करमवीर सिंह ढिल्लोर ने भी हमारे पास में फरमाइश भेजी है ब्रजबिहार कॉलोनी मुरादनगर गाजीबाद से, और पहाड़गढ़ मुंताली ढाणा से फरमाइश भेज रहे हैं अनिल मोहन इनका पूरा परिवार। गाँव लोहगढ़ ठाकुरवाला से फरमाइश भेज रहे हैं स्वर्ण सिंह गिल और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में आई है जलालपुरा जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, भेजने वाले हैं श्रवण कुमार प्रजापति और इनका पूरा परिवार। हांडीखेड़ा जिला सिरसा से फरमाइश भेज रहे हैं राधेश्याम शर्मा और इनका पूरा परिवार। कोटवा नारायणपुर बावापट्टी बलिया से भी फरमाइश भेज रहे हैं ओम प्रकाश राय और इनका पूरा परिवार। दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से भी फरमाइश आई है हमारे पास में, भेजने वाले हैं प्रतीक राय और इनका पूरा परिवार। गांधीनगर गुजरात से फरमाइश भेज रहे हैं सुरेश राठौड़ और इनका पूरा परिवार। और ये फरमाइश हमारे पास में ये है गांव मायचा ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर से, भेजने वाले कंचित शर्मा, शतपाल शर्मा, मास्टर बनी सिंह, मास्टर देवेंद्र सिंह, सर्वेशगिरी महाराज और कुमारी तनु की। तो सुनवाते हैं सभी की फरमाइश पर नीलम चौधरी की आवाज़ में ये रागनी।

0: तो पायल बहना भी हमारे भाई सुन रहे थे नीलम चौधरी की आवाज़ में चंद करण के किस्से की ये रागनी। और ये इसी रागनी के लिए हमारे पास में फरमाइश आई ही थी, दतरंगी से भेजने वाले थे भागवत वर्मा उनका पूरा परिवार, और संदीप मक्कड़ ज्योति मक्कड़ ने भी हमारी फरमाइश भेजी थी पिंगा वाला चौक गोरैया जालंधर से। और ये फरमाइश हमारे पास में भी आई थी भाई दतरंगी भटपारा छत्तीसगढ़ भाटापारा छत्तीसगढ़ से भेजने वाले थे हीरा मणि वर्मा और इनका पूरा परिवार। और अब घड़ी की सुई भी इशारा कर रही है पायल बहन सभी अपने बहन भाइयों से विदा लेने का। तो ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को हमारी राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: इस कार्यक्रम के संयोजक हैं शिवनंदन लाल और प्रस्तुतकर्ता हैं तुषार पारासर।

0: संसार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 7 बजने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त जांच समिति गठित की है। ये समिति दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस और सुरक्षा कर्मियों के जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग और पुलिस कर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों की जांच करेगी। समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलिंदर कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक कृषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एल आर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सरकार की परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली 3 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि चुने गए उम्मीदवारों को बहाल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि उचित प्रक्रिया और न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना उन्हें हटाया नहीं जा सकता। अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। चेन्नई के पास महाबलीपुरम में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने क्षेत्र की प्रगति, विकास और हितों से जुड़े साझा मुद्दों तथा प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया। बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कोष, बुनियादी ढांचे, पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्रीय सुरक्षा के मामलों में सहकारी संघवाद पर बल दिया गया। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में समुद्री सुरक्षा मजबूत करने, मेक इन इंडिया के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और आपसी विश्वास बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के कुमामोतो में आए भीषण भूकंप पर भारत की संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
2: हम यह दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस, रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित है। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नरस्टोन बन गई है।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज उत्तराखंड के मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में 2024 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवक प्रशिक्षु अधिकारियों के प्रशिक्षण समापन समारोह को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रशासनिक सेवाओं ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और जमीनी स्तर पर नीतियों को लागू करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीपीएन के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर आज बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति चुने गए। 78 वर्षीय नेता ने देश की संसद, जातीय संसद में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल किए। उन्होंने पूर्व सेना अधिकारी ओली अहमद को हराया, जो दक्षिण पंथी बांग्लादेश जमात इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी के नेतृत्व वाले 11 दलीय विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार थे। ओली अहमद को 88 वोट प्राप्त हुए। एम्स्टरवीन में महिला हॉकी विश्व कप में इस समय भारत का मुकाबला इंग्लैंड के साथ चल रहा है। ताजा समाचार मिलने तक दोनों ही टीमें गोल रहित बराबरी पर हैं। दिल्ली में बीडब्ल्यू

0: एफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने महिला डबल्स के अंतिम आठ में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए सुने किसान वाणी।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को नमस्कार।
4: किसान वाणी में श्रोताओं को देंगे खेती से संबंधित जानकारी के साथ साथ होगा ढेर सारा मनोरंजन भी।
3: जी हाँ श्रोताओं, आज किसान वाणी के सफर में हमारे बीच खास विशेषज्ञ भी जुड़ने वाले हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे सजावटी घास के क्षेत्र की देखरेख और नवीनीकरण के उपाय के बारे में।
4: सिद्धार्थ, और साथ में हम आपको बताएंगे किसान रथ ऐप के बारे में और किस तरीके से किसान भाइयों को इसका फायदा पहुंचेगा।
3: और मंजीत, हम अपने किसान भाई बहनों से साथ ही साझा करेंगे मौसम पर आधारित कृषि संबंधी सलाह, साथ ही आपको बताएंगे मंडी का भाव।
4: और सावन का महीना चल रहा है और इस सावन के ऊपर सुनवाएंगे आपको लोकगीत।
3: बिल्कुल। और मंजीत, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज हम एक डिजिटल युग में जी रहे हैं और जहाँ पे एक मोबाइल एक ऐसा संसाधन है कुछ डिजिटली अवेलेबल है, तो खेती से जुड़ी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है फसल को खेत से बाजार तक समय पर पहुंचाना। ये बहुत बड़ी चुनौती होती है किसी भी किसान के लिए,
4: और इसको ध्यान में रखते हुए किसान रथ ऐप विकसित किया गया है। ये एक ऐसा ऐप है जो किसानों को किसान उत्पादक संगठनों यानी FPOs और व्यापारियों को कृषि उपज के परिवहन सेवा प्रदाताओं से जोड़ने में मदद देगा।
3: और किसान रथ ऐप के माध्यम से किसान अपनी उपज के परिवहन की आवश्यकता दर्ज कर सकते हैं। इसमें उन्हें उपज की मात्रा, कहां से लोड करना है यानी लोडिंग का स्थान, और जहां आपको अपनी उपज पहुंचानी है उस स्थान जैसी जानकारी देनी होती है।
4: और इसके बाद उपलब्ध परिवहन सेवा प्रदाताओं किसान की आवश्यकता के अनुसार वाहन उपलब्ध कराने के लिए संपर्क कर सकते हैं।
3: और ये सुविधा विशेष रूप से फल, सब्जियों और अन्य जल्दी खराब होने वाली कृषि उपज के लिए बेहद उपयोगी हो सकती है।
4: और किसान इस सुविधा का उपयोग अपनी उपज को मंडी से गोदाम और अन्य बाजारों तक पहुंचाने के लिए कर सकता है। किसान रथ को ई नाम से भी जोड़ा गया है, जिससे कि कृषि उपज के व्यापार और परिवहन के बीच बेहतर समन्वय में मदद मिलेगी।
3: और मंजीत, यहाँ पर अपने किसान भाई बहनों से ये भी कहना चाहेंगे कि आप ध्यान रखिए कि वाहन बुक करने से पहले वाहन, उसका चालक, किराया और परिवहन की शर्तों की पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए।
4: और आज जब डिजिटल तकनीक किसान की पहुंच बाजार तक बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, ऐसे में किसान रथ ऐप कृषि उपज के परिवहन को सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक उपयोगी डिजिटल माध्यम साबित हो सकता है।
3: और अधिक जानकारी के लिए किसान भाई बहन अपने नजदीकी कृषि विभाग या संबंधित कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। तो आप किसान रथ ऐप का प्रयोग करके अपनी जो उत्पाद है उसको आप दूरस्थ मंडियों तक अतिशीघ्र पहुंचा सकते हैं।
4: सिद्धार्थ, आज एक विशेष दिवस भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अक्षय ऊर्जा दिवस की। भारत में हर वर्ष 20 अगस्त को

0: बनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोगैस और अन्य नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों के प्रति जागरूक करना है। अक्षय ऊर्जा के स्रोत प्राकृतिक से लगातार प्राप्त होते हैं और इनसे प्रदूषण भी अपेक्षाकृत कम होता है। आज सौर ऊर्जा का उपयोग घरों, खेतों, स्कूलों और उद्योगों में तेजी से बढ़ रहा है। किसानों के लिए सौर सिंचाई पंप ऊर्जा की लागत कम करने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ये एक अच्छा माध्यम है। अक्षय ऊर्जा दिवस हमें यह संदेश देता है कि ऊर्जा की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा भी हमारी जिम्मेवारी है। ऊर्जा बचाएं, स्वच्छ ऊर्जा अपनाएं और आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित भविष्य बनाएं।
1: तो मंजीत, आप बिल्कुल किसान भाई बहनों को तो फायदा पहुंचेगा ही, क्योंकि अक्सर देखते हैं कि शहर की बात हम करें, गांव की बात करें, कभी आपने वो कारपेट वाला एरिया देखा है वहां पे जिस तरह की हरी हरी प्यारी प्यारी सी घास लॉन में दिखाई देती है, कितना सुंदर वातावरण लगता है।
0: बिल्कुल, और सजावटी घास क्षेत्र की देखरेख और नवीनीकरण पर बातचीत।
1: आज इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर मार्कंडेय सिंह, प्रधान वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष पुष्प एवं भूदृश्य निर्माण संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली। डॉक्टर साहब, किसानवाड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है।
2: धन्यवाद।
1: सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि सजावटी घास क्या होती है और सामान्य घास की तुलना में इसकी क्या विशेषताएं होती हैं और किन स्थानों पर सजावटी घास का उपयोग अधिक किया जा सकता है।
2: जैसे सजावटी घास की यदि हम विवेचना करें तो सजावटी घास उस घास को हम कहते हैं जो देखने में इस तरीके से हो कि हमारे मन को मुग्ध कर दे और जिसकी संरचना बिल्कुल यूनिफॉर्म हो, उसको हम ये कह सकते हैं कि ये अलंकृत घास है। यदि इसको वर्गीकरण के हिसाब से देखें तो इसमें डिफरेंट स्पीसीज हैं, बहुत सारी इसमें किस्में हैं। यदि हम बात करते हैं कि ऐसी जगह जहां पे रफ एंड टफ यदि घास हम लगाने की बात करते हैं वहां पे बुफैलो घास होती है। यदि ब्रांच की बात करें तो काफी थिक होती है, लीफ भी काफी थिक होती है और इसलिए इसको बुफैलो ग्रास कहते हैं कि यदि इसके ऊपर एनिमल्स भी यदि मूव कर जाए तो उसकी संरचना खराब नहीं होती है। इसी तरीके से जैसे गोल्फ में जो हम घास लगाते हैं तो देखते हैं कि उसके जो रनर्स जो होते हैं बड़े फाइन होते हैं और उनकी डेंसिटी बहुत अच्छी होती है। उदाहरण के तौर पे देखें तो नॉर्दर्न इंडिया में एक सिलेक्शन वन नाम की घास है जो गोल्फ का मैदान होता है उसमें इसको हम लगाते हैं। इसी तरीके से साइनोडॉन डेक्टिलॉन है जिसको हम दूब घास कहते हैं, यह दूब घास को भी यदि हम एक यूनिफॉर्म शेप में उसकी कटिंग करते रहें तो ये भी एक लान की संरचना दे देती है। वैसे हम दूब घास को हम मानते हैं ये टाइप ऑफ एक वीड है, खरपतवार है जो है। तो इस तरीके से घासों की विवेचना वर्गों में जो है विभाजित किया गया है।
1: तो जिस प्रकार से हमारा प्रयोग है, हम जहाँ पर उस घास को लगा रहे हैं उसके हिसाब से हमको वो प्रजाति या उस घास का उपयोग करना चाहिए।
2: यदि हम देखें तो कुछ हमारे जो क्षेत्र होते हैं बिल्कुल खुले मैदान होते हैं। खुले मैदान का मतलब कि जहाँ पे सनशाइन लाइट इंटेंसिटी पूरी तेज आती है। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो पेड़ पौधे या बिल्डिंग के आसपास उसकी जो छाया होती है वो पड़ती है, तो इसमें हम कहें कि ऐसी घास जो फुल सनशाइन में ग्रो होती हो, ऐसी घास जो छायादार जगहों पे ग्रो होती हो, तो दोनों तरह के लिए एक ही किस्म उपयुक्त नहीं होती है। जिसमें जैसे नॉर्दर्न इंडिया में यदि हम सिलेक्शन वन की बात करते हैं तो वो खुले मैदान के लिए है, यदि हम छायादार की बात करते हैं तो उसमें जो किस्म आती है उसका नाम है नीलगिरी। दोनों को देखने में पत्तियों की संरचना थे और उनके रनर की संरचना से पहचानना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कंपेरेटिवली ये देखा गया है कि जो नीलगिरी घास है उसकी जो पत्ती है वो थोड़ी सी सिलेक्शन वन से अधिक ग्रीन होती है, लेकिन इनका जेनेटिक जो संरचना जो होती है नीलगिरी छाये में चलती है, बहुत अच्छा चलती है। दूसरा जो सिलेक्शन वन है वो छाये में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, वो खुले मैदान में परफॉर्म करता है।
1: जी, और इस समय डॉक्टर साहब जैसे कि मॉनसून का समय है और बारिश भी हो रही है तो किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, क्या ये उपयुक्त समय है इस तरह की घास को लगाने का?
2: इसमें दो चीजें हैं, बहुत जगह तो पहले से ही लान लगा हुआ है, बहुत जगह जो लोग अपने नए लान को लगाने के लिए तैयारी करके छोड़े हुए हैं, तो जून लोगों ने मई जून के महीने में प्लॉट को लान लगाने के लिए डीप जो है कि खुदाई करके और हाई टेम्परेचर पे उसमें जो भी हानिकारक जीवाणु हैं उनको यदि किल कर दिया है,

0: उसमें ऑर्गेनिक मैन्योर और फर्टिलाइजर डाल दिया है, लेबलिंग कर दिया है, तो बिल्कुल राइट टाइम है कि इस टाइम पे डिबलिंग मेथड से, चाहे छायादार जगह पे लगाना हो या चाहे खुले खेत में लगाना है। डिबलिंग का मतलब यह है कि कहीं से भी आप इन किस्मों का, चाहे सिलेक्शन वन की बात हो, नीलगिरी की बात हो, इनका कारपेट खरीद के ले आइए। उसमें 3 से 4 रनर्स होने चाहिए, उनके जड़ को 3 से 4 इंची के दूरी पे तीन तीन चार चार रनर पकड़ करके आप दबाते जाएं। तो यह देखेंगे ये लगभग 1.5 से 2 महीने के अंदर एक कारपेट का संरचना ले लेगा। इसको हम बोलते हैं डिबलिंग विधि। दूसरा, जो ऑलरेडी पहले से लान लगा हुआ है,
1: जी
0: तो इस टाइम पे देखा जाता है कि जब हाई रेनफॉल होता है तो न्यूट्रिशन की कमी जो है कि फील्ड के अंदर हो जाती है, क्योंकि लीचिंग करके बहुत सारा न्यूट्रिशन नीचे की तरफ चला जाता है, बहुत सारा जो है कि रन कर जाता है। तो इसमें देखा गया है कि पहले तो इसको फ्रीक्वेंटली जो है कि कटिंग करने की जरूरत होती है, क्योंकि ह्यूमिड है, टेम्परेचर है, ग्रास का जो ग्रोथ होगा बहुत तेजी से होगा, तो फ्रीक्वेंटली हमको कटिंग करने की जरूरत है। दूसरा, जब मौसम खुला रहे तो उस टाइम पे आप चाहें तो यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि 1 एकड़ क्षेत्रफल का लान है, 40 किलो यूरिया का इस्तेमाल मंथली इंटरवल पे आप कर सकते हैं। दूसरा, एक बैलेंस फर्टिलाइजर मार्केट में है जिसको एनपीके के नाम से जाना जाता है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम। इसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन में मार्केट में है, 13:13:13, 19:19:19। इसका मतलब
1: जी
0: 100 ग्राम के अंदर 19 ग्राम नाइट्रोजन है, 90 ग्राम फास्फोरस है और 19 ग्राम ही पोटास है। यदि इसको हम फोलियर स्प्रे के तौर पे यदि देखें तो लगभग इसमें 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल करके यदि हम छिड़काव करते हैं, तो उस टाइम पे ये ध्यान देना चाहिए कि लान की मोइंग हुई हो और 2-3 दिन मोइंग किए हुए हो गया हो, ताकि उसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई हो। यदि फोलियज नहीं है तो इसका अपटेक न्यूट्रिशन का कम हो जाता है। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छी तरह से लान को मेंटेन कर सकते हैं। एक एस्पेक्ट आता है इन दिनों में वीड का, खरपतवार एक बहुत बड़ा चैलेंजेज है, और इसमें 2 तरीके से खरपतवार का नियंत्रण किया जाता है। एक तो होता है मैकेनिकल, एक होता है केमिकल। मैकेनिकल का मतलब मैनुअली, जो हम खुद खुरपी के या खुटी के सहारे जो घास स्पीसीज के अलावा अन्य उसमें जो ग्रास है, जैसे साइनोडॉन डेक्टिलॉन जिसको हम मोथा कहते हैं वो है, या ऑक्जेलिक एसिड जिसको हम पत्थर चट्टा टाइप की घास कहते हैं, या सिलेक्शन वन के अंदर दूब ग्रास हो गया, तो उसको मैनुअल हम निकाल देते हैं। एक हर्बिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है कि जो सेलेक्टिव वीड को मारे, खरपतवार को मारे लेकिन घास को ना मारे जो है।
1: जी
0: और एक बहुत बड़ी समस्या है वो है मोथा। ये देखा गया है कि एक मार्केट में सनराइज नामक हर्बिसाइड खरपतवार नाशक है, यदि उसका 1 ग्राम पर लीटर पानी में आप डाल करके और इसको जो है कि स्प्रे कर देते
1: जी
0: हैं तो मोथा में लगभग 1 से 2 इंची के आसपास उसकी पत्ती उसमें होनी चाहिए। तो ये देखा गया है कि ये पूर्ण तरीके से मोथा को किल तो नहीं करता, लेकिन 2 महीने के लिए वानस्पतिक वृद्धि को रोक देता है। और उससे फायदा ये होता है कि लान का जो रियल स्पीसीज है उसका ग्रोथ अच्छा हो जाता है और धीरे धीरे ये डोरमेंट में।
2: डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से अभी बताया कि हमें किस तरीके से देख रेख करनी है, तो
0: जी
2: सही समय क्या है घास की कटाई छटाई करने का और पानी देने का?
0: देखिए, लान को देख करके ही लग जाता है कि इसमें अभी यूनिफॉर्मिटी नहीं है, समानता नहीं है जो है, कहीं पे नीचा हो गया, कहीं ऊंचा हो गया, उसमें कारपेट के अंदर कॉम्पैक्टनेस नहीं है। इसका मतलब कि फिजिकल अपियरेंस से देख करके लग रहा है कि इसकी सुंदरता खराब हो रही है। तो एक तो ये पहचान होती है कि लान काटने के लायक हो गया है। दूसरा ये पहचान है कि जमीन की सतह से यदि ये लगे कि 3 से 4 इंची के आसपास लान घास ऊपर जा रही है, तो अब भी हम मान के चलते हैं कि अब इसकी मोइंग कर देना चाहिए। फ्रीक्वेंटली मोइंग करने से ये फायदा होता है कि जो रनर्स की संख्या है वो बढ़ जाती है और ब्रांचिंग होने से उसमें कॉम्पैक्टनेस आती है और उससे उसका देखने में जो उसकी सुंदरता है वो बढ़ जाती है।
2: जिस तरीके से हम नवीनीकरण की बात करें तो काफी सारी जगह देखा जाता है, जब हम लॉन को मेंटेन करते हैं तो बहुत सारे पुनः रोपण की भी जरूरत पड़ती है पौधों को लगाने के लिए, तो वो किस प्रकार से की जाए?
0: उसमें 2 चीजें हैं। नवीनीकरण की बात करें या उसको एक और शब्द देते हैं जीर्णोद्धार, रिजुनेशन जिसको बोलते हैं।
2: जी
0: कभी कभी होता है कि लान जो है बहुत पुराना हो जाता है और वो काफी कॉम्पैक्ट हो जाता है, जैसे 10 साल 12 साल 15 साल पुराना लान हो गया, तो जो ग्री

0: पोर्शन उसका है, उसको हम छील करके और जमीन की सतह तक हम जाते हैं, उसको बोलते हैं स्क्रैपिंग। उसके बाद उस मिट्टी को ढीला करने के लिए फॉर्किंग करते हैं, मतलब पंजे से लेकर के हम फॉर्किंग कर देंगे। फॉर्किंग करने के बाद उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद हो और सैंड हो, जो सफेद जमुना जी का रेता है, उसको हम मिक्स करते हैं। 1:1 के रेशियो में कर लें तो बहुत अच्छी बात है। खाद की यदि कमी हो तो 2 पार्ट जो है कि सैंड रख सकते हैं और 1 पार्ट जो है कि सड़ी हुई गोबर की खाद। फिर उसमें हम अच्छी तरह स्क्रैप किए हुए और फॉर्क किए हुए लान के अंदर इसको मिक्स कर देते हैं। अब मिक्स करने के बाद हल्का सा रोलर चला दें तो ताकि वो बैठ जाए। अब फिर उसमें हम फ्लड इरिगेशन कर देते हैं। यदि आपके पास पॉपअप इरिगेशन सिस्टम हो तो उसको हम रन कर, इससे होता ही है कि जो कॉम्पैक्टनेस थी फॉर्किंग से कम हो गई, जो ओल्ड रनर्स थे वो हट गए और नीचे से जड़ से नया फुटाव होगा, लान का शेप ही डिफरेंट होगा। ये एक तरीका है जीर्णोद्धार लान का करने का।
1: कितने दिनों के बाद डॉक्टर साहब ये जीर्णोद्धार की जरूरत पड़ती है, कैसे पहचाने कि अब वक्त आ गया है और कितने अंतराल के बाद इसे करना चाहिए?
0: जब लान जो है कि 10 से 12 साल पुराना हो जाता है तो सॉयल काफी कॉम्पैक्ट हो जाती है, तो हम मान के चलते हैं कि साल में 1 बार, और अदरवाइज यदि आपको लगता है कॉम्पैक्टनेस कम है तो 2 साल पे 1 बार जरूर कर देना चाहिए। यदि ऐसा करते रहेंगे तो आपके जो लान की जो उम्र है वो बढ़ जाएगी।
1: डॉक्टर साहब, नवीनीकरण के लिए साल का कौन सा समय सबसे ज्यादा उपयुक्त रहता है? क्या ये समय घास की प्रजाति और स्थानीय जलवायु के हिसाब से अलग अलग हो सकता है?
0: बिल्कुल, अभी इस टाइम देखेंगे तो मैदानी क्षेत्रों पे देखेंगे तो बिल्कुल एक्टिव है, क्योंकि टेम्परेचर भी है, ह्यूमिडिटी भी है, रूट का डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, फोलियज का डेवलपमेंट अच्छा होगा। तो हम मान के चलते हैं जो अक्टूबर नवंबर का महीना या फरवरी का महीना, उस टाइम पे यदि आप स्क्रैपिंग कर देते हैं तो वो बेस्ट मैदानी क्षेत्रों के लिए होता है। यदि पहाड़ी क्षेत्रों की बात करते हैं तो या तो सितंबर के महीने में कर लें या तो मार्च के महीने में करें, क्योंकि उस टाइम पे टेम्परेचर है पहाड़ी क्षेत्रों पे मिलता है।
2: अगर हम डॉक्टर साहब बात करें अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग फूलों को हम घर में भी उगाते हैं और टेरेस गार्डन की भी बात करें, तो किस तरीके से हमें मेंटेन करना चाहिए? अगर हम घर की बात करें, हम अपनी छतों पे लगाते हैं तो उनको किस तरीके से मेंटेन करें, और खरपतवार भी आते हैं गमलों के अंदर तो उनको किस तरीके से हमें देखरेख की आवश्यकता है?
0: देखिए, यदि किसी भी लैंडस्केपिंग की या बागवानी की जब हम बात करते हैं तो उसमें फूलों की बात ना हो तो अधूरा होता है।
2: जी,
0: यदि फूलों की बात करें तो इसको ऋतु के आधार पे हम लोग 3 वर्गों में विभाजित किए हुए हैं, जिसमें जाड़े के मौसम का फूल, गर्मी के मौसम का फूल, अब बरसात के मौसम का फूल। बगीचे में किस तरीके से फूल की कंटिन्यूटी बनी रहे, इस बात का ध्यान देना बहुत ही जरूरी होता है। इस टाइम पे देखेंगे तो अलंकृत बागवानी के अंदर आपको सदाबहार मिलेगा, गजेनिया मिलेगा, गिलार्डिया मिलेगा, परचुलाका मिलेगा, कोचिया ग्रीन फोलियज का मिलेगा, और ऐसे ही खत्म होगा। कुछ लोगों ने गेंदे की नर्सरी डाल चुके हैं, कुछ लोग गेंदे की ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं और कुछ लोग अभी तैयारी कर रहे हैं। सितंबर का महीना जब आएगा तो जितने जाड़े में फूल लगने वाले हैं, चाहे कैलेंडुला हो, चाहे आपका पिटूनिया हो, पेंजी हो, हेलीक्राइजम हो, सीजनल क्राइजेंथिमम हो, बर्बीना हो, आइस प्लांट हो, उनकी सबकी नर्सरी जो है सितंबर के महीने में लग जाएगी। जो अभी खिल रहे हैं इनकी नर्सरी फरवरी से मार्च के महीने में लगी होगी। तो इस तरीके से यदि हम कंटिन्यूएशन में फ्लावर चाहते हैं तो हर सीजन के जो है कि मौसमी फूल का सिलेक्शन करना बहुत ही जरूरी है।
1: बिल्कुल, तो सजावटी घास के साथ आपने फूलों की भी बात करी। आपसे ये जानना चाहेंगे कि बहुत सारे मेरे ऐसे श्रोता भी हैं जो अपने घर पे या नर्सरी है या छोटे छोटे उद्यान में इस सजावटी घास को लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए आप उनसे क्या कहना चाहेंगे?
0: सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो लोग अभी इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि सजावटी घास लगानी है, तो हम ये कहेंगे कि बरसात का आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। यदि खेत आपका तैयार है तब तो अभी लगा दीजिए। यदि आपको लग रहा है कि आपका गार्डन पुराना है और आपको नई घास लगानी है, यदि खरपतवार काफी आ गया हो तो हम लोग सुझाव करते हैं 6 से 7 इंची की मिट्टी हटा लीजिए और नई मिट्टी उसमें डाल दीजिए, ताकि आपका जो नया लान लगेगा उसमें खरपतवार लगभग जो है 8 से 10 साल तक नहीं आता है। दूसरा, जो सिंचाई का साधन है, सिंचाई के साधन में इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो भी आप पानी दे रहे हैं

0: उसमें कोई वीड ना आ रहा हो। कभी कभी होता है इरिगेशन वाटर भी एक सोर्स बन जाता है, इस बात का ध्यान रखना है। तीसरा इस बात का ध्यान रखना है कि जहां से भी आप कारपेट लान को लगाने के लिए आप खरीद रहे हो, तो इस बात को जरूर एंश्योर करें जहां से आप खरीद रहे हैं रोग मुक्त है, उसमें पीलापन नहीं है, कहीं धब्बा नहीं है। यदि आपके मदर नर्सरी से ही इन्फेक्टेड मटेरियल आप लेके आएंगे, जो लान आप लगाएंगे वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। और इसमें एक चीज के ऊपर मैं असर डालूंगा कि एक डिजीज की बात हुई, अब बरसात के दिनों में एक लान कॉमन डिजीज रोग है, उसको हम बोलते हैं फेरी रिंग। फेरी रिंग की पहचान ये होती है, चाहे छोटा लान हो या बड़ा लान हो, उसमें रिंग जैसे संरचना बनती है और वहां से लान की जो घास होती है वो ग्रीन से सफेद हो जाती है, और वाटर लॉगिंग हो गई हो, ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो वहां पे फंगस जनरेट हो जाता है। इसको मारने के लिए यदि हम मैंकोजेब की बात करते हैं या बाविस्टीन की बात करते हैं, तो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल करके स्प्रे नहीं करना, वाटर कैन में फुहारे में आप डालिए, एक बार आज डाल दीजिए, एक बार 15 दिन के अंतराल पर डालिए, तो ये रोग जो है खत्म हो जाता है, कवक मर जाता है, फिर दोबारा वहां लान लगाने की जरूरत नहीं है, फिर उसके जड़ से नया फुटाव आ जाता है।
1: और सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से सिंचाई करनी चाहिए, पानी का इस्तेमाल कितना करना चाहिए और कैसे करना चाहिए।
0: देखिए जब पानी की बात होती है तो हम लोग ये सोचते हैं कि आज के दिन कम से कम पानी में पौधों की बढ़वार की जाए ताकि हम पानी को सेव कर सके। इसमें सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर विधि है, स्प्रिंकलर विधि आप लान में लगा सकते हैं, पूरे लान को एरिएट करता रहता है, सिंचाई करता रहता है। यदि बहुत बड़ा लान है जहां पे हम स्प्रिंकलर से कवर नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें एक पॉपअप इरिगेशन सिस्टम है, तो लान जब हम लगाते हैं उसी टाइम पे अंडरग्राउंड में हम पाइप डाल देते हैं और उसमें प्रेशर से पानी आता है और वो लान को इरिगेट कर देता है। तीसरा सिस्टम है कि हम पाइप के सहारे इरिगेट करते हैं, जो पाइप के सहारे करते हैं उसमें सबसे अधिक पानी लगता है। तो हम तो ये सुझाव देंगे कि यदि लान आपका छोटा है तो स्प्रिंकलर विधि को अपनाइए और कम पानी में जो है कि अपने बाग बगीचे को हरा भरा रखिए।
1: जी डॉक्टर, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मंजीत, जैसा कि हमने कहा था कि हम सिर्फ जानकारी ही नहीं आपका मनोरंजन भी करेंगे, तो हमारे किसान भाई बहन प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्या सुनवा रही हो आज?
2: बिल्कुल, और सुनवाएंगे पूजा शर्मा की आवाज में लोकगीत,
1: तो आइए सुनते हैं।
3: पढ़े सा...

0: पूजा शर्मा के इस लोकगीत के बाद वक्त चला है कल के मौसम के बारे में जानकारी लेने का। तो आपको बता दें कि कल दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की भी संभावना है। अगर हम अधिकतम और न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। और हमारे वैज्ञानिक क्या सलाह देते हैं इस मौसम में धान की फसल को नष्ट करने वाली ब्राउन प्लांट होपर का आक्रमण आरंभ हो सकता है, इसलिए किसान भाइयों से अनुरोध है कि खेत के अंदर जाकर पौध के निचली भाग के स्थान पर मच्छरनुमा कीट का निरीक्षण करें। धान की फसल प्रमुख रूप से वृद्धि की स्थिति में है और फसल में कीटों की निगरानी करें। और इस मौसम में किसानों को सलाह दी जाती है कि स्वीट कॉर्न यानी मौधरी, विन, ऑरेंज तथा बेबी कॉर्न की बुआई करें।
1: और इस मौसम में किसानों को सलाह दी जाती है कि गाजर की उन्नत किस्म पूसा वृष्टि की बुआई मेड़ों पर करें और खेत को तैयार करते समय खेत में देसी खाद और फास्फोरस उर्वरक अवश्य डालें।
0: तो ये थी मौसम पर आधारित कृषि संबंधी सलाह हमारे किसान भाई बहनों को। और अब बात करते हैं आजादपुर मंडी में क्या भाव चल रहा है। और सबसे पहले आलू की बात करें तो आलू 15 रुपए प्रति किलोग्राम, प्याज की बात करें तो 30 रुपए प्रति किलोग्राम, टमाटर की बात करें तो 40 रुपए प्रति किलोग्राम, बीन्स की हम बात करें तो 60 रुपए प्रति किलोग्राम और बैगन 25 रुपए प्रति किलोग्राम। और अगर हम फल की बात करें तो फलों के रेट क्या है।
1: बिल्कुल, अब फलों की बात करें तो सबसे पहले आता है सेब, सेब 100 रुपए प्रति किलो, केले की बात करें तो 25 रुपए प्रति किलो और वहीं अमरूद की बात करें तो 80 रुपए प्रति किलो, मौसमी की बात करें तो 40 रुपए प्रति किलो और पपाया यानी कि पपीते की बात करें तो 30 रुपए प्रति किलो का आज का भाव।
0: तो ये थे मंडी के भाव। और किसान भाई बहनों से ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया या सुझाव है तो आप हमें feedback@gmail.com पर हमें आप लिख सकते हैं। तो अब वक्त है अपने किसान भाई बहनों से विदा लेने का, अनुमति दीजिए। नमस्कार, नमस्कार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवरेज।
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

अभी आप सुन रहे थे किसान वाणी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, आइए अब चलते हैं हमारे अगले कार्यक्रम की ओर और आपको सुनवाते हैं ये गजल जगजीत सिंह की आवाज में।

सच्ची तो कहा है दोस्तों कि कुछ बातें कुछ मुलाकातें अक्सर अधूरी रह जाती हैं और कुछ फिर मिलने का सबब बन जाती हैं। तो आप भी हमसे कल फिर इसी समय ज़रूर मिलिएगा।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ ही पलों में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा। तब बोला,

0: अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर कथित अतिरिक्त बल प्रयोग और पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की। केंद्र सरकार ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 जारी किया। इसका लक्ष्य राष्ट्रीय राजधानी को विश्व स्तरीय, समावेशी और आर्थिक रूप से सशक्त शहर बनाना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मोती नगर विधानसभा क्षेत्र में जन कौशल केंद्र और स्वयं स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। नकली एंटी कैंसर दवाओं के अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़, 17 आरोपी गिरफ्तार और करीब 9 करोड़ रुपए की दवाएं जब्त। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने महिला डबल्स के अंतिम 8 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस और सुरक्षा कर्मियों द्वारा जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग और पुलिस कर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों की जांच के लिए पूर्व जज जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय उच्चाधिकार संपन्न जांच समिति गठित की है। एक रिपोर्ट।
2: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
1: केंद्र सरकार ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का अनावरण किया। ये दिल्ली को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, पर्यावरण के अनुकूल और समावेशी राजधानी में बदलने के लिए दीर्घकालिक ढांचा प्रदान करता है। विकसित भारत 2047 के अनुरूप दिल्ली मास्टर प्लान का उद्देश्य राजधानी को लोगों के लिए विश्व स्तरीय, समावेशी और आर्थिक रूप से जीवंत शहर में बदलना है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 30 से 40 लाख नए फ्लैट जोड़े जाएंगे।
3: लगभग 40 लाख नए फ्लैट या आवास ये जोड़े जाने का इसमें लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि 80 लाख की आबादी इसमें बढ़ने वाली है। तो 30 से 40 लाख नए फ्लैट इस बढ़ती आबादी को ध्यान में रख करके विकसित किए जाएंगे और विकास में अफोर्डेबल हाउसिंग के प्लॉट्स होंगे, फ्लैट्स होंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इसका भी ध्यान रखा गया है।
1: कार्यक्रम में दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने कहा कि ये योजना अधिक टिकाऊ, जीवंत और भविष्य के लिए तैयार दिल्ली का निर्माण करेगी। एक रिपोर्ट।
4: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली 1484 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है और इसकी अपनी कई सीमाएं हैं, लेकिन इन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए यह प्लान पूरे शहर के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है, जिसमें ग्रामीण इलाके, अनधिकृत कॉलोनियां और नियोजित इलाके सभी शामिल है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की बढ़ती परिवहन जरूरतों और प्रदूषण की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए शहरी विकास की योजना भी बनाई गई है।
5: पूरी दिल्ली के सर्वांगीण विकास, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, अनऑथराइज कॉलोनी हो, प्लान्ड एरिया, सभी का ध्यान रखा गया है। दिल्ली के बढ़ते ट्रांसपोर्ट को, प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए भी शहरी विकास की योजना की गई है। दिल्ली की चाहे सभी रेजिडेंशियल कॉलोनियों की मैं बात करूं, मार्केट एरिया की बात करूं, लो डेंसिटी एरिया की बात हो, एजुकेशनल इंफ्रा की जब हम बात करते हैं, उसको इतना आसान किया गया है, बहुत सारी कंडीशंस को हटाया गया है ताकि दिल्ली में फैसिलिटीज जो है वो बढ़ें।
4: विकसित भारत 2047 के अनुरूप दिल्ली मास्टर प्लान का उद्देश्य राजधानी के लोगों के लिए विश्व स्तरीय, समावेशी और आर्थिक रूप से जीवंत शहर में बदलना है। बढ़ती आबादी, परिवहन और प्रदूषण की चुनौतियों के बीच यह दिल्ली मास्टर प्लान 2047 राजधानी को सुव्यवस्थित, सुविधाजनक और भविष्य के लिए तैयार करने का संकल्प है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी

0: दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र में जन कौशल केंद्र और स्वयं स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। ये एक आधुनिक स्वास्थ्य जांच केंद्र है जहां लोगों को अपने क्षेत्र में ही सुलभ और समय पर स्वास्थ्य जांच की सुविधा उपलब्ध होगी। जांच के परिणाम डिजिटल रूप से उपलब्ध होंगे और आवश्यकता पड़ने पर टेलीमेडिसिन के माध्यम से डॉक्टर से परामर्श लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि AI और डिजिटल तकनीकें रोजगार और उद्यमिता के क्षेत्र में अभूतपूर्व अवसर पैदा कर रही हैं।
1: आप सबको यहाँ ट्रेंड करना, आपको सिखाना इस जन कौशल केंद्र में किया जाएगा, क्योंकि आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी लाल किले से अपनी बात रखी थी, तो उन्होंने लक्ष्य लिया था कि हम युवाओं को AI की शिक्षा देंगे, AI के कौशल से जोड़ेंगे, ताकि आज का युवा स्किल होल्डर बने जो कि आज के जमाने की हर विधा को जानता हो।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अनुव्रत भवन में रेजिंग और एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस योजना के अंतर्गत आयोजित मेगा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में सहभागिता की। आयोजन में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम 4P रिफॉर्म की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
1: ये जो ट्रेनिंग और होल्डिंग आप लोगों की है, ये भी सच में 4P रिफॉर्म की ओर हमें लेके जाएगी, जहां पॉलिसी, प्रोसेस, परफॉर्मेंस और पार्टनरशिप हर चीज अपनी जगह काम करेगी और हम मिलकर के इस पार्टनरशिप के माध्यम से दिल्ली को आगे लेकर के जाएंगे।
0: दिल्ली के उद्योग मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के दूरदर्शी नेतृत्व में दिल्ली का औद्योगिक क्षेत्र व्यापक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है।
2: आपको कैसे आगे बढ़ाना है, इसके बहुत सारे आइडिया हमने आके माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेजेंट किए। सोचिए, दिल्ली का पिछले हमारी सरकार आने से पहले कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर में 3,000 करोड़ रुपया लगा था और हमने 4,806 करोड़ रुपया अपनी गारंटी दिल्ली सरकार ने देकर 4,806 करोड़ रुपया लगभग 10,500 लोगों को लोन देकर काम कराने का काम किया। ये काम करने की सोच है।
0: केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव आज गुरुग्राम क्षेत्र के पास अरावली के संरक्षण और विकास पर चर्चा के लिए आयोजित एक बैठक में शामिल हुए। श्री यादव ने कहा कि सरकार पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हरियाली को बढ़ावा दे रही है। इस साल के वन महोत्सव के दौरान मानेसर के पास 2 लाख पेड़ लगाए गए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आज कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ एक पेड़ मां के नाम पहल के अंतर्गत पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। श्री मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से पर्यावरण संरक्षण सहित सभी क्षेत्रों में विकास कार्य में निरंतर प्रगति हो रही है।
3: हमारे पर्यावरण मंत्री सिरसा जी ने और रेखा जी ने मिलके दिल्ली के अंदर 70 लाख पेड़ लगाने की मुहिम छेड़ी और बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है। पोर्टल के माध्यम से दिल्ली में कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवा करके उसके बाद दिल्ली सरकार उनको अप्रोच करेगी, उनको पेड़ देगी या उनको ऐसे स्थान पर बुलाएगी जहां पर ग्रीन कवर बढ़ाने की बात है।
0: कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान को दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा अभियान बताया।
2: एक पेड़ मां के नाम 2.0 जो देश के प्रधानमंत्री जी ने सेकंड मुहिम शुरू की है, इसमें अब तक 50 लाख पेड़ और पौधे लग चुके हैं। ये दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा अभियान है। पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर करके अब तक 3.5 लाख पेड़ लगाए जा चुके हैं, जिसमें लगभग 1,58,000 पब्लिक के लोगों ने आकर साथ दिया। ऐसे अनेकों हमारे मुहिम चल रही है। हम दिल्ली के अंदर एक बड़ा प्रचार प्रसार इस पर्यावरण को बचाने के लिए कर रहे हैं।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सम्मेलन का आयोजन 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में होगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि भारत की अतिथि देवो भव की परंपरा के अनुरूप दिल्ली सभी विदेशी प्रतिनिधियों के सुव्यवस्थित, सुरक्षित और गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए तैयार है। दिल्ली नगर निगम के आयुक्त संजीव खिरवार ने आज नरेला, बवाना, सिंघोला और भलसवा में बन रहे नए कूड़े के निस्तारण संयंत्रों का निरीक्षण किया तथा उनके निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की।

नरेला बवाना क्षेत्र में बन रहे 1200 टन और बवाना में ही स्थित निर्माणाधीन 3000 टन प्रतिदिन क्षमता वाले वेस्ट टू एनर्जी संयंत्र शामिल है। साथ ही निगम आयुक्त ने सिंघोला में बन रहे नए कूड़े के निस्तारण संयंत्र का निरीक्षण किया। इसके अलावा श्री खिरवार ने भलसवा लैंडफिल साइट पर बायो माइनिंग कार्यों का जायजा लिया। नगर निगम ने लाल किला परिसर और आसपास के क्षेत्रों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया। स्वतंत्रता दिवस समारोह के सफल आयोजन के उपरांत लाल किला और इसके आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए नगर निगम की टीम द्वारा विशेष रूप से सफाई कार्य किए जा रहे हैं। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री परवेश साहिब सिंह ने आज राजधानी के आगामी पीडब्ल्यूडी फ्लाईओवर प्रोजेक्ट्स पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस दौरान प्लानिंग से लेकर काम पूरा होने तक हर प्रोजेक्ट पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की अंतर्राज्यीय अपराध शाखा ने नकली और गैर कानूनी तरीके से डायवर्ट की गई एंटी कैंसर दवाओं के अवैध कारोबार में शामिल एक अंतर्राज्यीय समूह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में पुलिस ने अब तक 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि ये गिरोह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अन्य जगहों पर गैर कानूनी तरीके से कई दवाइयों की हेराफेरी करते हुए पाया गया। पुलिस ने आरोप के पास से एंटी कैंसर इंजेक्शन की 588 भरी हुई शीशियां, 6 खाली शीशियां, 7 खाली डब्बे और अन्य दवाओं की लगभग 3000 इकाइयां बरामद की हैं, जिनकी कीमत लगभग 9 करोड़ रुपए है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 50 लाख नकद बरामद भी किया है। मामले की जांच जारी है। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार के साथ एक समीक्षा बैठक की। इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लागू की जा रही विशेष सामुदायिक पुलिस पहल, जन कल्याण प्लेटफॉर्म और सुरक्षा के विशेष उपायों का विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में कमजोर वर्गों, खासकर बुजुर्गों और महिला यात्रियों के लिए संस्थागत सहयोग को मजबूत करने पर बल दिया गया। बैठक के दौरान उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस के सीनियर सिटीजन मोबाइल एप्लीकेशन के कामकाज, उसके इस्तेमाल और असर की भी समीक्षा की। राजधानी दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा और हल्के बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा। कल बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। दिल्ली में बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने महिला डबल्स के अंतिम 8 में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिन इवानागा और की नाकानिशी को लगातार गेम में 21-16, 21-12 से हरा दिया। वहीं पुरुष और महिला सिंगल्स में भारत की चुनौती समाप्त हो गई है। आयुष शेट्टी को प्री क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया के अलवी फरहान ने 19-21, 11-21 से हरा दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर कथित अतिरिक्त बल प्रयोग और पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्य समिति गठित की। केंद्र सरकार ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 जारी किया। इसका लक्ष्य राष्ट्रीय राजधानी को विश्व स्तरीय, समावेशी और आर्थिक रूप से सशक्त शहर बनाना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र में जन कौशल केंद्र और स्वयं स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। नकली एंटी कैंसर दवाओं के अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ और बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने महिला डबल्स के अंतिम 8 में जगह बनाई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीत मालिका।

सलाम, नमस्ते, आदाब एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम। स्वागत है आपका सुरों से सजी और गीतों से सबरी फिल्म संगीत की महफिल गीत मालिका में। दोस्तों, आज तारीख है 20 अगस्त और अभी बीते अगस्त 18 अगस्त को हमारे आपके अपने गुलजार साहब ने अपना 92वां जन्मदिन मनाया। आकाशवाणी से भी आपने गुलजार साहब के गीतों और उनके व्यक्तित्व को समर्पित कई कार्यक्रम सुने होंगे, तो फिर आज फिर से गुलजार साहब की बात क्यों? सोचने की बात है ना। तो आज फिर से गुलजार साहब की बात इसलिए क्योंकि गुलजार सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक नजर है। एक ऐसी नजर जो रोजमर्रा की जिंदगी में आम सी चीजों में भी कुछ ऐसा देख लेती है, कुछ ऐसा खोज लेती है जो हमारी आपकी नजर को नजर नहीं आता। उनकी दुनिया थोड़ी सी अलग है, उनका अंदाज़ी बयां अलग है और शायद इसीलिए उनकी नजरों से देखा हुआ चांद भी सिर्फ चांद नहीं रहता। कभी वो किसी की याद बन जाता है, कभी रात की तन्हाई, कहीं महबूब का चेहरा और कहीं बच्चों का खिलौना। तो चलिए आज कुछ देर के लिए अपनी नजरें गुलजार की नजरों से मिलाते हैं, कुछ देर के लिए देखते हैं उस चांद को गुलजार साहब की नजर से, देखते हैं उस चांद को जिसे दुनिया ने तो एक देखा मगर गुलजार साहब ने हर बार अलग तरह से, हजार तरह से देखा। आज की ये शाम, आज का ये चांद सा सफर आप तय करेंगे आपकी मितवा, आपकी साथी, आपकी अपनी दीप्ति के संग, और हम सुनेंगे वो गीत जिनमें गुलजार साहब ने चांद को अपनी नजर से देखा। शुरुआत करेंगे उनके फिल्मी करियर के पहले गीत के संग जिसमें चंदा चुपकी से बदली से झांक रहा है।

0: गुलजार के इस गीत में चांद का जिक्र जैसे बहुत कोमल सा एहसास, उजला सा, मासूम सा और थोड़ा सा शर्मीला सा। लेकिन गुलजार की दुनिया में चांद हमेशा संजीदा हो, अब ऐसा तो जरूरी नहीं। जरा इसी चांद को कुछ अलग नजरिए से देखते हैं। वही चांद, वही रात, लेकिन इस बार जरा सी शरारत के साथ, जरा सी ठिठोली के साथ, कुछ बच्चों के संग।
1: कायदा कायदा, हर चीज में कायदा, आखिर इसका फायदा। कायदा तोड़ के सोचो, एक दिन चांद निकलता नीचे से और मैदान पे रखा होता,

0: अच्छा सोचो, सूरज का रंग नीला होता
1: होता
0: और पेड़ों का रंग लाल
1: लाल,
0: पंछी रहते पानी में
1: वाह,
0: और मच्छी गगन विशाल
1: वाह वाह वाह।

नरम नरम रात में गरम गरम चांद पर, तो गुलजार साहब की गुलजारियत में इस चांद को भी हमने देखा बिल्कुल अलग शरारती अंदाज में, जिस रात भी ना थोड़ी सी नटखट सी हो गई हो, चांद भी आसमान से उतरकर हमारे करीब आ गया हो। लेकिन गुलजार साहब के चांद की एक खूबी और भी है, वो सिर्फ रात को खूबसूरत बनाने नहीं आता, कभी कभी किसी की गैर मौजूदगी में भी वही चांद बहुत कुछ कह जाता है। सोचिए ना, अगर महबूब पास ना हो तो चांद उतना ही अच्छा लगेगा क्या? क्या रात उतनी ही पूरी लगेगी? इसीलिए तब दिल करेगा कि आज की इस रात को यहीं रोक लिया जाए। और गुलजार साहब ने इसी एहसास को इतनी खूबसूरती से लिखा है, जहाँ किसी से कोई शिकायत भी नहीं लेकिन उसके बिना जिंदगी भी शायद जिंदगी पूरी नहीं। तो अब चांद को जरा शरारत से नहीं, एक ऐसे दिल की नज़र से देखिए जिसे किसी की कमी आज भी महसूस हो रही हो।

अभी इस गीत में आपने एक ऐसी रात सुनी है जिसे दिल रोक लेना चाहता है, चांद से जैसे एक इल्तिजा सी है कि अभी मत डूबो, ये रात थोड़ी और ठहर जाए। लेकिन गुलजार की दुनिया में चांद सिर्फ रात को रोशन नहीं करता, कभी कभी उसकी चांदनी दिल के भीतर उतर कर उसे बेचैन भी कर देती है। एक गीत में चांद के डूबने को रोक लेने की ख्वाहिश है, और अब उसी चांदनी का असर देखिए, जब वो सामने आती है तो दिल चुप नहीं रहता। चांद वही है, रात वही है, बस एहसास बदल गया है। वहां चांद को रोकने की चाहत थी, यहां उसकी चांदनी से बच पाना थोड़ा मुश्किल है। आइए सुनते हैं गुलजार साहब के चांद को एक और रूप में।

तेरी ऊंची अटारी मैंने पंख लिए कटवाए, कितनी बेचैनी है ना इस चांदनी में। और गुलजार के यहाँ जब चांद दिल तक उतर आए तो बस फिर उसे दूर से नहीं देखा जाता। कभी उसकी चांदनी अंग जला देती है तो कभी वही चांद इतना अपना हो जाता है कि उसे छू लेने, झूम लेने और उसके तारों को चुन लेने का मन करता है। तो आइए अब उसी चांद को एक बार फिर दूसरी नजर से देखते हैं।

गुलजार की दुनिया में चांद कभी ख्वाब बना, कभी याद, कभी तन्हाई, कभी मोहब्बत का बहाना। और आज हमने उसी चांद के कई रंग आपकी ओर अपनी इस शाम में देखे। इसी खूबसूरत एहसास के साथ दीप्ति पाठक निधीश को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे यूं ही किसी संगीतमय मोड़ पर। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के संग।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया, मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगाई। सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के

0: शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वर्ष 2047 तक समावेशी और विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए मास्टर प्लान जारी किया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित। और महिला हॉकी विश्व कप में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलने के बाद भारत ने दूसरे दौर में प्रवेश किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान हो जाएगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश की अन्य जगहों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने विद्यार्थियों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति के कई पहलुओं पर सवाल उठाए हैं। इनमें पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों की उपलब्धता, विद्यार्थियों पर बोझ और स्कूलों में इस नीति को लागू करने का तरीका शामिल है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश न्यायमूर्ति जय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सरकार की परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली 3 अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। एक रिपोर्ट।
2: न्यायालय ने निर्देश दिया कि चुने गए उम्मीदवारों को बहाल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि उचित प्रक्रिया और न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना उन्हें हटाया नहीं जा सकता। न्यायालय ने राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। 2 याचिकाएं 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और नियुक्तियों को रद्द करने को चुनौती देती है, जबकि 3री याचिका खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा से संबंधित। याचिकाकर्ताओं के अनुसार 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के जरिए चुने गए 342 उम्मीदवार अभी नौकरी कर रहे हैं। झारखंड सरकार ने 22 परीक्षाओं को रद्द करने, 6 परीक्षा प्रक्रियाओं को रोकने और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में लाने की अधिसूचना जारी की थी। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में देश के विकास में दक्षिण भारत के योगदान की सराहना की है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में बैठक को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि दक्षिण भारत ने देश के सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और अवसंरचना विकास के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि दक्षिण में भारी मात्रा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी आया है।
3: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दक्षिण भारत की संपूर्ण विकास यात्रा 3 स्तंभ, उच्च साक्षरता दर, प्रशिक्षित मानव संसाधन और गहरे समुद्र के उपयोग में तकनीकी विशेषज्ञता पर टिकी है। इन्हीं 3 स्तंभों ने दक्षिण भारत को देश के विकास में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनाया है। उन्होंने कहा कि 2014 से क्षेत्रीय परिषद को एक सार्थक मंच में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री शाह ने बताया कि उत्तर भारत में नदी जल बंटवारे से संबंधित 8 मुद्दों में से 5 मुद्दे ब्रिटिश काल से पहले से ही चले आ रहे थे। उन्होंने कहा कि ब्रह्मपुत्र से लेकर कावेरी और गोदावरी

0: दिल्ली तक प्रमुख नदियों को जोड़ने से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि भारत को अगले 100 वर्षों तक पानी की कमी का सामना न करना पड़े। चेन्नई से आर चिदम्बर नाथन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने इस वर्ष 31 अक्टूबर तक 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के शुल्क रहित आयात को अनुमति दे दी है। महानिदेशक विदेश व्यापार ने आज जारी एक सूचना में कहा कि कुछ शर्तों के साथ 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी का शुल्क के बगैर आयात किया जा सकेगा। ये फैसला त्योहारों के मौसम से पहले लिया गया है, जब आमतौर पर चीनी की मांग बढ़ जाती है। घरेलू बाजार में आपूर्ति को लेकर चिंता के बाद ये निर्णय लिया गया। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। सरकार ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का अनावरण किया। ये प्लान दिल्ली को पर्यावरण अनुकूल और समावेशी राजधानी बनाने के लिए दीर्घकालिक ढांचा प्रदान करता है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप दिल्ली मास्टर प्लान का उद्देश्य राजधानी को विश्व स्तरीय, समावेशी और आर्थिक रूप से जीवंत शहर बनाना है।
2: दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में दो तरीके अपनाए गए हैं, मौजूदा विकसित क्षेत्रों के लिए क्षेत्र आधारित पुनर्विकास और नए विकसित होने वाले क्षेत्रों के लिए सड़क मार्ग आधारित योजना। मौजूदा क्षेत्रों में परिवहन केंद्रित विकास, मिश्रित उपयोग वाली जगहों और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। वहीं नए क्षेत्रों में जुड़े हुए सड़क नेटवर्क विकसित किए जाएंगे। इसके लिए लैंड पूलिंग और कम घनत्व वाले क्षेत्रों का उपयोग किया जाएगा। इन दोनों तरीकों से जमीन का बेहतर उपयोग, शहर के अंदर और दूसरे शहरों से बेहतर संपर्क तथा टिकाऊ और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस योजना में लोगों को शहरी विकास के केंद्र में रखा गया है। इसमें खास तौर पर युवाओं, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों की जरूरतों और उनकी आकांक्षाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का आज अनावरण किया। ये प्लान दिल्ली को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए तैयार किया गया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 30 से 40 लाख नए फ्लैट जोड़े जाएंगे। इसका उद्देश्य शहर की विशाल आबादी की आवास मांग पूरा करना है। भारत और जापान ने रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के कुमामोतो में आए भीषण भूकंप पर भारत की संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
3: दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 इयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई है।
1: श्री कोइजुमी ने कुमामोतो में भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति भारत की संवेदना पर आभार व्यक्त किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य देश में ग्रीन हाइड्रोजन का एक मजबूत तंत्र बनाना है और भारत को इसके उत्पादन तथा निर्यात के लिए एक संभावित ग्लोबल हब के तौर पर स्थापित करना है। इस मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2023 में स्वीकृति दी थी। इसके लिए 2029-30 तक की अवधि के लिए शुरुआती तौर पर 19,744 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एनटीपीसी नवीकरणीय ऊर्जा के कार्यकारी निदेशक डीएमआर पांडा ने बताया कि अभी हाइड्रोजन से चलने वाली 5 बसों में हाइड्रोजन ईंधन भरा जा रहा है और हर बस एक बार फुल टैंक भरने पर 720 किलोमीटर तक चल सकती है। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन बनाने में भूजल यानी ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल नहीं होता।
4: हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस से बनता है एंड इसके लिए पानी चाहिए बहुत ज्यादा। वाटर रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए हमने जो ट्रीटेड सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलता है पानी, उसी को फर्दर ट्रीटमेंट करके उसी हाइड्रोजन से बसेस चला रहे हैं। बनाने के टाइम में कोई प्रदूषण नहीं, वाटर कंजर्व कर रहे हैं और जो बसेस चलते हैं एग्जॉस्ट से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि वाटर वेपर निकलता है।
1: भारत कल पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। बैठक का विषय लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन ICT है। ये आयोजन ब्रिक्स सदस्य देशों को उभरती प्रौद्योगिकियों, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, भविष्य के नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, क्षमता निर्माण और समावेशी डिजिटल कनेक्टिविटी पर विचारों

0: का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर आज बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 78 वर्षीय नेता ने देश की संसद जातीय संसद में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल किए। उन्होंने पूर्व सेना अधिकारी ओली अहमद को हराया। ओली दक्षिणपंथी बांग्लादेश जमाते इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी के नेतृत्व वाले 11 दलीय विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार थे। ओली अहमद को 88 वोट मिले। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे पाकिस्तान का ये दावा झूठा साबित हो रहा है कि अशांति केवल रावलकोट तक ही सीमित है। संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति JAAC ने पाकिस्तान के इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि विरोध प्रदर्शन अब पूरे अधिकृत क्षेत्र में फैल चुके हैं। कोलंबिया ने 10 अगस्त को आए भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में 30 दिन के लिए आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक आपातकाल की घोषणा की है। राष्ट्रपति अलेबाल्डो डे ला एस्प्रियला ने बोगोटा में कैबिनेट बैठक के बाद इस आदेश पर हस्ताक्षर किए। कोलंबिया की राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन इकाई ने बताया कि आज सवेरे तक 7.4 तीव्रता के भूकंप में 319 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4,469 लोग घायल हैं और 260 लोग लापता हैं। भारत में नेपाली गोरखा समुदाय ने आज नेपाली भाषा को संवैधानिक मान्यता मिलने की 35वीं वर्षगांठ मनाई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गोरखा समुदाय को बधाई देते हुए कहा कि भारत एक बहुभाषी देश है। उन्होंने कहा कि विविधता में एकता का बंधन हर भारतीय को मजबूती से जोड़ता है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ तथा तराई डुअर्स में आज 100 से अधिक स्थानों पर नेपाली भाषा मान्यता दिवस भव्य रूप से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हजारों युवा, दोनों पुरुष महिला तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने पारंपरिक परिधानों में शोभा यात्रा, साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। रोशनी छेत्री, आकाशवाणी समाचार, कश्यंग।
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज कई दिन बाद बढ़त के साथ बंद हुए, जिसमें सभी सेक्टर में व्यापक खरीदारी देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.82% यानी 628 अंक बढ़कर 77,538 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 0.64% यानी 154 अंक ऊपर चढ़कर 24,232 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 5 पैसे मजबूत होकर 95.71 पर बंद हुआ।
0: एमिस्टल फेन में FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत और इंग्लैंड का मुकाबला गोल रहित बराबर रहा। इस ड्रॉ के साथ भारतीय टीम टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई है। और दिल्ली में BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने महिला डबल्स के अंतिम आठ में जगह बना ली है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया, मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगाई। सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वर्ष 2047 तक समावेशी और विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए मास्टर प्लान जारी किया। और महिला हॉकी विश्व कप में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलने के बाद भारत ने दूसरे दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Union Cabinet decides to set up a bench of Jammu and Kashmir High Court at Ladakh, announces Home Minister Amit Shah. Supreme Court forms 5-member panel to investigate violence during student protest across the country. Jharkhand High Court stays state government's decision to cancel 11th to 13th JPSC and food safety officer examinations. Government allows duty-free imports of 10 lakh tons of raw sugar until 31st of October.

कर्नाटका, डी के शिवा कुमार, सर्वधीर केराला साधी सान, मॉविन सर्वधीर तेलंगाना, मल्लू बत्ती बिकरा मार्का व सर्वधीर आंध्र प्रदेश, चंद्रबाबू नायडो दर्जल से मस्कूर शिरकत करदा। माविन उस्तानदार पुदुचेरी, माविन उस्तानदार जजायर अंदमान निकोबार, नाजिम लक्षद्वीप व मामूरान अरशद वजारतोई मुख्तलिफ नीज दार जलसे मस्कूर हुजूर बहम रसंदन। जमनान शुरकाय नामबुर्दे दौरान जलसे याशुदे बे फेडरलिज्म तावुनी सरासर तहिये पूल बरोय बेहदारी जीर बना सियानत मुहित व सलामत मंतगई ताकीद वर्जीदान। दरसूरती के अगलब मौजूद दर जलसे दर बस्ती मौरिद शोर व बहस करार गिरफ्तान शुरका बरसर समरे जलसे रुई सकुहाई रसानहई इज्तमाही शौन इब्राज रजायत नमूदान। रहबर कोहनकार हिजब नाशनलिस्ट बांग्लादेश मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बहैस बिस्तुसवमीन रईस जमूर किश्वर मुंतखब गर्दीत। रहबर हफ्तादुहज साली दविस्तु पंजो पंज रायरा दर इंतखाब रियासत जमूरी हासिल नमूद के दर जातिया संसद पार्लिमान किश्वर बरपा गर्दीत। नामबुर्दे बे असर साबिक अरतश ओली अहमद व पुश्तवानी एतलाफ मुखालिफ यासदा हिजबी बरहबरी जमात इस्लामी जनाह रास्त बांग्लादेश व अवलिन हिजब सियासी दानजुयान किश्वर हिजब अदबाए मिल्ली इश्तादहश रायरा नसीब खुद गर्दानीत। हकूमत पाकिस्तान अकनून बरमला तर गश्ते चुन साकिनान जम्मू कश्मीर इशगाली उन किश्वर एतराजात शौन सरासर उन मंतगेरा तजदीद नमूदयान। रद्द पाई एतराजात दर जम्मू कश्मीर इशगाली पाकिस्तान हमचरान वसी तरमी गर्दत व दिआए इस्लामाबाद रा फाशमी गर्दानत के शोर आशूब महदूद बे रावला कोत मी बशद। कमीते इकदाम अवामी मुश्तरक इद्याय इस्लामाबाद रा रद्द कर दे चुनमी गुयत के एतराजात अकनून सरासर खाके मुतसरफे गुस्तरिश पैदा कर दे आस। कमीते याशुद गोफ्त के बसीच ता सुधानु ती तोसे याफ्ते व राह पैमाई तुलानी ता मुजफ्फराबाद रा ऐलान कर दियास। कमीते याफ्शुदे नीज गुफ्त के तजावरात रा अस्तरीग जलसात हमगानी सरासर मंतगे तजदीद खाद नमूद व हमचनान बराई आजाई इक्तसादी बेहतर व हुकूक तजमीनी कानून असासी फिशार वारिद खाद आवर्द। हकूमत पाकिस्तान इन सत्य रूगर्दानी दर जम्मू कश्मीर इशगाली अशरा कबलन मुशाहदे न कर दे बूत। तेरीसा जूली व गायत्री गोपी चंद वारिद रोब निहाई होइए मुजाफ़े जनानी कहरमानी होइए जहानी बी डब्ल्यू एफ दर दिलिय नौ शुदयान इनक दर पायान अहम अखबारा बरतून तकरार मी कुनीम। हिंद व जापान तवाफुक नमूदयान के शराकत दिफाई शानरा अमीक बेसोजन वोल्हा तरतीब नामी पीरामून हमकारी सलामत दरियाई रा इम्जा कर दयान।
وزیر کشور ہند امیت شاہ ریاست سی او یکومین

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीके में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर जोर दिया ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सकें। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। कोविड महामारी और पश्चिम एशिया संकट का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अलग अलग विभागों के बीच बेहतर तालमेल सरकार की कामकाज की संस्कृति का हिस्सा बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के बेहतर इस्तेमाल की भी बात कही। उन्होंने कहा कि AI के साथ मानवीय विशेषज्ञता और निगरानी भी जरूरी है। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। जापान के रक्षा मंत्री ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की जानकारी दी और संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूरदराज के क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान होगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य जगहों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, CBI के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक LR बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश V मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा।

आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24x7। 1:10 हो चुके हैं, वक्त हो चला है अगले कार्यक्रम का। कार्यक्रम है गीत सुनहरे, गोल्डन एरा फिल्म संगीत। आयुश्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम गीत सुनहरे। इस कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ पूजा भारती। गोल्डन एरा फिल्म संगीत की बात हो रही है, तो गोल्डन एरा यानी कि जो हर वक्त बिल्कुल चमकता रहे, हर वक्त जो पसंद आए, वही तो गीत है गोल्डन एरा के। आइए सुनते हैं और शुरुआत करते हैं इस गीत से।

गीत सुन रहे हैं आप, सुन रहे हैं मेरे यानी कि पूजा भारती के साथ गोल्डन इरा की फिल्म संगीत है। तो फिर शमशाद बेगम हो, लता मंगेशकर हो, तलत महमूद हो, मोहम्मद रफ़ी हो, इन सारे सिंगर ने, चाहे मुकेश हो, इन सारे सिंगरों ने उस ज़माने में इतने खूबसूरत और हिट गीत दिए। सफ़र सभी का चलता रहा, लेकिन लता मंगेशकर का सफ़र काफ़ी आगे तक बढ़ता गया। लेकिन वो ज़माना, जब गोल्डन एरा की बात करें, तब लता मंगेशकर से ज़्यादा शमशाद बेगम को लोग सुनते थे। और जब लता की बात आई, तो धीरे धीरे उन्होंने अपना सिक्का जमाना शुरू किया, और फिर हम सभी जानते हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। उस ज़माने में जब काम करने का वक्त था, तब उन्होंने कुछ ज़्यादा ही काम किया, और जिस वक्त उन्हें आराम चाहिए था, तब भी उन्होंने काम ही किया। कहते हैं सफ़र में कब कैसे निकल जाएं, कब आगे आ जाएं और कब सफ़र में भागना पड़े, यही लता मंगेशकर के जीवन में था। और कहें तो गीत और गाने, जो भी देन है, इसकी शुरुआत उन्हीं गोल्डन एरा से ही हुई थी। जितने भी लेजेंडरी सिंगर्स हैं या म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उन सभी ने गीतों के लिए बहुत काम किए, तब जाकर आज हम उन गीतों को समझ पाते हैं, उन्हें महसूस कर पाते हैं, लेकिन उन्हें कभी भूल नहीं सकते।

मैं दिल हूँ एक अरमा भरा। वाकई में क्या शब्द और क्या बोल, या फिर कहें गाने वाले ने इतनी खूबसूरती से उसे गाया। फिर भी कहते हैं कि एक गीत ऐसा भी आया जो अगर मैं उसका नाम ले लूं तो आप यूं ही समझ जाएंगे, लेकिन गीत ये भी गोल्डन एरा की ही है। क्यों याद है हमें? क्योंकि वो समय ही कुछ और था, वो काम करने वाले ही कुछ और थे, जो पूरी तन्मयता से अपनी चीज़ों को संवारने में लग जाते थे और उसे हिट होने से कोई नहीं रोक सकता था। तो आइए इस जाने पहचाने गीत को सुनते हैं।

चल के। जहाँ प्यार होता है वहाँ दर्द भी होता है। प्यार जब छलकता है तो समय का पता नहीं चलता, और वो समय भी बीत जाता है जब हम बहुत खुश होते हैं और सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा होता है। लेकिन जब दर्द की बात आती है तो सारा जहाँ बिल्कुल पराया लगने लगता है, कहीं भी दिल नहीं लगता। और फिर उन दर्द के मारों की अगर बात करें तो वो कैसे जीते हैं, गीत ने बखूबी बताया।

गोल्डन इरा फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं गीत सुनहरे के अंदर। मैं हूं पूजा भारती और जब सुनहरे गीत की बात होती है तब हम वो गीत कैसे भूल सकते हैं जब अपने सनम की तारीफ में बहुत सारे ऐसे शब्द बोले जाते हैं जो हमें मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ उन गोल्डन इरा में। जी हाँ, उन्हीं गीतों को तो सुनकर हम बड़े हुए और हमारे पूर्वज भी, यूँ कहें कि हमारे से पहले जितने भी लोगों ने गीतों को सुनना शुरू किया उन सब के दिलों में यही गीत बसे और आज हमारे दिलों में भी ऐसा ही गीत चलता रहता है, क्योंकि ये वो गीत हैं जिन्होंने उन गीतों को, जिन्होंने उन शब्दों को, उन धुन को इतना खूबसूरत बना दिया और उसे बना दिया गोल्डन। जी हाँ, उन्हीं गीतों में से एक गीत ये भी है।

फिल्म संगीत गोल्डन एरा सुन रहे हैं आप मेरे यानी कि पूजा भारती के साथ। और जब गोल्डन एरा की बात हो रही है तो उन गीतों को ही तो याद करेंगे ना जो उस जमाने में यानी उस गोल्डन पीरियड में। क्यों गोल्डन कहते हैं हम उसे? क्योंकि उस वक्त हर एक चीज़ बिल्कुल अलग होती थी, बहुत शिद्दत से हर काम किया जाता था, बहुत ध्यान रखकर शब्दों को चुना जाता था, ध्यान रखकर धुन तैयार होती थी और बहुत ही सलीके से, शराफत से गीतों के बोल को आवाज़ों में पिरो दिया जाता था। वो गीत जहाँ धुन थोड़े कम और आवाज़ बुलंद होती थी, उन गीतों को गोल्डन गीत ही कहते हैं। उन्हीं गीतों का सफ़र चल रहा है पूजा भारती के साथ। अगला गीत गोल्डन इरा के सुनहरे गीत।

आप सुन रहे हैं गोल्डन एरा फिल्म संगीत की सुनहरे गीत सुनहरे के इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ पूजा भारती। कहते हैं कि गीतों के सफर में जब उन पुराने गीतों को शामिल किया जाता है तब अधिक गाने यानी उस जमाने के गाने अधिकतर शमशाद बेगम, तलत महमूद, मुकेश रफ़ी इनकी आवाज़ में हुआ करती थी। वो इरा था 1950s का। वो 50s के ज़माने में जो गीत बनते थे वो गीत बहुत सराहे गए और आज भी सराहे जाते हैं। तो जब उन गीतों का सफ़र शुरू होता था तब बड़ी मेहनत बड़ी शिद्दत से काम होता था क्योंकि उस ज़माने में इतना डिजिटल का ज़माना नहीं था। कड़ी मेहनत होती थी, कई साल लग जाते थे एक फिल्म को बनने में और फिर उसके गीत को बनाने में कई महीने लग जाते थे, तब जाकर कहीं एक गीत बनकर तैयार होता था। जब इतना मेहनत किसी भी काम में हो जाए तो वो खूबसूरत तो होगा ही।

और फिर जब गोल्डन एरा की बात चल रही है और तलत महमूद के गीत हम सुन रहे हैं, तो फिर शमशाद बेगम क्यों पीछे रहे? क्योंकि वो ज़माना ही उन्हीं का था। सुनते हैं शमशाद बेगम के आवाज़ में ये गीत।

और बड़ी बड़ी मुश्किल से याद आया। तो वो शाम भी आती है जब तन्हाई ज्यादा सताती है, उस वक्त अपनी मोहब्बत को याद करते हुए तलत महमूद के स्वर में ये गीत कुछ अलग ही लगता है। आइए सुनते हैं गोल्डन एरा गीत सुनहरे का।

और जब शाह राम की कसर तलत महमूद की आवाज़ में हम सुनते हैं, तो तलत महमूद की स्वर में एक और गीत था, तेरी तरफी। उस वक्त ये गीत भी हिट हुआ था। हालांकि देखा जाए तो उस जमाने के हर एक गीत को सराहा जाता था, क्योंकि इतने खूबसूरत तरीके से उसको ढाला गया था। चाहे धुन की बात करें, स्वर की बात करें, या फिर उसके शब्द की बात करें।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं गीत सुनहरे गोल्डन एरा फिल्म संगीत मेरे यानी कि पूजा भारती के साथ। और अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं कार्यक्रम को यहीं पर विराम देना चाहिए, तो क्यों न एक आखिरी नगमा आपके लिए छोड़े जाऊं तलत महमूद के स्वर में। मुझे पूजा भारती को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7। 2 बजने को हैं, अब कुछ ही पलों में सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीके में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर जोर दिया ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सकें। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। जापान के रक्षा मंत्री ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की जानकारी दी और संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान होगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य जगहों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
2: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक LR बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
1: यूक्रेन की राजधानी कीव और आसपास के इलाकों में रूस के बड़े हवाई हमलों में 16 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए हैं। हमले में अस्पताल, स्कूल, रिहायशी इमारतों और कई गोदामों को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने हवाई सुरक्षा मजबूत करने के लिए दूसरे देशों से और पैट्रियट मिसाइलें देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इन मिसाइलों की जरूरत बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाव के लिए है। नई दिल्ली में जारी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है।

0: नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीके में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर जोर दिया ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सकें। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। जापान के रक्षा मंत्री ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की जानकारी दी और संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान होगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य जगहों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन, ICT। ये आयोजन ब्रिक्स सदस्य देशों को उभरती प्रौद्योगिकियों, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, भविष्य के नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, क्षमता निर्माण और समावेशी डिजिटल कनेक्टिविटी पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश कर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी आज मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक के साथ तूफान का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। नीदरलैंड्स के एम्स्टलफेन में FIH महिला हॉकी विश्व कप में कल

जी आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। रात्रि के 3:10 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए गज़ल। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं गुलाम अली की आवाज़ में गज़ल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गजल, आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। रात्रि के 4 बजे हैं।

ஜகத்தில் வந்தம்மா.

नारायण तीर्थ की एक रचना सुनिए। कलाकार हैं नेदुनुरी कृष्णमूर्ति, एम जलजाक्षी, एम वी रमणम मूर्ति, पी सूर्या राव, एम एल नरसिम्हम, एस वसुंधरा देवी और एम जोगुलाम्बा।

0: इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: अभी आपने सुना भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना। आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 4:20 होने वाले हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्मा। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे चरण्या लक्ष्मी कुमारन का गायन, आपके साथ वलन प्रसंगत किया है जी राघवेंद्र प्रसाद ने और साथ ही आर नारायणन ने। तो लीजिए सुनिए

कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म में अभी आप सुन रहे थे चरण्या लक्ष्मी कुमारन का गायन। आपके साथ वालन प्रसंगत किया जी रघुवेंद्र प्रसाद ने और आर नारायणन ने।

जी, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 21 अगस्त 2026। सुबह के 4:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। लीजिए अब प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। अब से कुछ ही देर में यानी 5:10 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। आज आप सुनेंगे योग बद्ध पद्मासन। उसके बाद 5:20 पर समय रहेगा कार्यक्रम देशभक्ति गीतों का। 5:30 सुनिएगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी। इसके अंतर्गत आज आपको सुनवाएंगे आम्रपाली का गाया राग ललित। भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना का समय रहेगा 6:10। उसके 40 पर सुनिएगा चिंतन तुलसी के राम। 6:45 पर रामचरित मानस से पाठ सुनिएगा। आज आप सुनेंगे अयोध्या कांड का भाग 24। 6:55 पर सुनिएगा संस्कृत में समाचार और फिर हिंदी और अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। 7:10 पर संगीतिका प्रसारित की जाएगी। आज आप सुनेंगे संजुक्ता मुखर्जी के गाय भजन। 7:30 गीतों भरी गुड मॉर्निंग आप सुन सकेंगे

0: 8:45 पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा सुनिएगा। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे पंडित निर्मला डे का गाया ध्रुपद धमाल। आप प्रस्तुत करेंगे राग तोड़ी। नौ बजकर 15 मिनट पर सुनिएगा गांधी चर्चा। आज वार्ता का विषय रहेगा प्रसिद्ध महिला गांधीवादी विचारक और उनका योगदान। वार्ताकार होंगी रीमा यादव। पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक प्रसारित की जाएगी 9:30 पर। आज ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगी रविंदर कौर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद सुनिएगा सुबह 10:10 पर। सुनिएगा कार्यक्रम सबरस सुरमंजरी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पंडित गोस्वामी गोकुलोत्सव जी महाराज का गाया राग गुजरी तोड़ी। 12:10 पर सुनिएगा घर आंगन ये महिला कार्यक्रम। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे एक कदम बुजुर्गों की ओर। प्रस्तुत करेंगे सिमरन कौर। 1:10 पर सुनिएगा एक ही फिल्म से और आज की फिल्म होगी काला पानी। ये थी आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह के 5 बजने वाले हैं। लीजिए अब सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने

0: ने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीके में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर जोर दिया ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सके। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी बल दिया। जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भाजपा और जापान के बीच भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान होगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भारत आज पुणे में 12वें ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन, ICT। यह आयोजन ब्रिक्स सदस्य देशों को उभरती प्रौद्योगिकियों, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, भविष्य के लिए नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, क्षमता निर्माण और समावेशी डिजिटल कनेक्टिविटी पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य जगहों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, CBI के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक LR बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश V मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: और खेलों में, नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले होंगे। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना चीन की लियांग वेई किंग और वांग चांग से होगा। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी चीन की जियाई फान और झांग शू शियान से भिड़ेंगी। उधर नीदरलैंड्स के अम्स्टरडैम में FIH महिला हॉकी विश्व कप में कल भारत और इंग्लैंड का मुकाबला गोल रहित बराबरी पर रहा। इस ड्रॉ के बाद भारतीय टीम टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी आज मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक के साथ तूफान का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Tanvi Gupta. Prime Minister Narendra Modi chaired the 3rd high-level meeting with secretaries to the Government of India at his residence yesterday and discussed the future action agenda of ministries and departments dealing with infrastructure and connectivity, security, external affairs and governance. He urged secretaries to think with a long-term perspective on how the country's future should be shaped. Calling for greater interoperability and effective use of data, Mr. Modi noted that data is a national asset and a resource for the future. He also emphasized the need to further further strengthen the country's defense industry and make it more competitive.

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह के 5:10 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आओ योग करें।
1: योग सिर्फ एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, यह गुणतापूर्ण भावनात्मक एकीकरण एवं आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है, जिससे हमें सभी कल्पनाओं से परे स्थित आयाम की एक झलक मिलती है। योग एक पूर्ण विज्ञान है। यह शरीर

मन, आत्मा और ब्रह्मांड को एकजुट करता है। यह व्यक्ति को शांति और आनंद प्रदान करता है। व्यक्ति के व्यवहार, विचारों और रवैये में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है। योग के दैनिक अभ्यास से हमारी अंतः शांति, संवेदनशीलता, अंतर्ज्ञान और जागरूकता बढ़ती है। योगासन करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। योगासन खुले एवं ताजा हवा में करना सबसे अच्छा माना गया है। फिर भी अगर ऐसा करना संभव ना हो तो किसी भी खाली जगह पर आसन किया जा सकता है। योग सीधे जमीन या फर्श पर बैठकर न करें। इसके लिए दरी या कालीन जमीन पर बिछाकर योगासन करें। किसी भी योगासन को झटके से न करें। योग उतना ही करें जितना आप आसानी से कर पाएं। योगासन करने के तुरंत बाद स्नान ना करें, क्योंकि व्यायाम करने के बाद शरीर गर्म हो जाता है, और अगर आप गर्म शरीर में ही स्नान करेंगे तो सर्दी, जुकाम, बदन दर्द जैसी तकलीफ हो सकती है। इसलिए योग करने के एक घंटे बाद ही स्नान करना चाहिए। योग का महत्व योगाचार्य महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में सूत्रों के रूप में प्रस्तुत किया है। आज वही योग दुनिया भर में प्रसिद्धि पा रहा है। योग का अर्थ है जोड़ना, जीवात्मा का परमात्मा से पूरी तरह से एक हो जाना ही योग है। योगाचार्य महर्षि पतंजलि के अनुसार अपने चित्त को एक ही जगह स्थापित करना योग है। आज के कार्यक्रम में बद्ध पद्मासन। बद्ध पद्मासन को अंग्रेजी भाषा में लॉक्ड लोटस पोज या फिर क्लोज्ड लोटस पोज भी कहा जाता है। बद्ध पद्मासन दो शब्दों से मिलकर बना है, बद्ध और पद्म, जिसमें बद्ध का अर्थ होता है बांधा हुआ और पद्म का अर्थ होता है कमल का फूल। इस आसन को करने का तरीका मेरे साथ कीजिए। सबसे पहले दंडासन में बैठ जाएं। हल्का सा हाथों से जमीन को दबाते हुए और सांस अंदर लेते हुए रीढ़ की हड्डी को सीधा करें। श्वास अंदर लें और अपनी दाईं टांग को उठाकर दाएं पैर को बाईं जांघ पर ले आएं और फिर दूसरे पैर के साथ भी ऐसा ही करें। अब आप पद्मासन में हैं। इस मुद्रा में आपके दाएं कूल्हे और घुटने पर खिंचाव आएगा। अब अपना बायां हाथ पीठ के पीछे से आगे की ओर ले आएं और बाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ दें। यह करने के बाद